सुप्रभात। मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 की वैशाख माह की तिथि 17, तदनुसार 7 मई सन 2026। स्टूडियो की घड़ी में 5:48 और 50 सेकंड हुए हैं। आरंभ होती है हमारी प्रातःकालीन सभा।

0: इंद्र है, प्रस्तुत है चिंतन। चिंतन में ही आज आप सुनिए हंसी में खुशी। वाचन स्वर है सुधा सिंह का।
1: हंसने से प्रसन्नता मिलती है, खुद को भी दूसरों को भी। प्रसन्नता तो चंदन के समान है, किसी के माथे पर लगाइए तो आपकी उंगलियां अपने आप महक उठेंगी। खुशी और गम हर व्यक्ति के जीवन के आवश्यक अंग हैं। इसके बावजूद कुछ लोग हंसमुख की श्रेणी में आते हैं। हंसता मुस्कुराता चेहरा सबको भाता है, जबकि उदास चेहरे को लोग पसंद नहीं करते। यदि आप मुस्कुराते या हंसते हैं तो सामने वाले लोग भी मुस्कुराने को मजबूर हो जाते हैं। इस प्रकार हंसकर अपने गमों को भुलाने का प्रयत्न तो करते ही हैं, दूसरों की तकलीफ भी कुछ कम करते हैं। उदास चेहरे लोगों को उदास कर देते हैं। किसी को उदास देखकर आसपास के लोगों को खुशी नहीं होती। ये तो कुदरत की देन है कि किसी की खिलखिलाहट लोगों के चेहरे पर मुस्कान ले आती है और किसी की आंखों के आंसू अन्य की आंखें भी गीली कर देते हैं। हंसी को स्वास्थ्य के लिए सर्वोत्तम औषधि बताया गया है। हंसने से चेहरे की मांसपेशियों का व्यायाम होता है, जो चेहरे पर एक अनोखी चमक लाता है। यही वजह है कि हंसमुख लोगों के चेहरे दमकते रहते हैं। हंसी मानसिक तनाव को कम करती है। हंसने से मानसिक तनाव कम होता है। जहां तक हो सके तनावग्रस्त व्यक्ति को ऐसे व्यक्तियों के साथ जरूर उठना बैठना चाहिए जिन्हें हंसने हंसाने की आदत हो। हंसमुख लोगों का सामाजिक दायरा बड़ा होता है। लोग ऐसे लोगों का साथ पसंद करते हैं जिन्हें देखकर प्रसन्न होते हैं, जबकि हमेशा रोना रोने वाले व्यक्ति से लोग दूर भागते हैं। उदासी किसी को नहीं भाती। मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य के लिए आंसुओं पर नियंत्रण अनिवार्य है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को दुख तकलीफों के साथ भी इंसान को जीना तो पड़ता है। क्यों ना हम सभी आंसुओं के बीच थोड़ी सी मुस्कुराहट बिखेरने का प्रयत्न करें, थोड़ा खुद हंसें, जरा दूसरों को भी खुशी देने का प्रयत्न करें। हंसने से प्रसन्नता मिलती है, खुद को भी दूसरों को भी। प्रसन्नता तो अपने आसपास के वातावरण को भी सुगंधित कर देती है। विशुद्ध हंसी ही खुशी देती है। क्रूर हंसी खुशी देने के बजाय रुला भी सकती है। भद्दा मजाक करना, अपमानित करना, मानसिक चोट पहुंचाना हंसी नहीं बल्कि अशिष्ट है। ये असभ्यता दर्शाता है। किसी को नीचा दिखाने के लिए हंसना एक घटिया आदत है। जो हंसी खुशी बांटे वही हंसी वास्तव में हंसी है। ये मानवता का तकाजा है, हंसिए हंसाइए।
0: अभी आप सुन रहे थे चिंतन। इसमें आपने सुना हंसी में खुशी। वाचन स्वर था सुधा सिंह का। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के पटना केंद्र से मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर।
2: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
3: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
0: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के पटना केंद्र से। लीजिए सुनिए कृषि सूचनाएं। इसमें आज आप सुनिए वार्ता, कृषि यंत्रों की देखभाल। वार्ताकार हैं श्रीनिवास सहाय।
4: किसान भाइयों, नमस्कार।

0: कृषि यंत्रों का खेती में विशेष महत्व है और आज के दिनों में आधुनिक कृषि यंत्रों का आप प्रयोग करते हैं। आधुनिक कृषि यंत्रों का यदि आप समय पर देखभाल और रख रखाव ठीक ढंग से नहीं करते हैं तो वे जल्दी खराब हो जाते हैं और उनसे जितना काम आपको लेना होता है उतना वे ले नहीं सकते हैं। तो आज हम आपसे बातें करेंगे उन्नत कृषि यंत्रों का, कैसे रख रखाव करें। तो किसी भी यंत्र को उपयोग में लाने से पहले उसका ध्यानपूर्वक निरीक्षण करके यह देख लेना चाहिए कि उसके कल पुर्जों के सभी जोड़ ठीक से कसे हैं या नहीं। यदि कोई पेच या नट बोल्ट गिर गया हो तो नया लगाकर कस देना चाहिए। डीजल इंजन या ट्रैक्टर जैसी मशीनों में तेल के स्तर की जांच उसे स्टार्ट से पहले कर लेनी चाहिए। यदि उसका स्तर कम मिले तो उसे पूरा कर लेना चाहिए। आपस में रगड़ कर चलने वाले सभी पुर्जों को स्नेहक यानी कि मोबिल की आवश्यकता होती है, इसलिए इन्हें निर्धारित मात्रा में तेल या ग्रीस दिया जाना चाहिए। प्रत्येक बार स्नेहक देने के बाद अतिरिक्त तेल या ग्रीस को जोड़ पर से साफ कर देना चाहिए, नहीं तो उसमें धूल जमा हो जाएगी। यंत्रों में लगने वाले पट्टे, बेल्ट, कमानी इत्यादि को निश्चित कसाव की आवश्यकता होती है। इस कसाव की हर रोज जांच कर लेना जरूरी है और यदि आवश्यक हो तो समायोजन कर लेना चाहिए। इसी प्रकार अन्य पुर्जे जो एक दूसरे से मिलकर चलते हैं उन्हें भी सही समायोजन की जरूरत होती है। यदि समायोजन की सीमा समाप्त हो गई हो तो पुर्जों को बदल देना चाहिए। जिन यंत्रों में रबड़ के पहिए लगे होते हैं उसमें हवा का निश्चित दबाव रहना चाहिए। दबाव के कम हो जाने पर यंत्र को खींचने के लिए अधिक शक्ति की आवश्यकता होती है और दबाव अधिक हो जाने पर यंत्र में कंपन होने लगता है। इसलिए एक सप्ताह में एक बार हवा के दबाव को अवश्य जांच लेना चाहिए। कृषि यंत्रों से गीले और सूखे खेतों में कार्य करने के बाद उसमें कीचड़ एवं धूल जम जाते हैं, इसलिए कृषि यंत्रों के नित्य सफाई करना आवश्यक है। इसके लिए यंत्रों को पानी के दबाव से धोना सर्वोत्तम रहता है। धुलाई करने से पहले इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि गर्म इंजन के अंगों पर पानी न पड़े, अन्यथा पुर्जों के अचानक ठंडा होने से उनमें दरारें पड़ सकती हैं। ट्रैक्टर या इंजन जैसे कुछ कृषि उपकरणों में निर्धारित समय के बाद इंजन से पुराने तेल को निकालकर सही किस्म का नया तेल निर्धारित स्तर तक भर देना चाहिए। कृषि उपकरणों में लगी बैटरी में हमेशा आश्वित जल डालकर ही स्तर को पूरा करना चाहिए। कृषि उपकरणों में लगे इंजन को निर्धारित समय के बाद विशेष जांच पड़ताल की आवश्यकता होती है, जिसे प्रशिक्षित कर्मचारी के द्वारा विशेष यंत्रों के द्वारा जांच करके ही उचित निर्णय लेना सही रहेगा। अधिकांश कृषि यंत्रों को कुछ समय तक उपयोग करने के बाद खाली रखना होता है। ऐसी स्थिति में यंत्र को पहले अच्छी तरह साफ कर लेना चाहिए, फिर उसे किसी सुरक्षित स्थान पर खड़ा करके पहियों को जमीन या ऊपर जमीन से ऊपर उठा लेना चाहिए। यदि यंत्र में पहिए नहीं हैं तो भी उसे लकड़ी के गुटकों पर रखना उचित होगा। यंत्रों को हमेशा छाया में रखना चाहिए, जिससे यंत्र धूप और वर्षा से सुरक्षित रहे। जंक लगने वाले भाग को पेंट करके रखना चाहिए। किसान भाइयों के पास कुएं से सिंचाई करने और अन्य कृषि यंत्रों के लिए बिजली के मोटर हों तो उन्हें बिजली तथा उसके मोटर इत्यादि यंत्रों का मरम्मत समय समय पर प्रशिक्षित व्यक्ति से कराना चाहिए। इसके बाद बात आती है कि उससे किसी तरह से नुकसान नहीं हो, इसका बात का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि थोड़ी सी भी दिक्कत होने पर बिजली वाले जो यंत्र हैं उनसे करंट आपको लग सकता है और नुकसान हो सकता है, जान माल का नुकसान हो सकता है, उससे संबंधित व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। उसके अलावा तेल यानी कि डीजल और पेट्रोल से चलने वाले जो यंत्र हैं वे कम से कम डीजल और पेट्रोल खर्च हो उसमें, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। उसके लिए भी सही देख रेख की आवश्यकता होती है।
1: अभी आप सुन रहे थे कृषि सूचनाएं, इसमें आपने सुना वार्ता। अब हिंदी में समाचार होंगे।
2: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। भारत और वियतनाम ने डिजिटल

0: प्रौद्योगिकी, दुर्लभ तत्व, चिकित्सा उत्पाद विनियमन, सार्वजनिक क्षेत्र लेखा परीक्षा, डिजिटल भुगतान प्रणाली और संस्कृति तथा पर्यटन के क्षेत्र में कई समझौते किए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम के बीच हुई वार्ता के बाद ये समझौते हुए। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच विभिन्न पहलुओं पर व्यापक चर्चा की गई।
1: हम अपने संबंधों को एनहेंस कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं। अब हम अपनी साझेदारी को और ऊंचे लक्ष्यों की ओर अग्रसर करेंगे। कल्चर, कनेक्टिविटी और कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ सिक्योरिटी, सस्टेनेबिलिटी और सप्लाई चेन रिजिलियंस, हर क्षेत्र में हमारा सहयोग नए स्तर पर पहुंचेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि साझा विरासत को जीवित रखने के लिए भारत वियतनाम की प्राचीन चंपा सभ्यता के माई सोन और नहान ताओ मंदिरों का जीर्णोद्धार कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल शाम राष्ट्रपति भवन में वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम का स्वागत किया। राष्ट्रपति ने उनके सम्मान में भोज का भी आयोजन किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और वियतनाम के बीच उन्नत व्यापक रणनीतिक साझेदारी से दोनों देशों के सहयोग को नई गति मिलेगी और क्षेत्र में शांति तथा समृद्धि को बढ़ावा मिलेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान आज जयपुर में संयुक्त कमांडर सम्मेलन के दूसरे संस्करण में शामिल होंगे। रक्षा मंत्रालय के अनुसार नए क्षेत्रों में सैन्य क्षमता विषय पर आयोजित ये दो दिन का सम्मेलन ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है, जिससे इसका महत्व और बढ़ गया है। सम्मेलन में साइबर, अंतरिक्ष और मनोवैज्ञानिक युद्ध जैसे उभरते क्षेत्रों की चुनौतियों पर चर्चा होगी। साथ ही भविष्य के लिए मजबूत और आधुनिक सैन्य क्षमता विकसित करने की रूपरेखा तैयार की जाएगी। इस दौरान स्वदेशी तकनीक से विकसित आधुनिक सैन्य प्रणालियों का प्रदर्शन भी किया जाएगा। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल पारामारिबो में सुरीनाम के विदेश मंत्री मेलविन बाउवा के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडलों ने 9वीं संयुक्त आयोग बैठक के तहत भारत सुरीनाम संबंधों की व्यापक समीक्षा की। बातचीत में व्यापार, निवेश, रक्षा, ऊर्जा, विकास सहयोग, स्वास्थ्य, क्षमता निर्माण, संस्कृति और लोगों के बीच आपसी संपर्क जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया आज नई दिल्ली स्थित कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC मेडिकल कॉलेज और अस्पताल से 40 वर्ष तथा उससे अधिक आयु के श्रमिकों के लिए देशव्यापी वार्षिक स्वास्थ्य जांच अभियान की शुरुआत करेंगे। ये पहल नए 4 श्रम संहिताओं के अंतर्गत किए गए सुधारों पर आधारित है, जिनके माध्यम से 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को 4 प्रमुख श्रेणियों में समाहित किया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और एनडीए के कई वरिष्ठ नेता पटना के गांधी मैदान में दोपहर 12:10 पर होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मंत्रिमंडल विस्तार पिछली सरकार द्वारा अपनाए गए फॉर्मूले के आधार पर किया जा रहा है। भाजपा के लगभग 15 और जेडीयू के 14 विधायकों के मंत्री पद के शपथ लेने की संभावना है। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी की सहयोगी चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि बीती रात दोहरिया इलाके में बाइक सवार हमलावरों ने उनकी कार पर अंधाधुंध फायरिंग की। गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने पंजाब किंग्स को 33 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 235 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करते हुए पंजाब किंग्स निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 202 रन ही बना सकी। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। मैच शाम 7:30 से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने केरल, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में कुछ स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने कहा कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, गोवा, पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में बिजली गरजने और तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। लीजिए सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। सबसे पहले सुनते हैं संवेद स्वर में देश वंदना।

प्रत्येक दिवस का प्रातःकाल हमारे लिए एक नई ऊर्जा, नई शक्ति, नई ताकत से लवरेज होता है, भरा होता है। मन में सदैव एक ही बात आती है कि आज का दिन बस खुशियों से भरा हो, और इसी खुशी को पाने के लिए हम अपने ईश्वर की इबादत वंदना करते हैं।

हमारा मन एक मंदिर है और इसमें ईश्वर की भक्ति से शक्ति मिलती है, इसलिए मन से की गई प्रार्थना हमेशा सफल होती है।

एक प्रभु ही है, नाथ ही है, जो हम सबके सुध लेते हैं, पर तब जब हम अपनी व्यथा उनके सामने रखते हैं और अपनी व्यथा प्रभु तक पहुंचाने का माध्यम बस एक वंदना है।

इसी के साथ भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब यहीं समाप्त होता है। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के पटना केंद्र से। लीजिए सुनिए रामचरित मानस से पाठ।

राजा जनक के धनुष यज्ञ में श्री राम के हाथों शिवजी का कठोर धनुष भंग हो चुका है। सारे ब्रह्मांड में जय जयकार की ध्वनि गूंज रही है। धीर बुद्धि वाले भाट, मागध और सूत लोग श्री राम की कीर्ति का गान कर रहे हैं। झांझ, मृदंग, शंख, शहनाई आदि मंगल वाद्यों का संगीत ढोल और नगाड़ों की ताल पर चारों ओर व्याप्त है। राजा जनक की चिंता दूर हो चुकी है। सखियों समेत रानी अत्यंत हर्षित हैं। दृश्य कुछ ऐसा मानो सूखते धान के खेत को पानी मिल गया है। किंतु धनुष टूट जाने के फलस्वरूप प्रतिस्पर्धा में भाग लेने आए राजे महाराजे इस प्रकार श्रीहीन हो गए हैं जैसे सूर्य के उदय होते ही दीपक की शोभा समाप्त हो जाती है। उधर जनक नंदिनी सीता रूपी चातकी को मानो स्वाति नक्षत्र का वर्षा जल मिल गया है। कुल पुरोहित शतानंद जी की आज्ञा पाकर हाथों में जयमाल लिए सखियों के मंगलाचार गायन के साथ सीता बालहंसनी की चाल से श्री राम का वरण करने चली। तन में संकोच है किंतु मन में है परम उत्साह। उन्होंने दोनों हाथों से जयमाल उठाई किंतु प्रेम विवश होने से वो पहनाई नहीं जाती। हाथों की शोभा ऐसी मानो डंडियों सहित दो कमल चंद्रमा को संकोच रूपी भय के साथ जयमाल पहनाने को उत्सुक हों।

0: अभी आप सुन रहे थे रामचरितमानस से पाठ। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। लीजिए सुनिए स्वास्थ्य सूचनाएं। इसके अंतर्गत आज आप सुनिए भेंट वार्ता, मुंह का कैंसर कारण और बचाव। भेंट वार्ताकार हैं डॉक्टर मधुरेश कुमार।
1: श्रोताओ नमस्कार, स्वास्थ्य चर्चा में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी जो भारत में बड़ी तेजी से फैल रही है जी, और उसमें जागरूकता का बड़ा अभाव है, मुंह के कैंसर के बारे में। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे स्टूडियो में है पटना के जाने माने कंसल्टेंट

0: ओरल पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर मधुरेश। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में।
1: धन्यवाद धर्मेंद्र जी, और सभी श्रोताओं को मेरा बहुत बहुत नमस्कार
0: डॉक्टर साहब, मुंह का कैंसर, जैसा कि हमने
1: जी।
0: कहा भी कि एक जागरूकता का अभाव है, इसके क्या कुछ कारण हैं, इस पर हम विशेष तौर पर जानना चाहेंगे आज आपसे।
1: जी, तो लोगों को लगता है कि मुंह का कैंसर सिर्फ तंबाकू, गुटखा या इन्हीं आदतों से होता है।
0: जी
1: हाँ,
0: जी
1: ये सबसे ज़्यादा सबसे बड़ा कारण यही है, पर इनके अलावा भी और बहुत सारे कारण हैं जिनसे मुंह का कैंसर हो सकता है। लेकिन सबसे पहले हम लोग चर्चा इसी पे करते हैं कि जो सबसे कॉमन कारण है वो है अत्यधिक तंबाकू का इस्तेमाल, चाहे वो किसी फॉर्म में हो, गुटखा में हो, खैनी रूप में हो, सिगरेट में हो, बीड़ी, किसी भी तरह से। और अगर साथ में अल्कोहल भी होता है तो इसका और रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये सबसे ज़्यादा आम कारण यही है मुंह के कैंसर होने का। उसके अलावा और भी कारण है, जैसे एक दूसरा सबसे एक बड़ा कारण ये भी है कि मुंह में किसी कारण से बार बार घाव होना, जैसे कोई नुकीला दांत हो या कोई ऐसा नकली दांत जो कि बार बार गाल को या जीभ को में
0: चोट
1: घाव कर
0: पहुंचा
1: रहा
0: रहा,
1: हो,
0: घाव करो। जी
1: तो वो बहुत लंबे समय तक होते होते भी वो कैंसर का रूप ले लेता है।
0: जी जी
1: तो ये भी अगर है कि अगर कोई चीज़, कोई भी अगर आपके मुंह में बार बार घाव हो रहा है या उसके कारण बार बार आपको चोट लग रही है, तो उसको भी निदान अति शीघ्र कर लेना चाहिए, उसे बढ़ने नहीं देना चाहिए।
0: मुंह की स्वच्छता की अगर हम बात करें, साफ सफाई को लेकर, तो ये कितना
1: जी
0: कारक हो
1: बिल्कुल
0: सकता है?
1: बिल्कुल, ओरल हाइजीन भी एक बड़ा कारण है। तो इन्फेक्शन, कुछ वायरस होते हैं जिनको हम लोग ऑन्को वायरस बोलते हैं, उनका इन्फेक्शन है, ठीक है, ये सभी चीज़ें भी हैं जो कुछ कुछ तरह से मुंह के कैंसर होने में अपना उनका भी एक योगदान है, एक
0: मुंह
1: रोल है।
0: के जो कैंसर होते हैं
1: जी
0: बेसिकली किन किन हिस्सों में होते हैं, कुछ खास इस
1: जी
0: मुंह?
1: जी मुंह में देखिए तो पूरा मुंह में ही आपके सबसे कहीं भी कैंसर हो सकता है,
0: जी
1: जो
0: जी
1: कि सबसे आम स्क्वामस सेल कार्सिनोमा है। तो मुंह में आपको जो लिप है दोनों तरफ गाल के साइड, जीभ, जीभ के साइड जो है वो किनारे के साइड,
0: जी जी
1: तो ये सब जो है वो ज़्यादा कॉमन साइड है। और जैसे तालू है, ये सब थोड़ा कम कॉमन जगह है, लेकिन ज़्यादा कॉमन जो है वो लिप्स में और गाल में, जीभ में, ये सब जगह आपको मुंह के
0: जैसा कि
1: कैंसर देखने
0: आपने
1: को
0: जिक्र
1: मिलेंगे।
0: किया कि जो दांत होते हैं, कई बार दांत से चोट लगता है, तो या फिर कई बार दांत किसी कारणवश किसी लोगों को बाहर भी आ जाते हैं, और अक्सर जो होठ में, तो उसको हम लोग शेपिंग करा लेते हैं किसी डॉक्टर के पास जाकर, तो क्या ये उचित है या फिर उसको नेचुरली छोड़ देना
1: नहीं, वो
0: उचित
1: तो आपके प्राथमिकता पे होती है,
0: है? जी,
1: क्योंकि वो अगर बाहर है तो वो तो अलग कारण हो गया, वो तो
0: तो
1: देखने
0: क्या
1: के
0: वो
1: कारण हुए
0: जैसे कि टेम्पर्ड हो जाता है थोड़ा सा, और
1: जी।
0: वो
1: लेकिन
0: फिर?
1: कैंसर कारक वो होंगे जैसे कोई नुकीला दांत हो
0: जी जी
1: जो जीभ में या गाल में या होठ में बार बार बार बार जो घाव करता हो एक ही जगह पे
0: जी
1: बहुत
0: जी
1: लंबे समय तक, तो कैंसर के कारण वो हो सकते हैं।
0: एक उम्र आयु वर्ग की अगर लोगों की बात करें मुंह कैंसर होने की, जैसे भारत में जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि मुंह के कैंसर के जो केसेस हैं बढ़ रहे हैं, कारण तो आपने बताया, क्या उम्र सीमा जिसमें ये ज़्यादातर देखने को मिल रहा
1: जी,
0: है?
1: ज़्यादातर हम लोग को केसेस दिखते हैं मुंह के कैंसर वो 30 साल से ऊपर के ही लोग में है, 30, 40, 50 साल के एज में है। लेकिन अब बहुत कम एज से कई बच्चों में ये आदत होने
0: देखने
1: लगी
0: को
1: है।
0: मिले। जी,
1: बहुत हम लोग बहुत यंग एज के भी मुंह के कैंसर के पेशेंट बहुत फ्रीक्वेंटली देख रहे हैं, 20, 22, 24 साल के पेशेंट हैं जो कि कैंसर डेवलप हो चुका है, जो कि 10, 12 साल की उम्र से ही जो लोग शुरू कर देते हैं ये आदतें, तो
0: जी जी
1: उनमें फिर अब तो यंग एज में भी होने लगा है, पहले तो 40 के बाद ही होते
0: बाद
1: थे,
0: ही देखने को मिलता
1: देखने
0: था।
1: को
0: तो
1: मिलता था।
0: एहतियात के तौर पर अगर हम बात करें कि मुंह के कैंसर से अपने को सुरक्षित रखें, तो क्या सुझाव देना चाहेंगे
1: सबसे
0: लोगों
1: बड़ा
0: को?
1: सुझाव है कि किसी भी तरह के नशे की आदत से आप बिल्कुल दूर रहें। लेकिन सबको लगता है कि ये दूसरों को होगा, मुझे नहीं होगा, तो जानते सभी हैं, मानते
0: कोई नहीं।
1: कोई नहीं है,
0: जी
1: ठीक है।
0: जी
1: सबसे बड़ा चीज़ है कि आप ये मानो कि आपको भी हो सकता है, ठीक है। जो गुटखे या जो सिगरेट के पैकेट लोग खरीदते हैं उसी के ऊपर ही आज के डेट में इतनी बड़ी बड़ी चेतावनियां लगी रहती है,
0: बिल्कुल
1: उसके बाद भी लोग उसे खरीदते हैं। इसका मतलब ये है कि लोग मानते नहीं है कि ये मुझे हो सकता है। तो सबसे पहले ये जो चीज़ है कि लोग ये ना माने कि मुझे ना हो सकता है, ये किसी को भी हो सकता है। ये निर्भर करता है कि आपके शारीरिक जेनेटिक स्थिति कैसी है, किन्हीं लोग को जल्दी हो जाता है, किन्हीं लोग को देर से होता है, या किन्हीं लोग के जिनकी इम्यूनिटी या जेनेटिक बहुत
0: ज्यादा
1: स्ट्रांग होती है उनमें
0: वो देर
1: सिर्फ
0: से
1: कुछ
0: होता है।
1: लक्षण होकर रह जाते हैं, उनमें डेवलप नहीं होता है। लेकिन
0: जी,
1: ये ऐसा नहीं है कि ये हो नहीं सकता
0: हो
1: है
0: नहीं
1: किसी
0: सकता
1: में।
0: है। मिला जुला के ये है कि मुंह के कैंसर पे हमें अवेयर रहना चाहिए, अपने जो मुंह स्वच्छ रखना चाहिए, और जो भी इसके कारण है जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, उस पर ध्यान देना चाहिए। डॉक्टर साहब, समय निकालकर आप हमारे स्टूडियो में आए, और मुंह के कैंसर के क्या कारण हो सकते हैं उस विषय पर हमारे श्रोताओं को जागरूक किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
2: स्वास्थ्य सूचना के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे भेंट वार्ता, मुंह का कैंसर कारण और बचाव। भेंट वार्ताकार थे डॉक्टर मधुरेश कुमार। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के पटना केंद्र से। लीजिए सुनिए आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त

अब से थोड़ी ही देर में यानी 7:05 पर आप सुनेंगे सूचना एवं मनोरंजन से भरा हमारा कार्यक्रम हालचाल। 7:15 पर गजल आप सुन सकेंगे और शास्त्रीय संगीत में उस्ताद जाकिर हुसैन का तबला वादन आप सुनेंगे 7:25 पर।

उर्दू कार्यक्रम अंजुमन का प्रसारण होगा 9:10 पर और फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसमंजरी आप सुन सकेंगे 10:00। 10:30 पर सुगम संगीत का कार्यक्रम होगा और 11:00 आप सुनेंगे फिल्म संगीत।

दोपहर 12 बजे सुनिए बिहार का लोक संगीत। 12:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम नारी जगत और दोपहर 1:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुर भारती। देशगान होगा दोपहर 1:20 पर।

4:30 पर आप सुनेंगे युवाओं का कार्यक्रम युववाणी। मैथिली कार्यक्रम भारती का प्रसारण होगा शाम 5:30 पर।

0: तो ये थी संक्षिप्त जानकारी हमारी आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के पटना केंद्र से मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर। अगला प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से समाचारों के लिए, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: एम आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचकः डॉक्टर गणेश हेगड़े। अथ वार्ताः। भारत वियतनाम देशयोर मध्ये डिजिटल प्रौद्योगिकी दुर्लभ खनिजाः चिकित्सा विनियमनम् सार्वजनिक क्षेत्रस्य लेखा परीक्षा डिजिटल व्यवहारः संस्कृतिः पर्यटनम् इत्यादिषु बहुविध क्षेत्रेषु सन्धयः कृताः। नवदिल्ल्यां प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अथ वियतनाम राष्ट्रपतिः टोलाम इत्यनयोर मध्ये द्विपक्षीय वार्तायाः अनन्तरं सन्धि विज्ञप्तिपत्रेषु हस्ताक्षराणि कृतानि। संयुक्त वक्तव्ये प्रधानमंत्रिणा श्रीमोदिना प्रोक्तं यत् व्यापक विमर्शानन्तरं पक्षद्वयेन स्वसम्बन्धं वर्धित व्यापक रणनीतिक सहयोग पर्यन्तं अग्रे साधयितुं निर्णयः कृतः।

0: कल्चर, कनेक्टिविटी और कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ सिक्योरिटी, सस्टेनेबिलिटी और सप्लाई चेन रिजिलियंस, हर क्षेत्र में हमारा सहयोग नए स्तर पर पहुंचेगा। भारत और वियतनाम का बायलेटरल ट्रेड पिछले एक दशक में डबल होकर 16 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है। 2030 तक इसे 25 बिलियन डॉलर तक पहुंचाने के लिए हमने आज कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं।
1: राष्ट्रपति ही द्रौपदी मुर्मू ह्यः सायं राष्ट्रपति भवने स्वस्य वियतनाम समकक्षस्य टोलाम इत्यस्य स्वागतं कृतवती। आगन्तुकस्य गणमान्यस्य सम्मानार्थं सा भोजमपि आयोजितवती। राष्ट्रपतिः अवदत् यत् भारत वियतनाम सम्बन्धस्य उन्नत व्यापक रणनीतिक सहयोगस्य अभिवर्धनम् न केवलं द्विपक्षीय सहकार्यस्य गतिं प्रदास्यति अपितु क्षेत्रे शान्ति समृद्धौ अपि योगदानं करिष्यति। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह एवं रक्षा प्रमुख जनरल अनिल चौहान अद्य जयपुरे संयुक्त सेनापति सम्मेलनस्य द्वितीय संस्करणस्य शोभां वर्धयिष्यतः। द्विदिवसीय सम्मेलनस्य अस्य मुख्य विषयो वर्तते नूतन क्षेत्रेषु सैन्य क्षमता इति। एकस्मिन् उद्वेगकर घटनायां पश्चिम बंगालस्य उत्तर चतुर्विंशति परगणा मण्डलस्य मध्यग्रामे भाजपा दलस्य नेता सुवेन्दु अधिकारी इत्यस्य निकट सहायकः चन्द्रनाथ रथः अज्ञात आक्रमणकारिभिः भुशुण्डिकया प्रहृतः। समाचारानुसारं गतरात्रौ दोहरिया नगरे मोटरबाइक चालकाः दुष्टाः आततायिनः तस्य कार्यानस्य उपरि यथेच्छं गोलिका प्रहारं कृतवन्तः। चन्द्रनाथं तत्क्षणमेव स्थानीय चिकित्सालये प्रेषितः परन्तु सः मृतः इति घोषितः। तस्य चालकः बुद्धदेव बेरा अपि गोलिकाभिः बहुधा व्रणितः अथ गंभीरस्थितौ कोलकाता चिकित्सालये स्थानान्तरितः वर्तते। बिहारस्य मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी अद्य तस्य मंत्रिमण्डलस्य विस्तारं करिष्यति। पटनानगरस्य गांधीमैदानम् इत्यत्र अद्य मध्याह्ने द्वादशवादने आयोजिष्यमाणे शपथग्रहणसमारोहे प्रधानमंत्री श्रीनरेन्द्रमोदी, केन्द्रीय गृहमंत्री अमितशाहः, एनडीए इति राष्ट्रीय प्रजातान्त्रिक गठबन्धनस्य अनेके वरिष्ठ नेतारः च भागं गृहीष्यन्ति। अस्माकं संवाददात्रा सूचितं यत् पूर्व सर्वकारे अनुसृतस्य सूत्रस्य आधारेण मंत्रिमंडल विस्तारः क्रियते। प्रायः 15 भाजपा विधायकाः, 14 जेडीयू विधायकाः मंत्रिरूपेण शपथं ग्रहीतुं शक्नुवन्ति। विदेशमंत्री डॉ एस जयशंकरः ह्यः परमाबीरो इत्यत्र तस्य सूरीनाम समकक्षेन मेलविन बोबा इत्यनेन सह मिलितवान्। भारतीय सूरीनाम प्रतिनिधि मंडलानि नवम संयुक्त आयोग सभायां भारत सूरीनाम संबंधानां व्यापक समीक्षायाः आयोजनं कृतवन्तः। आईपीएल इति विंशतिं प्रतिविंशति क्रिकेट लीग प्रतिस्पर्धायां गतरात्रौ सनराइजर्स हैदराबाद दलेन पंजाब किंग्स दलं 33 धावनांकैः पराजितम्। अद्य सायं 7:30 लखनऊ सुपर जायंट्स अथ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दलयोर्मध्ये लखनऊ नगरस्य भारतरत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकाना क्रिकेट क्रीडांगणे प्रतिस्पर्धा भविष्यति इति वार्ताः।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। भारत और वियतनाम ने डिजिटल प्रौद्योगिकी दुर्लभ तत्व चिकित्सा उत्पाद विनियमन सार्वजनिक क्षेत्र लेखा परीक्षा डिजिटल भुगतान प्रणाली और संस्कृति तथा पर्यटन के क्षेत्र में कई समझौते किए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम के बीच हुई वार्ता के बाद ये समझौते हुए। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच विभिन्न पहलुओं पर व्यापक चर्चा की गई।
0: हम अपने संबंधों को एनहेंस कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं। अब हम अपनी साझेदारी को और ऊंचे लक्ष्यों की ओर अग्रसर करेंगे। कल्चर, कनेक्टिविटी और कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ सिक्योरिटी, सस्टेनेबिलिटी और सप्लाई चेन रिजिलियंस, हर क्षेत्र में हमारा सहयोग नए स्तर पर पहुंचेगा।

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल शाम राष्ट्रपति भवन में वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम का स्वागत किया। राष्ट्रपति ने उनके सम्मान में भोज का आयोजन किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा है कि भारत और वियतनाम के बीच उन्नत व्यापक रणनीतिक साझेदारी से दोनों देशों के सहयोग को नई गति मिलेगी और क्षेत्र में शांति तथा समृद्धि को बढ़ावा मिलेगा। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि दोनों देशों के संबंध ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सभ्यतागत रिश्तों पर आधारित हैं। हाल के वर्षों में दोनों देशों के बीच रक्षा, सुरक्षा, व्यापार, स्वास्थ्य, विज्ञान प्रौद्योगिकी और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में सहयोग लगातार बढ़ा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान आज जयपुर में संयुक्त कमांडर सम्मेलन के दूसरे संस्करण में शामिल होंगे। रक्षा मंत्रालय के अनुसार नए क्षेत्रों में सैन्य क्षमता विषय पर आयोजित ये दो दिन का सम्मेलन ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है, जिससे इसका महत्व और बढ़ गया है। सम्मेलन में साइबर, अंतरिक्ष और मनोवैज्ञानिक युद्ध जैसे उभरते क्षेत्रों की चुनौतियों पर चर्चा होगी। साथ ही भविष्य के लिए मजबूत और आधुनिक सैन्य क्षमता विकसित करने की रूपरेखा तैयार की जाएगी। इस दौरान स्वदेशी तकनीक से विकसित आधुनिक सैन्य प्रणालियों का प्रदर्शन भी किया जाएगा। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल पारामारिबो में सुरीनाम के विदेश मंत्री मेल्विन बाउवा के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडलों ने 9वीं संयुक्त आयोग बैठक के तहत भारत सुरीनाम संबंधों की व्यापक समीक्षा की। बातचीत में व्यापार, निवेश, रक्षा, ऊर्जा, विकास सहयोग, स्वास्थ्य, क्षमता निर्माण, संस्कृति और लोगों के बीच आपसी संपर्क जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया आज नई दिल्ली स्थित कर्मचारी राज्य बीमा निगम ईएसआईसी से श्रमिकों के लिए राष्ट्रव्यापी वार्षिक स्वास्थ्य जांच पहल का शुभारंभ करेंगे। इस पहल के अंतर्गत मेडिकल कॉलेज तथा अस्पताल में 40 वर्ष और उससे अधिक आयु के श्रमिक स्वास्थ्य जांच करा सकेंगे। ये पहल नए 4 श्रम संहिताओं के अंतर्गत किए गए सुधारों पर आधारित है, जिनके माध्यम से 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को 4 प्रमुख श्रेणियों में समाहित किया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और एनडीए के कई वरिष्ठ नेता पटना के गांधी मैदान में दोपहर 12:10 पर होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मंत्रिमंडल विस्तार पिछली सरकार द्वारा अपनाए नए फॉर्मूले के आधार पर किए जा रहा है। भाजपा के लगभग 15 और जेडीयू के 14 विधायकों के मंत्री पद की शपथ लेने की संभावना है। इसके अतिरिक्त लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास से 2, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा से 1-1 प्रतिनिधि को भी मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की संभावना है। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के सहयोगी चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि बीती रात दोहरिया इलाके में बाइक सवार हमलावरों ने उनकी कार पर अंधाधुंध फायरिंग की। गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस हमले में उनके ड्राइवर बुद्धदेव बेरा भी घायल हुए हैं और उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। उन्हें कोलकाता के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने पंजाब किंग्स को 33 रन से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से लखनऊ के एकाना क्रिकेट स्टेडियम में होगा। ये मैच शाम 7:30 से खेला जाएगा। फ्रांस ने हुरमुज जलडंभ मध्य को सुरक्षित करने के संभावित अभियान के तहत अपने विमानवाहक पोत समूह को लाल सागर में तैनात किया है। फ्रांस और ब्रिटेन कई हफ्तों से एक प्रस्ताव पर काम कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य तनावपूर्ण स्थिति को सामान्य करने के बाद हुरमुज जलडंभ मध्य से सुरक्षित आवागमन की नींव रखना है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन
1: मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम हालचाल। सूचना एवं मनोरंजन से भरा हमारा कार्यक्रम हालचाल में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे देश दुनिया के इतिहास के बारे में और क्या खास है आज के दिन में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्या खास है आज के दिन। जी हाँ, दुनिया के इतिहास में 7 मई एक अत्यंत महत्वपूर्ण तारीख है, क्योंकि इसी दिन नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ। और आगे बात करें तो आज द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी के आत्मसमर्पण जैसे ऐतिहासिक घटनाएं भी आज के दिन हुई। विश्व एथलेटिक्स दिवस, इस दिन को युवाओं के बीच खेलों को बढ़ावा देने के लिए विश्व एथलेटिक्स

दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 1907 में आज के ही दिन मुंबई में पहली इलेक्ट्रिक ट्राम कार का संचालन शुरू हुआ था और 1973 में अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर की नींव रखी गई थी। और अब हम बात करते हैं रविंद्रनाथ टैगोर की। जी हाँ, इनका जन्म 7 मई 1861 को कलकत्ता भारत में हुआ था। वे प्रख्यात दार्शनिक और धार्मिक सुधारक देवेंद्रनाथ टैगोर के पुत्र थे। अपने बचपन के दौरान टैगोर ने शिक्षकों से शिक्षा प्राप्त की और पारंपरिक स्कूली शिक्षा में उनके स्पष्ट अरुचि के बावजूद उन्होंने व्यापक रूप से लेखन किया। यह दिन गुरुदेव के साहित्य, संगीत और कला के उनके असाधारण योगदान का सम्मान करता है। और श्रोताओं, अब हम बात करते हैं विश्व एथलेटिक्स दिवस। जी हाँ, विश्व एथलेटिक्स दिवस हर साल 7 मई को मनाया जाता है। एथलेटिक्स एक प्रकार का ट्रैक एंड फील्ड खेल है जिसमें दौड़ना, कूदना, चलना और फेंकना शामिल है। इसका मुख्य उद्देश्य है युवाओं में खेलों, विशेषकर एथलेटिक्स के प्रति रुचि को बढ़ाना और स्वास्थ्य के प्रति भी जागरूकता फैलाना है। जानकारी श्रोताओं अभी ढेर सारी है, पर सुनते हैं इस गाने के बाद।

तो श्रोताओ, हम बात कर रहे थे विश्व एथलेटिक्स दिवस की। जी हाँ, मानव सामर्थ्य, अनुशासन और वैश्विक एकता का उत्सव है। मानव सभ्यता के उदय काल से ही शरीर और मन की समन्वित शक्ति का प्रदर्शन मनुष्य के लिए गौरव और आत्म संतोष का विषय रहा है। जब आदि मानव ने अपनी जीविका, सुरक्षा और अस्तित्व के रक्षा के लिए दौड़ना, कूदना तथा वस्तुओं को दूर तक फेंकना सीखा, तब संभवतः उसे यह आभास भी नहीं रहा होगा कि यह सहज क्रियाएं भविष्य में विकसित होकर एक संगठित खेलों का, विशेषता एथलेटिक्स का रूप धारण करेगी। वस्तुतः यही मूलभूत मानवीय गतिविधियां आज खेलों की जननी कही जाने वाले एथलेटिक्स की सुदृढ़ आधारशिला है। एथलेटिक्स का इतिहास उतना ही प्राचीन और व्यापक है श्रोताओं, जितना स्वयं मानव सभ्यता का विकास। और हम बात करें इसकी शुरुआत, तो विश्व स्तर पर एथलेटिक्स के प्रसार और विशेषकर युवाओं के खेलों के प्रति प्रेरित करने के उद्देश्य से 1996 में IAAF के तत्कालीन अध्यक्ष द्वारा विश्व एथलेटिक्स दिवस की शुरुआत की गई। इस पहल का मुख्य लक्ष्य विद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों में खेल संस्कृति को प्रोत्साहित करना, नई प्रतिभा को पहचानना और युवाओं में शारीरिक सक्रियता के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना था। यह दिवस आज भी इसी मूल भावना के साथ चल रहा है। एथलेटिक्स जो है वो हमारे शरीर के प्रत्येक अंग को सक्रिय करते हुए समग्र शारीरिक विकास को प्रोत्साहित भी करता है, और एथलेटिक्स का प्रभाव सबसे प्रत्यक्ष रूप से मानव के शरीर और स्वास्थ्य पर पड़ता है। तो श्रोता, ये जानकारी भरी बातें, आज एथलेटिक्स दिवस है और ये जानकारी भरी बातें आपके सामने हम साझा कर रहे थे। इसी के साथ सूचना एवं मनोरंजन से भरा हमारा ये कार्यक्रम हालचाल अब यहीं समाप्त होता है। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के पटना केंद्र से। मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर। लीजिए सुनिए आविदा परवीन के गाए गजल।

अभी आप सुन रहे थे आविदा परवीन के गाए गजल। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के पटना केंद्र से। लीजिए सुनिए शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में उस्ताद जाकिर हुसैन का तबला वादन। ताल है 3 ताल।

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे उस्ताद जाकिर हुसैन का तबला वादन, ताल था तीत ताल। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के पटना केंद्र से, मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: एक जमाने से

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: इधर आइए इधर।
1: इधर?
0: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
2: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
1: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
2: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
1: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना।
3: हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612-222-5042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
2: शुभ वाणी,
1: लाभ वाणी,
0: आकाशवाणी।
4: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
5: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
6: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
5: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
6: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के पटना केंद्र से। अगला प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से। समाचारों के लिए कृपया प्रतीक्षा करें।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह सहित कई गणमान्य व्यक्ति पटना में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। केरलम के नव निर्वाचित कांग्रेस विधायक आज तिरुवनंतपुरम में अपने नेता का चुनाव करेंगे। देश आज पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ मना रहा है। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के सहयोगी की गोली मारकर हत्या। अमेरिका और ईरान पश्चिम एशिया में युद्ध समाप्त करने के लिए समझौते के करीब। फ्रांस ने होर्मुज जल डमरू मध्य को सुरक्षित करने के अंतर्गत अपने विमान वाहक पोत समूह को लाल सागर में तैनात किया। और दिल्ली राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी करेगा। और अब समाचार विस्तार से। केरलम के नव निर्वाचित कांग्रेस विधायक आज तिरुवनंतपुरम में अपने नेता के चयन के लिए बैठक करेंगे। कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूडीएफ ने राज्य की 140 विधानसभा सीटों में से 104 सीटें जीती हैं। यूडीएफ नेता राज्यपाल के तिरुवनंतपुरम पहुंचने के बाद उनसे मुलाकात करेंगे। केरलम के राज्यपाल राजेंद्र

0: विश्वनाथ अरलकर के पास तमिलनाडु का अतिरिक्त प्रभार भी है और वो फिलहाल चेन्नई में हैं। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन और एनडीए के कई वरिष्ठ नेता पटना के गांधी मैदान में दोपहर 12:10 पर होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मंत्रिमंडल विस्तार पिछली सरकार द्वारा अपनाए गए फार्मूले के आधार पर किया जा रहा है। भाजपा के लगभग 15 और जेडीयू के 14 विधायकों के मंत्री पद की शपथ लेने की संभावना है। इसके अतिरिक्त लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास से 2, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा से 1-1 प्रतिनिधि को भी मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की उम्मीद है। तमिलनाडु में द्रविड़ मुन्नेत्र कजगम डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन ने कहा है कि उनकी पार्टी राज्य में नई पार्टी को मिले जनादेश का सम्मान करती है और वो न तो दोबारा चुनाव चाहते हैं और न ही किसी प्रकार का संवैधानिक संकट चाहते हैं। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी नई सरकार के गठन में बाधा नहीं बनेगी। स्टालिन ने उन अफवाहों को भी खारिज कर दिया कि डीएमके अगली सरकार बनाने के लिए अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कजगम एआईएडीएमके से बातचीत कर रही है। पश्चिम बंगाल में नव निर्वाचित भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह शनिवार को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में रविन्द्र जयंती के अवसर पर आयोजित किया जाएगा। राज्य भाजपा अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य ने कल राज्य सचिवालय नावन्न में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर समारोह की तैयारियों और चुनाव बाद हिंसा रोकने के उपायों पर चर्चा की। बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और राज्य प्रभारी सुनील बंसल, पार्टी नेता सौमित्र खान और ज्योतिमर्य सिंह महतो भी मौजूद रहे। शमिक भट्टाचार्य ने बताया कि पार्टी के नव निर्वाचित विधायक कल अपने संसदीय दल के नेता का चुनाव करेंगे। शनिवार सुबह 10 बजे होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों के शामिल होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि यदि ममता बनर्जी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देती हैं तब भी समारोह पूरी तरह संवैधानिक प्रक्रिया के तहत आयोजित किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
2: परीक्षा एक ऐसा अवसर है और परीक्षा के लिए हेल्दी कंपटीशन की भावना हमारी तैयारी को और बेहतरीन बनाती
1: है। NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। देश आज ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ मना रहा है। पिछले वर्ष 7 मई को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था, जिसके तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकियों के 9 ठिकानों पर हवाई हमले किए गए। इन हमलों में कम से कम 100 आतंकी मारे गए थे। ये कार्रवाई पिछले वर्ष 22 अप्रैल को पहलगाम में पर्यटकों पर हुए पाकिस्तान प्रायोजित बर्बर आतंकी हमले का भारत की ओर से करारा जवाब थी। एक रिपोर्ट।
3: ऑपरेशन सिंदूर भारत की सैन्य और रणनीतिक शक्ति का एक महत्वपूर्ण प्रदर्शन था, जिसे सैन्य और गैर सैन्य साधनों के संयोजन से अंजाम दिया गया। इस बहुआयामी अभियान ने आतंकवादी खतरों को प्रभावी ढंग से निष्क्रिय कर दिया, पाकिस्तानी आक्रामकता को रोका और आतंकवाद के प्रति भारत की शून्य सहिष्णुता नीति को दृढ़ता से लागू किया। इस अभियान का उद्देश्य आतंकवाद के अपराधियों और योजनाकारों को दंडित करना और सीमा पार आतंकी ढांचे को नष्ट करना था। इस अभियान के परिणाम स्वरूप 9 प्रमुख आतंकी शिविरों का विनाश, 11 पाकिस्तानी हवाई अड्डों पर हमला और कई प्रमुख आतंकवादियों का खात्मा हुआ। इस भारी क्षति से आहत होकर पाकिस्तान को युद्ध विराम का सहारा लेने के लिए विवश होना पड़ा। भारत ने न केवल इस ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया, बल्कि इसने भारतीय वायुसेना, भारतीय सेना और भारतीय नौसेना, इन तीनों बलों के बीच समन्वित कार्रवाई और अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन भी किया। भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर की वर्षगांठ पर भारतीय सशस्त्र बलों के शौर्य और बलिदान को नमन किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि देश की सशस्त्र सेनाओं का साहस और समर्पण लगातार राष्ट्र की सुरक्षा सुनिश्चित कर रहा है। रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेनाओं की कार्रवाई ने सटीक रणनीति, तीनों सेनाओं के बेहतरीन तालमेल और समन्वय का उत्कृष्ट उदाहरण पेश किया, जो आधुनिक सैन्य अभियानों के लिए एक नई मिसाल है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर राष्ट्रीय संकल्प और तैयारी का मजबूत प्रतीक है, जो दिखाता है कि भारतीय सशस्त्र बल हर चुनौती का निर्णायक जवाब देने के लिए हमेशा तैयार है। भारतीय सेना ने आज ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर एक वीडियो जारी किया।

0: है। इस वीडियो में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ भारत की सुनियोजित सटीक और प्रभावी कार्रवाई को दर्शाया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान आज जयपुर में संयुक्त कमांडर सम्मेलन के दूसरे संस्करण में शामिल होंगे। रक्षा मंत्रालय के अनुसार नए क्षेत्रों में सैन्य क्षमता विषय पर आयोजित ये दो दिन का सम्मेलन ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है, जिससे इसका महत्व और बढ़ गया है। सम्मेलन में साइबर, अंतरिक्ष और मनोवैज्ञानिक युद्ध जैसे उभरते क्षेत्रों की चुनौतियों पर चर्चा होगी। श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया आज नई दिल्ली स्थित कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIEC से श्रमिकों के लिए राष्ट्रव्यापी वार्षिक स्वास्थ्य जांच पहल का शुभारंभ करेंगे। इस पहल के अंतर्गत मेडिकल कॉलेज तथा अस्पताल में 40 वर्ष और उससे अधिक आयु के श्रमिक स्वास्थ्य जांच करा सकेंगे। ये पहल नई 4 श्रम संहिताओं के अंतर्गत किए गए सुधारों पर आधारित है, जिनके माध्यम से 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को 4 प्रमुख श्रेणियों में समाहित किया गया है। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के सहयोगी चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि बीती रात दोहरिया इलाके में बाइक सवार हमलावरों ने उनकी कार पर अंधाधुंध फायरिंग की। गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इन हमलों में उनके ड्राइवर बुद्धदेव बेरा भी घायल हुए हैं और उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। उन्हें कोलकाता के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच शुरू कर दी है। पुलिस महानिदेशक सिद्धिनाथ गुप्ता ने बताया कि घटना में इस्तेमाल वाहन बरामद कर लिया गया है। जानकारी के अनुसार हमलावर मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए थे। इस बीच उत्तर 24 परगना के बसीरहाट में एक अन्य भाजपा कार्यकर्ता रोहित रॉय को भी गोली मारी गई। उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। कांग्रेस, वामपंथी दलों और तृणमूल कांग्रेस ने शुभेंदु अधिकारियों के निजी सहायक की हत्या की कड़ी निंदा की है। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम 3 दिन की भारत यात्रा के दौरान आज मुंबई में हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति लाम मुंबई में कई कार्यक्रम में शामिल होंगे।
1: वियतनाम के अध्यक्ष तो लाम का मुंबई का एक दिवसीय दौरा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से शुरू होगा, जिसमें अध्यक्ष लाम द्वारा रिंग द बेल सेरेमनी भी शामिल है। इसके बाद वे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात करेंगे। बाद में राष्ट्राध्यक्ष तो लाम मुख्यमंत्री फडणवीस के साथ भारत वियतनाम व्यापार मंच में भाग लेंगे। इस मंच का आयोजन CII द्वारा और वियतनाम चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सहयोग से किया जा रहा है। यात्रा के अंतिम चरण में राष्ट्राध्यक्ष तो लाम लोकभवन में महाराष्ट्र के राज्यपाल से मुलाकात करेंगे। वियतनाम के राष्ट्राध्यक्ष की भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई की यात्रा दोनों देशों के बीच बढ़ते रणनीतिक और आर्थिक सहयोग के परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण है। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, मुंबई।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल पारामारिबो में सुरीनाम के विदेश मंत्री मेलविन बाउवा के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडलों ने 9वीं संयुक्त आयोग बैठक के तहत भारत सुरीनाम संबंधों की व्यापक समीक्षा की। बातचीत में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि व्यापार, निवेश, रक्षा, ऊर्जा, विकास, सहयोग, स्वास्थ्य, क्षमता निर्माण, संस्कृति और लोगों के बीच आपसी संपर्क जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई।
2: We have a deep and trusted relationship.
3: हमारा रिश्ता गहरा और भरोसेमंद है, क्योंकि यह लोगों के बीच मजबूत जुड़ाव की नींव पर टिका है। भारत इस बात की सराहना करता है कि सुरीनाम आज अपनी विकास यात्रा में बड़े कदम आगे बढ़ाने के लिए तैयार है।
2: In its developmental journey.
0: अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम करने को लेकर बातचीत आगे बढ़ रही है। क्षेत्रीय सूत्रों के मुताबिक एक प्रारंभिक समझौते का मसौदा तैयार किया जा रहा है, जिस पर दोनों पक्ष चर्चा कर रहे हैं। एक रिपोर्ट।
4: ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर नौसेना ने कहा है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित मार्ग नई प्रक्रियाओं के तहत संभव है, हालांकि उसने इसका विस्तृत विवरण नहीं दिया। इस बीच अमेरिका की केंद्रीय कमान ने कहा है कि उसने ओमान की खाड़ी में एक ईरानी ध्वज वाले तेल टैंकर को निष्क्रिय कर दिया है, जिसने जारी अमेरिका नाकाबंदी की अवहेलना करते हुए एक ईरानी बंदरगाह की ओर जाने का प्रयास किया था। लेबनान में इजरायली सेना ने बेरूत में एक लक्ष्य पर हमला किया, जिसके बारे में माना जाता है कि वह हिजबुल्ला के कुलीन रादवान बल से जुड़ा हुआ था। इजरायली अधिकारियों का कहना है कि लक्ष्य व्यक्ति इजरायली सैनिकों और नागरिक क्षेत्रों पर हमलों के लिए जिम्मेदार था। हिजबुल्ला ने जवाबी कार्रवाई का दावा करते हुए इजरायली ठिकानों पर हमले और इजरायली बलों के हताहत होने की सूचना दी है। ये घटनाक्रम नाजुक सुरक्षा वातावरण को रेखांकित करते हैं, जबकि वार्ता जारी है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: फ्रांस ने होर्मुज जलडमरू मध्य को सुरक्षित करने के संभावित अभियान के तहत अपने विमानवाहक पोत समूह को लाल सागर में तैनात किया है। एक बयान में फ्रांसीसी सेना ने कहा है कि चार्ल्स डी गॉल विमानवाहक पोत समूह, जिसके साथ एक इतालवी और एक डच युद्धपोत भी है, दक्षिणी लाल सागर की ओर अग्रसर है। फ्रांस और ब्रिटेन कई हफ्तों से एक प्रस्ताव पर काम कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य तनाव

0: महत्वपूर्ण स्थिति को सामान्य करने के बाद होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित आवागमन की नींव रखना है। हमारे विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी की अगली कड़ी में आज हम प्रख्यात लेखिका शिव शंकरी से बातचीत करेंगे। उन्हें प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।
1: I was a Sanskrit student. I was not a Tamil student. So I never knew I can write nice Tamil grammar. My becoming a writer, the most beautiful, significant, meaningful accident in my life. I went from village to village to know that language, to know the habits, the rituals.
0: ये कार्यक्रम आज सुबह 9:10 पर आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर प्रसारित होगा। आप इसे न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। दिल्ली में राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किया जाएगा। ये प्रतियोगिता 27 जुलाई से 2 अगस्त तक त्यागराज स्टेडियम में खेली जाएगी। इसमें 35 से अधिक देशों के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। ये प्रतियोगिता दिल्ली सरकार और टेबल टेनिस महासंघ द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित की जाएगी, जिसमें इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, मलेशिया, सिंगापुर, स्कॉटलैंड, वेल्स, नाइजीरिया, केन्या, जमैका और त्रिनिदाद तथा टोबैगो जैसे देशों के खिलाड़ी शामिल होंगे। और IPL क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने पंजाब किंग्स को 33 रन से हरा दिया है। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से लखनऊ के काना क्रिकेट स्टेडियम में होगा। ये मैच शाम 7:30 से खेला जाएगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
2: फरहत पहलगाम आतंकी हमले में निर्दोष लोगों की निर्मम हत्या का बदला लेने के लिए भारतीय सेना द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर के 1 वर्ष पूरे होने पर आज सभी समाचार पत्रों ने सुर्खी बनाई है। हिंदुस्तान लिखता है, शौर्य का 1 वर्ष, जल थल नभ में और सशक्त हुई सेना। दैनिक भास्कर के शब्द हैं, भारत में पहली बार 50,000 जवानों की अलग ड्रोन फोर्स, किसी भी सैन्य हमले में सबसे पहले करेगी प्रहार। पत्र लिखता है, ऑपरेशन सिंदूर का 1 साल, अजय हिंदुस्तान के वो 88 घंटे जब हमारे प्रहार से घुटनों पर आ गया था पाकिस्तान। आज हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय पन्ने पर ऑपरेशन सिंदूर पर लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, आज देश इस सैन्य अभियान की सफलता की वर्षगांठ मना रहा है। इसका संदेश यही है कि भारत के पास अपने हितों की रक्षा करने की क्षमता और इच्छा शक्ति दोनों है। दैनिक जागरण ने अमेरिका ईरान के बीच युद्ध समाप्त होने के बाद शेयर बाजार में तेजी आने का समाचार दिया है। पत्र लिखता है, अमेरिका ईरान वार्ता में प्रगति से बाजार में उछाल, सेंसेक्स 941 अंक चढ़ा, ट्रंप के नरम रुख से क्रूड की कीमतों में आई गिरावट। पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत में भारी बारिश, महाराष्ट्र में पारा 43.5 डिग्री के तक पहुंचा, अमर उजाला की सुर्खी है।
0: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह सहित कई गणमान्य व्यक्ति पटना में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। केरलम के नव निर्वाचित कांग्रेस विधायक आज तिरुवनंतपुरम में अपने नेता का चुनाव करेंगे। देश आज पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ मना रहा है। अमेरिका और ईरान पश्चिम एशिया में युद्ध समाप्त करने के लिए समझौते के करीब। फ्रांस ने होर्मुज जलडमरू मध्य को सुरक्षित करने के अंतर्गत अपने विमान वाहक पोत समूह को लाल सागर में तैनात किया। और दिल्ली राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी करेगा। इसके साथ ही समाचार प्रभाग
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सुनील वर्मा। द हेडलाइंस। बिहार चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी टू एक्सपैंड हिज कैबिनेट टुडे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह अमंग होस्ट ऑफ डिग्निटरीज टू अटेंड स्वेरिंग इन सेरेमनी इन पटना। Newly elected Congress MLAs of Keralam to meet in Thiruvananthapuram today to elect their leader. India marks first anniversary of Operation Sindoor, launched in response to Pahalgam terror attack. Bengal BJP leader Shubhendu Adhikari's close aide shot dead in North Chobis Parganas district of West Bengal. US and Iran closing in on agreement to end war in West Asia. France moves its carrier strike group to Red Sea as part of potential mission to secure Strait of Hormuz. And Delhi to host 2026 Commonwealth Table Tennis Championship. Bihar Chief Minister Samrat Chaudhary will expand his cabinet today. Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah and several senior NDA leaders will attend the swearing-in ceremony

अब खबरें तफसील से। मुल्क में आज ऑपरेशन सिंदूर का 1 साल मुकम्मल हो रहा है। पिछले साल 7 मई को आज ही के दिन भारत ने ऑपरेशन सिंदूर का आगाज किया था और इसके तहत पाकिस्तान में दहशतगर्दी के 9 बुनियादी ढांचों को तबाह करने और पाकिस्तान के जेर तसल्लुत कश्मीर में कम से कम 100 दहशतगर्दों को हलाक करने के लिए हवाई हमले किए गए थे। भारत का ऑपरेशन सिंदूर

0: खुर्शीद सिंह उनके गुलाम समात करते हैं।
1: आज हमारी कोशिश है कि आपके रूबरू चंद अशार पेश करें। अपनी बात हम शुरू करते हैं, सबसे पहले गजल के चंद अशार मुलाहजा फरमाएं कि मुझे मुझे तुमसे कोई गिला भी नहीं है, मुझे तुमसे कोई गिला भी नहीं है और अंदर कोई दूसरा भी नहीं है। मुझे तुमसे कोई गिला भी नहीं है और अंदर कोई दूसरा भी नहीं है। और शेर है कि मुझे मुझे हादसों ने सिखाया है जीना, मुझे हादसों ने सिखाया है जीना, ये दिल आंधियों से डरा भी नहीं है। कि मुझे हादसों ने सिखाया है जीना, ये दिल आंधियों से डरा भी नहीं है, मुझे तुमसे कोई गिला भी नहीं है। और ये शेर दे रहा हूँ, ज़रूरत बहुत थी, ज़रूरत बहुत थी, हर मोहब्बत से कोई मिला भी नहीं है। कि ज़रूरत ज़रूरत ज़रूरत बहुत थी और मोहब्बत से कोई मिला भी नहीं है और मुझे तुमसे कोई गिला भी नहीं है। और ये शेर कि मोहब्बत से तुमने किया कत्ल ऐसे, कि मोहब्बत से तुमने किया कत्ल ऐसे, मेरा दिल तो अब के दुखा भी नहीं है। कि मोहब्बत से तुमने किया कत्ल ऐसे, मेरा दिल तो अब के दुखा भी नहीं है और मुझे तुमसे कोई गिला भी नहीं है। और ये शेर है कि मेरे दिल को मौला ये क्या हो गया है, मेरे दिल को मौला ये क्या हो गया है, कहीं कोई अंदर सदा भी नहीं है। मेरे दिल को मौला ये क्या हो गया है, कहीं कोई अंदर सदा भी नहीं है। और आखिरी शेर के बहुत वक्त पर उसने छोड़ा है मुझको, कि बहुत वक्त पर उसने छोड़ा है मुझको, वो अच्छा नहीं तो बुरा भी नहीं है और मुझे तुमसे कोई गिला भी नहीं है और अंदर कोई दूसरा भी नहीं है। और इसके बाद गजल के चंद अशार मुलाहजा फरमाएं, और कि जो दिल में बस गई थी वो आस्तां से निकली, जो दिल में बस गई थी वो आस्तां से निकली, बेजार हो गई तो वहमों गुमा से निकली। कि जो दिल में बस गई थी वो आस्तां से निकली और बेजार हो गई तो वहमो गुमा से निकली। और जो बात भी नहीं थी जाने कहाँ से निकली, कि जो बात भी नहीं थी जाने कहाँ से निकली, जो शर्त भी नहीं थी लेकिन बयां से निकली। कि जो बात भी नहीं थी जाने कहाँ से निकली, जो शर्त भी नहीं थी लेकिन बयां से निकली। और ये शेर कि तशकीक की रदाएं ओढ़े हुए कोई था, तशकीक की रदाएं ओढ़े हुए कोई था, जलते हुए वो कैसे खुद ही धुआं से निकली। कि तशकीक की रदाएं ओढ़े हुए कोई था और जलते हुए वो कैसे खुद ही धुआं से निकली, और जो दिल में बस गई थी वो आस्तां से निकली। और ये शेर कि मैं चाहता था घर की दीवार ये न टूटे, मैं चाहता था घर की दीवार ये न टूटे, दस्तार मेरी उछली जब वो मकान से निकली। मैं चाहता था घर की दीवार ये न टूटे और दस्तार मेरी उछली जब वो मकान से निकली। और शेर मुलाहजा फरमाए ख़ास तौर पर कि मैं तुझको देख कर ही कहने लगा था सब कुछ, मैं तुझको देख कर ही कहने लगा था सब कुछ, जाने के बाद तेरे आवाज जहाँ से निकली। मैं तुझको देख कर ही कहने लगा था सब कुछ और जाने के बाद तेरे आवाज जहाँ से निकली। और ये शेर के सबसे करीब तर थी और सबसे अजीज तर भी, कि सबसे करीब तर थी सबसे अजीज तर भी, और जो खो गई थी मुझ में तेरे जहाँ से निकली। कि सबसे करीब तर थी सबसे अजीज तर भी, जो खो गई थी मुझ में तेरे जहाँ से निकली। और ये शेर कि मैं इम्तहां से गुजरा तू इम्तहां से गुजरी, मैं इम्तहां से गुजरा तू इम्तहां से गुजरी, मिलने लगे तो गुर्बत क्यों दरमियां से निकली। कि मैं इम्तहां से गुजरा तू इम्तहां से गुजरी, मिलने लगे तो गुर्बत क्यों दरमियां से निकली। और आखिरी शेर कि परवाज़ की बुलंदी देकर मैं खुश बहुत था, कि परवाज़ की बुलंदी देकर मैं खुश बहुत था, परवाज़ से वो लेकिन मेरी यमा से निकली।

0: परवाज की बुलंदी देकर मैं खुश बहुत था, परवाज से वो लेकिन मेरी अमां से निकली, और जो दिल में बस गई थी वो आस्तां से निकली, और बेजार हो गई तो वहमो गुमा से निकली, और जो बात भी नहीं थी जाने कहाँ से निकली, जो शर्त भी नहीं थी लेकिन बयां से निकली। और दो तीन शेर पहले एक छोटी सी गज़ल के, कि मिलने की आरजू है न ख्वाबों के सिलसिले, कि मिलने की आरजू है न ख्वाबों के सिलसिले, मैंने ही तोड़ डाले हैं यादों के सिलसिले, कि मिलने की आरजू है न ख्वाबों के सिलसिले, और मैंने ही तोड़ डाले हैं यादों के सिलसिले, और तरके ताल्लुकात में एक बरहमी सी थी, तरके ताल्लुकात में एक बरहमी सी थी, जारी भी कैसे रखते हम बातों के सिलसिले। और आखिरी शेर के, उसने चिराग मेरे सारे बुझा दिए हैं, उसने चिराग मेरे सारे बुझा दिए हैं, उसने चिराग मेरे सारे बुझा दिए हैं, अब दूर कैसे होंगे रातों के सिलसिले, और मिलने की आरजू है न ख्वाबों के सिलसिले। और ये गज़ल तीन चार शेर में खसूसी तवज्जो चाहूँगा आप सामेईन की, कि आई है गर बला तो बला के ख़िलाफ़ हम, कि आई है गर बला तो बला के ख़िलाफ़ हम, जो तुझको छीन ले तो हवा के ख़िलाफ़ हम, कि आई है गर बला तो बला के ख़िलाफ़ हम, जो तुझको छीन ले तो हवा के ख़िलाफ़ हम, और मुझको तो मिल रही हैं दुआएं नसीब की, कि मुझको तो मिल रही हैं दुआएं नसीब की, जो तू नहीं मिली तो दुआ के ख़िलाफ़ हम, कि मुझको तो मिल रही हैं दुआएं नसीब की, जो तू नहीं मिली तो दुआ के ख़िलाफ़ हम, और मासूमियत के कत्ल पर निकले हैं रक़्स-ए जान। मैं ख़ास तवज्जो चाहूँगा कि मासूमियत के कत्ल पर निकले हैं रक़्स-ए जान, तलवार बरहना है सज़ा के ख़िलाफ़ हम, कि मासूमियत के कत्ल पर निकले हैं रक़्स-ए जान, और तलवार बरहना है और सज़ा के ख़िलाफ़ हम, और शेर है कि ऐसी शराफतों से यूं पर्दा न कीजिए, कि ऐसी शराफतों से यूं पर्दा न कीजिए, इस्मत जो लुट गई तो रिदा के ख़िलाफ़ हम, इस्मत जो लुट गई तो रिदा के ख़िलाफ़ हम। और ये शेर कि यूं प्यार में यकीन को कभी तोड़ते नहीं, यूं प्यार में यकीन को कभी तोड़ते नहीं, सच दिल ने कह दिया तो सदा के खिलाफ हम। और आखिरी शेर के, सच दिल ने कह दिया तो सदा के खिलाफ हम, और जो कुछ रहा है जख्मे रफू गर मैं खुद हुआ, ऐसा इलाज हो तो दवा के खिलाफ हम, और आई है गर बला तो बला के खिलाफ हम, जो तुझको छीन ले तो हवा के ख़िलाफ़ हम। और आखिर में दो शेर कि बेवफाई का जब सवाल नहीं, बेवफाई का जब सवाल नहीं, तुझको खोया तो क्या मलाल नहीं, और सब मेरी रोशनी वो लेके गया, दिल की बस्ती में अब उजाल नहीं, और बेवफाई का जब सवाल नहीं, तुमको खोया तो क्या मलाल नहीं। बहुत शुक्रिया।
1: जो तुझको छीन ले तो हवा के खिलाफ हम, तुझको खोया तो क्या मलाल नहीं। अभी आप कासिम खुर्शीद के इस ऐसे खूबसूरत अशआर समाप्त कर रहे थे। आइए अब प्रोग्राम के आखिर में चंद गज़लों का लुत्फ़ उठाते हैं।

सामिन, अभी आप सुन रहे थे पंकज उदास और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में ये गज़ल। आइए अब भूपेंद्र और मिताली की आवाज़ में सुनते हैं अगली गज़ल।

अभी आप सुन रहे थे भोपाली और मिताली सिंह और भूपेंद्र सिंह की आवाज़ में ये गज़ल। आइए अब अगली गज़ल सुनते हैं जगजीत सिंह की आवाज़ में।

सामिन अभी आप जगजीत सिंह की आवाज़ में सुन रहे थे ये प्यारी गज़ल। इसी के साथ हमारे उर्दू प्रोग्राम अंजुमन का वक्त यहीं ख़त्म होता है। ज़रीन फातिमा को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।

अभी आप सुन रहे थे उर्दू कार्यक्रम अंजुमन। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के पटना केंद्र से, मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज़ पर। लीजिए सुनिए रसमंजरी के अंतर्गत फिल्म संगीत, सुनते हैं इस छोटे से अंतराल के बाद।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: बाबूजी के कहना बा बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।

दबंग फिल्म के इस गाने को अपनी आवाज से सजाया राहत फतेह अली खान ने। फैज अनवर के लिखे इस गीत को अपनी धुन से सजाया साजिद वाजिद ने। रसमंजरी कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के पटना केंद्र से।

0: अरिजीत सिंह की आवाज़ में इस गाने को हमने लिया फिल्म कबीर सिंह से। मिथुन के लिखे इस गीत को अपने धुन से सजाया मिथुन ने। रसमंजरी कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के पटना केंद्र से। गाने अभी और भी हैं, सुनते हैं इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

केसरी फिल्म के इस गाने को अपनी आवाज से सजाया तनिष बागची ने। तनिष बागची के लिखे इस गीत को अपनी धुन से सजाया है, इसे अपनी आवाज से सजाया है अरिजीत सिंह और आशीष कौर ने।

इसी गाने के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसमंजरी अब यहीं समाप्त होता है। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के पटना केंद्र से, मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर। लीजिए सुनिए सुगम संगीत के कार्यक्रम में आशा भोसले के गाए गजल।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले के गाए गजल, और आइए आप सुनते हैं मेहंदी हसन और तरन्नुम नाज की आवाज में ये गजल।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे मेहंदी हसन और तनरनुम नाज की आवाज में ये गजल। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के पटना केंद्र से, मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत।

इस गाने को हमने लिया फिल्म पल पल दिल के पास से। इसे लिखा सिद्धार्थ गरिमा ने और इसकी धुन बनाई सचेत परंपरा ने। आवाजें अरिजीत सिंह और परंपरा ठाकुर की।

0: ये आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।

0: हीरोपंती फिल्म के इस गाने को अपनी आवाज से सजाया अरिजीत सिंह ने, कौसर मुनीर के लिखे इस गीत को अपनी धुन से सजाया साजिद वाजिद ने। फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के पटना केंद्र से। गाने अभी और भी हैं, सुनते हैं इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

जीनियस फिल्म के इस गाने को अपनी आवाज से सजाया है अरिजीत सिंह ने। कुमार के लिखे इस गीत को अपनी धुन से सजाया है हिमेश रेशमिया ने।

0: राहत फतेह अली खां, शंकर महादेवन और ऋचा शर्मा की आवाज़ में इस गाने को हमने लिया फिल्म माई नेम इज़ खान से। निरंजन अय्यनगर के लिखे इस गीत को अपनी धुन से सजाया है शंकर एहसान लोय ने। रसमंजरी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के, फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के पटना केंद्र से। गाने अभी और भी हैं, सुनते हैं इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

मोनाली ठाकुर की आवाज़ में इस गाने को हमने लिया फिल्म दम लगा के हईशा से। वरुण ग्रोवर के लिखे इस गीत को अपने धुन से सजाया है अनु मलिक ने।

0: इसी गाने के साथ फिल्म संगीत का हमारा आज का ये कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है, मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज़ पर। एक अंतराल के बाद सुनेंगे बिहार का लोक संगीत कार्यक्रम।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: कहां चलती है, इधर तो आओ।
5: इधर आइए, इधर।
6: इधर?
5: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
7: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
6: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
7: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
6: विज्ञापन प्रसारण

0: सेवा आकाशवाणी पटना।
1: हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612-222-5042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
2: शुभ वाणी,
0: लाभ वाणी,
2: आकाशवाणी।
3: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। दिन के 12:10 हुए हैं। बिहार का लोक संगीत कार्यक्रम में आज कुछ भोजपुरी लोकगीत हम सुनवा रहे हैं। सबसे पहले सुनिए शैलेश कुमार ठाकुर के गाए कुछ लोकगीत।

शैलेश कुमार ठाकुर के गाए लोकगीतों का आनंद आपने लिया। बिहार का लोक संगीत कार्यक्रम में अब एक अंतरा लेंगे, सुनवाएंगे कुछ और लोकगीत।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
4: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री, बस 30 रुपए में।
5: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।

0: अभी आपने रामाशीष यादव के गाए लोकगीतों का आनंद लिया। बिहार का लोक संगीत कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर, और इस समय श्रोता सुन रहे हैं हमारी पहली सभा के कार्यक्रम। हम आपको बता दें कि इस समय स्टूडियो की घड़ी में 12:30 होने को हैं। एक अंतराल के बाद सुनेंगे अगला कार्यक्रम।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल। डाउनलोड

0: OTT app now and watch for free.
1: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज़ पर। दिन के समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 12:30 हो रहे हैं। आप सुनेंगे महिलाओं का कार्यक्रम नारी जगत।
2: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
3: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
4: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
5: नारी जगत की सखियों को रंजना का नमस्कार। और आज हम बहनों के साथ बातें करेंगे, गीत संगीत में भी शामिल होंगे और कुछ इस सुहाने मौसम की बातें कर ले। अभी है तो गर्मी का मौसम, लेकिन थोड़ी ठंडी भी हम महसूस कर रहे हैं और आनंद ले रहे हैं। आनंद के साथ हमारे घर में बचत भी हो रही है, वो बिजली की, क्योंकि अभी एसी की कूलर की ज़रूरत नहीं है और हम ठंडक महसूस भी कर रहे हैं। और ये प्रकृति हमें तोहफे के रूप में दे रही है, ये हम लोगों के लिए तो अच्छा है सखियों, लेकिन खेती बाड़ी जो किसान हैं उनके लिए ये हानिकारक है, क्योंकि इस मौसम में बारिश फसलों को नुकसान भी पहुंचाता है। और ऐसा हम लोग सुन भी रहे हैं और जो गांव से जुड़े लोग हैं वो हमको बताते भी हैं जब हमारी बातें होती हैं। तो इसलिए प्रकृति के साथ हम तालमेल से रहें, तभी प्रकृति हमें तोहफे के रूप में सब कुछ देती है और हम प्राकृतिक संसाधन जैसे हवा, पानी, उपजाऊ मिट्टी, इन सब को यदि संभाल कर रखें, इनकी सुरक्षा करें, इनके साथ तालमेल से रहें, तो हम हमेशा खुश रहेंगे, स्वस्थ भी रहेंगे। और सखियों, कल कारखाने जो होते हैं वो बहुत प्रदूषण और कचरे का निस्तारण करते हैं, और इन सब के लिए सरकार के नियम के साथ यदि हम चलते हैं तो कल कारखाने से निकले जो कचरे होते हैं और विषाक्त जो गैस होते हैं उनके निस्तारण के लिए भी सरकार रास्ता बताती है और सहयोग करती है, बशर्ते यदि हम जो भी कल कारखाने हैं उनको सरकार की देखरेख में चलाते हैं। और कारखानों की, कल कारखानों की ज़रूरत तो होती ही है, क्योंकि हमारे रोज़मर्रा की चीज़ें और बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही उत्पाद होते हैं ऐसे ही जगहों पर, और इससे लोगों को रोज़गार भी मिलता है और गांव, शहर, राज्य, इन सब की अर्थव्यवस्था भी बहुत बढ़ती है। तो ये तो ज़रूरी है, लेकिन ये सही ढंग से इनसे निकला कचरा निस्तारण हो, इन सब का भी ख्याल रखना ज़रूरी है। और इसके लिए हम नागरिक ही सहयोग कर सकते हैं, क्योंकि इससे फ़ायदा और नुकसान हमको ही होता है। और सखियों, पानी हमारे जीवन की धारा है और हम साफ पानी का उपयोग ही करते हैं, और प्रकृति से मिला ये जल जो है हर जगह साफ नहीं होता है, इसको हमारे पीने लायक और अन्य उपयोग के लायक बहुत तकनीकी विधि से बनाया जाता है, तो इसकी भी देखरेख और इसको भी संभाल कर रखना, यूज करना बहुत ज़रूरी है। और प्राकृतिक बिजली जैसे कि सोलर पैनल लगाकर, गोबर गैस से, जल से, पवन से, इन सब से जो बिजली मिलती है वो उनमें उनके संयंत्र लगाने में कुछ खर्चे तो ज़रूर आते हैं, लेकिन जो बिजली मिलती है वो हमको मुफ्त ही मिलती है। तो ऐसे तरीकों की जानकारी लें, इसके लिए सरकार भी हमारी मदद करती है, और ऐसे उपायों को ज़रूर ही अपनाएं। और खेती बाड़ी में भी जैविक तरीके से खेती को बढ़ावा दें और जैविक खाद का ही प्रयोग करें, जिससे पृथ्वी की, धरती की, मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनी रहती है, और बदल बदल कर फसल लगाएं जिससे उर्वरा शक्ति

लेकिन जो बिजली मिलती है वो हमको मुफ्त ही मिलती है। तो ऐसे तरीकों की जानकारी लें, इसके लिए सरकार भी हमारी मदद करती है, और ऐसे उपायों को जरूर ही अपनाएं, और खेती बाड़ी में भी जैविक तरीके से खेती को बढ़ावा दें और जैविक खाद का ही प्रयोग करें, जिससे पृथ्वी की, धरती की, मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनी रहती है, और बदल बदल कर फसल लगाएं जिससे उर्वरा शक्ति बनी रहे। और बहुत सी जगहों पर ऐसा देखा जाता है सखियों, की फसल की कटाई हो गई और पूरे खाली मैदान में सूखे जो खरपतवार होते हैं उनको समाप्त करने के लिए आग लगा दिया जाता है। इससे हमारी जो धरती माँ है, जो मिट्टी है, उसकी उर्वरा शक्ति भी जलकर नष्ट हो जाती है, और हमको वैसे भूमि पर फिर हम फसल नहीं ले सकते हैं। तब ऐसे में किसान ज़्यादा पैदावार के लिए रासायनिक जो खाद होते हैं, जो हमारे लिए बहुत तरह के खाद हानिकारक हैं, उनका प्रयोग करके पैदावार तो बढ़ा लेते हैं, लेकिन उसका दुष्प्रभाव हमारे शरीर पर, हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है, जो हमको तुरंत नहीं दिखता है, लेकिन धीरे धीरे करके हमारे अच्छे खान पान के बावजूद हम बीमार होते हैं और गंभीर बीमारियों के शिकार भी हो जाते हैं। तो इन सब का ध्यान रखना जरूरी है, और हम भले खेती किसानी नहीं करें, लेकिन इस तरह की जो बातें हैं और इस तरह के जो ज्ञानवर्धक बातें हैं उसको हम लोगों के बीच बताएं, और ये काम हम सखियों के लिए भी जिम्मेदारी है कि हम इसमें सहयोग करें, और हम सहयोग करते हैं आपके मनोरंजन को और आगे बढ़ाने में।

0: सखियों यूं ही मुस्कुराते रहिए और अपने आसपास का माहौल बिल्कुल सकारात्मक रखिए। और 8 मई को हम मनाते हैं रेड क्रॉस डे, और रेड क्रॉस डे के संस्थापक हेनरी डुनेंट की जयंती के रूप में इसे मनाते हैं। सखियों, रेड क्रॉस है क्या? रेड क्रॉस डे युद्ध, आपदाओं और स्वास्थ्य संकटों के दौरान निस्वार्थ सेवा देने वाले स्वयं सेवकों के सेवा भाव को समर्पित है और मानवता के प्रति प्रेम का संदेश भी देता है। और इस संस्था द्वारा कठिन परिस्थितियों में, आपदाओं में और युद्ध के समय घायल सैनिकों और घायल नागरिकों या उन नागरिकों को पूरी मदद करता है और जो प्राकृतिक आपदाओं में उससे पीड़ित होते हैं और इनकी रक्षा भी करते हैं। अब रेड क्रॉस को अब तक 3 बार नोबेल शांति पुरस्कार भी मिल चुका है और 2026 में रेड क्रॉस डे का थीम है मानवता को जीवित रखना। और यह निस्वार्थ भाव से सहायता प्रदान करने वाले स्वयंसेवकों के कार्य को सम्मानित भी करता है और मानवीय संवेदनाओं का सम्मान भी करता है। और सखियों, अपने कार्यक्रम में हम बहुत सारी जानकारियां भी लेकर आते हैं और ये आज खास जानकारी हम एक वार्ता के रूप में लेकर आए हैं, जाने वसीयत और संपत्ति के अधिकार के विषय में, और बता रही हैं अर्चना।
1: आज की वार्ता है जाने वसीयत और संपत्ति के अधिकार के बारे में। वसीयत यानी विल और संपत्ति के अधिकार भारतीय कानून में बहुत महत्वपूर्ण विषय हैं। उन्हें सरल भाषा में समझते हैं। वसीयत विल क्या होती है, उसे जानें। वसीयत एक कानूनी दस्तावेज है जिसमें कोई व्यक्ति वसीयत करता अपनी मृत्यु के बाद अपनी संपत्ति किसे और कैसे दी जाएगी यह लिखकर तय करता है। इसकी मुख्य बातें हैं, वसीयत व्यक्ति अपनी इच्छा से कभी भी बना या बदल सकता है, इसे लिखित रूप में होना चाहिए। वसीयतकर्ता का सही मानसिक स्थिति में होना आवश्यक है। कम से कम 2 गवाहों का हस्ताक्षर जरूरी होता है। यदि मृतक ने वैध वसीयत छोड़ी है तो उसकी संपत्ति का प्रबंधन उस वसीयत की शर्तों के अनुसार किया जाएगा। वसीयत के प्रकार के बारे में जानकारी दूंगी। पहला है साधारण वसीयत, जिसे सिंपल विल कहते हैं। यह सबसे सामान्य प्रकार की वसीयत होती है जिसमें व्यक्ति अपनी संपत्ति किसे और कैसे देनी है स्पष्ट रूप से लिखता है। द्वितीय, विशेषाधिकार प्राप्त वसीयत यानी प्रिविलेज्ड विल। यह वसीयत सेना के जवानों, युद्ध में लगे व्यक्तियों या समुद्री यात्रियों द्वारा बनाई जाती है। इसमें औपचारिकताओं में कुछ छूट दी गई है। गैर विशेषाधिकार प्राप्त वसीयत अनप्रिविलेज्ड विल, यह आम नागरिकों द्वारा बनाई जाने वाली वसीयत है जिसमें सभी कानूनी औपचारिकताओं का पालन जरूरी होता है, जैसे गवाहों के हस्ताक्षर। और पंजीकृत वसीयत रजिस्टर्ड विल, जब वसीयत उप पंजीयक सब रजिस्ट्रार के कार्यालय में रजिस्ट्री कराया जाता है तो उसे पंजीकृत वसीयत कहते हैं। इससे इसकी वैधता मजबूत होती है। और है अपंजीकृत वसीयत अनरजिस्टर्ड विल, यह विल बिना रजिस्ट्रेशन के बनाई जाती है, लेकिन यदि सही ढंग से बनाई गई हो तो यह भी वैध होती है। और एक होती है मौखिक वसीयत ओरल विल। कुछ विशेष परिस्थितियों में व्यक्ति मौखिक रूप से भी वसीयत कर सकता है, लेकिन इसे साबित करना कठिन होता है। और एक है संयुक्त वसीयत जॉइंट विल। जब 2 या अधिक व्यक्ति जैसे पति पत्नी मिलकर एक ही वसीयत बनाते हैं तो उसे संयुक्त वसीयत कहते हैं। और दूसरा और एक और है पारस्परिक वसीयत, जो कि म्यूचुअल विल इसको कहते हैं। जब 2 व्यक्ति एक दूसरे के पक्ष में समान शर्तों पर वसीयत करते हैं तो इसे पारस्परिक वसीयत कहते हैं। एक और 9वां हम कहेंगे जीवित वसीयत लिविंग विल। यह वसीयत व्यक्ति के जीवन काल में चिकित्सा संबंधी निर्णयों के लिए बनाई जाती है, जैसे गंभीर बीमारी की स्थिति में इलाज के निर्देश। आपको ये बताना चाहूंगी, वसीयत का एक प्रोबेट होता है जो कि एक कानूनी प्रक्रिया है जिसमें कोर्ट यह प्रमाणित करता है कि वसीयत यानी विल असली और वैध है। प्रोबेट कब जरूरी है जाने। वसीयत बनाने वाले टेस्टेटर की मृत्यु के बाद प्रोबेट हमेशा व्यक्ति की मृत्यु के बाद ही कराया जाता है, उससे पहले नहीं कराई जाती है। दूसरा, जब संपत्ति बड़े शहरों में हो जैसे मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, इन जगहों पर प्रोबेट लेना कानूनी रूप से अनिवार्य माना जाता है। वह इंडियन सक्सेशन एक्ट के तहत आता है।

0: तीसरा, जब विवाद यानी डिस्प्यूट होने की संभावना हो, तब अगर परिवार में वसीयत को लेकर झगड़ा हो सकता है तब प्रोबेट लेना सुरक्षित रहता है। चौथा, कई बार बैंक या रजिस्ट्री ऑफिस प्रोबेट मांगते हैं, खासकर बड़ी संपत्ति के बारे में। अब यह भी जाने कि प्रोबेट कब जरूरी नहीं होता है। अगर संपत्ति उन शहरों के बाहर है जहां प्रोबेट अनिवार्य नहीं है और परिवार में कोई विवाद नहीं है तथा संबंधित विभाग प्रोबेट की मांग नहीं करता है। निष्कर्ष यही है कि विल यानी वसीयत का प्रोबेट मृत्यु के बाद और आम तौर तब कराया जाता है जब कानून इसकी मांग करे या संपत्ति, बैंक, विवाद के कारण इसकी जरूरत पड़े। अब हम संपत्ति के अधिकार के बारे में बताएंगे। संपत्ति का अधिकार, प्रॉपर्टी राइट्स, किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति पर स्वामित्व, उपयोग, नियंत्रण और हस्तांतरण का कानूनी अधिकार देता है। भारत में यह अधिकार महत्वपूर्ण है, लेकिन अब यह मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट नहीं बल्कि एक कानूनी अधिकार, लीगल राइट है। पहला, संपत्ति के अधिकार का संवैधानिक आधार बताना चाहूंगी। पहले यह अधिकार अनुच्छेद 31 के तहत मौलिक अधिकार था। 44वां संविधान संशोधन 1978 के बाद इसे हटा दिया गया। अब यह अनुच्छेद 301 के तहत कानूनी अधिकार है। इसका मतलब किसी व्यक्ति की संपत्ति केवल कानून के द्वारा ही छीनी जा सकती है। अब जानिए कि संपत्ति के अधिकार में क्या शामिल है। इनके मुख्य तत्व हैं, संपत्ति खरीदने का अधिकार, संपत्ति रखने या उपयोग करने का अधिकार, संपत्ति बेचने का या दान करने का अधिकार, वसीयत यानी विल बनाने का अधिकार, उत्तराधिकार, इनहेरिटेंस का अधिकार। बिना कानून के आपकी संपत्ति कोई नहीं ले सकता, ये आपको इनहेरेंट राइट है आपका। अब हम कहेंगे बात सरकार का अधिकार, एमिनेंट डोमेन क्या है। सरकार सार्वजनिक हित जैसे सड़क, स्कूल, अस्पताल बनाने के लिए किसी की संपत्ति ले सकती है, लेकिन उचित प्रक्रिया अपनानी होती है, उचित मुआवजा देना होता है। यह प्रक्रिया भूमि अधिग्रहण और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजा अधिनियम 2013 के तहत होती है। उत्तराधिकार और व्यक्तिगत कानून के बारे में जाने। भारत में संपत्ति का बंटवारा अलग अलग कानूनों के अनुसार होता है, जैसे हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 जो कि हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट के लिए है, मुस्लिम कानून जो शरीयत से है, इंडियन सक्सेशन एक्ट क्रिश्चियंस आदि सभी के लिए है। महिलाओं के संपत्ति अधिकार के बारे में जाने। पहले महिलाओं के अधिकार सीमित थे, लेकिन हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के बाद बेटियों को भी बेटों के बराबर अधिकार मिल गया। अब बेटे भी पैतृक संपत्ति में समान हिस्सेदार हैं। छठा, संपत्ति प्राप्त करने के तरीके चार प्रकार के हैं। पहला, खरीद यानी सेल या परचेज। दूसरा, विरासत यानी कि इनहेरिटेंस। तीसरा, वसीयत यानी विल। चौथा, उपहार, इसका मतलब गिफ्ट डीड। अंत में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताना चाहूंगी। संपत्ति का अधिकार जब मौलिक अधिकार नहीं है इसलिए सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, पहले निचली अदालतों में जाना होता है, लेकिन यह अभी भी एक मजबूत कानूनी सुरक्षा देता है। किसी भी संपत्ति लेन देन में रजिस्ट्री और कानूनी दस्तावेज जरूरी है, इसलिए हमें कानून को ध्यान में रखते हुए संपत्ति पे अधिकार कहाँ है नहीं है ध्यान देना आवश्यक है।
1: सखियों, अभी ये कानूनी जानकारी हम अर्चना जी से सुन रहे थे, जाने वसीयत और संपत्ति अधिकार के विषय में। तो इससे हमको जानकारी भी मिली और हम अपने को मजबूत भी बना सकते हैं, जहाँ ज़रूरत हो हम इसके लिए अपनी जानकारी के हिसाब से हम जा भी सकते हैं और उससे लाभ भी ले सकते हैं। सखियों, आज के समय में ऑनलाइन खरीदारी, पेमेंट, नेट बैंकिंग, कोई भी बिल का भुगतान हम घर बैठे करते हैं। बस पासवर्ड डालें और रकम डालें, पैसों का भुगतान हो जाता है। है तो ये आसान, लेकिन हैकर्स जो होते हैं वो इसे कई सुरक्षा कवच हटाकर अपने गलत तरीके से हमारे पैसे गायब भी कर लेते हैं। पासवर्ड सुरक्षा एक एक्सेस कंट्रोल तकनीक है जो महत्वपूर्ण डेटा या हमारे पैसों को सुरक्षित रखने में मदद करती है। और मजबूत पासवर्ड यानी थोड़ा कठिन पासवर्ड, यानी कि अपने डेट ऑफ बर्थ या वर्ष के आधार पर ऐसे ना डालें, थोड़ा मुश्किल हो वैसे ही पासवर्ड डालें, ताकि हैकर्स की दुर्भावनापूर्ण गतिविधि से हम सुरक्षित रहें।

सके और सभी उपकरणों और खातों पर मजबूत पासवर्ड का उपयोग करें और सार्वजनिक वाईफाई जहां मिलता है वहां हम उसका प्रयोग अपने व्यक्तिगत और वित्तीय डाटा को के लिए ना करें। ऐसे काम वैसे जो वाईफाई फ्री में मिलते हैं उन जगहों पर ना करें। और एक ज़रूरी और बात है कि सभी उपकरणों में एंटीवायरस का प्रयोग जरूर करें और पासवर्ड सुरक्षित रखकर और ध्यान से अपने पासवर्ड को सुरक्षित रखकर निश्चिंत होकर हम ऑनलाइन सुविधाओं का उपयोग कर सकते हैं। इससे हमारा समय भी बचता है और धन भी बचता है, कुछ इस पर ऑफर अगर मिलते हैं। लेकिन जहाँ तक हमने बात की अपनी सखियों से, धन भी बचता है तो कभी कभी ऑनलाइन ख़रीदारी के चक्कर में और ऑफ़र के चक्कर में हम अपने पैसे ज़्यादा खर्च कर देते हैं और वैसी चीज़ें ले लेते हैं जिसकी हमको या तो ज़रूरत नहीं है या ज़रूरत से ज़्यादा ख़रीदारी करते हैं, जिससे हमारे बजट पर भी असर पड़ता है। तो बहुत समझदारी से खरीदारी करें, या तो ऑनलाइन करें या ऑफलाइन। और सखियों, ऑफलाइन ख़रीदारी का एक और फ़ायदा है कि हम दुकान में जाएं, वहाँ दुकानें हैं, वहाँ हम सामने चीज़ों को देख सकते हैं, उसके दाम में थोड़ा मोल भाव कर सकते हैं। या सब्जी मंडी में ही जाइए, हम ऑनलाइन सब्जी खरीद लेते हैं तो उसमें यदि अच्छी सब्जी नहीं आई या फल नहीं आई या कोई भी सामान जिसमें शिकायत है उसको फिर से वापस करने के लिए हम लोग को मेहनत करनी पड़ती है और कभी कभी ये वापस भी नहीं होता है, ये लिखा भी होता है लेकिन हम उस पर ऑर्डर करते समय ध्यान नहीं देते हैं। और जब आप बाज़ार में जाएंगी, सब्जी खरीदने जाएंगी या फल खरीदने या और भी कोई ख़रीदारी के लिए, तो दुकानदार से हम सीधे संपर्क करते हैं, बातचीत करते हैं, मोल भाव करते हैं, तो हमको अच्छा भी महसूस होता है। और जो दुकान लगा कर बैठे हैं या सब्जी जो सब्जी मंडी में मिल रही है उनकी भी बिक्री तो होनी चाहिए, जहाँ हमको ताज़ी सब्जी भी मिलती है और उनसे रूबरू होकर अभी थोड़ा समय भी अच्छा निकलता है लोगों से बात करने का। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि दो चार सखियां मिलकर एक साथ ख़रीदारी के लिए निकल जाती हैं तो उनका समय भी अच्छा बीतता है। और कई बार होता है कि एक जगह सस्ती चीज़ मिल रही लेकिन ज़्यादा लेनी पड़ती है, तो ऐसे में भी यदि हम सखियों के साथ जाते हैं तो जो ज़्यादा चीज़ मिल रही है तो हम उसके पैसे का लाभ तो उठा ही लेंगे और जो ज़्यादा चीज़ है उसको बांट कर हम अपने अपने ज़रूरत भर की चीज़ भी ले लेंगे। तो इसलिए ऑनलाइन ख़रीदारी जितनी सुविधाजनक है उतना ही ऑफलाइन भी हमारे लिए थोड़ा मनोरंजन भी हो जाता है। बाहर निकलिए, बाज़ार में जाइए और ख़रीदारी करिए, मोल भाव करिए, वहाँ कोई मिल भी जाता है तो उसे बातचीत करिए, हाल समाचार जानिए। तो ये सब बहुत सारे फ़ायदे भी हैं और हमारे कार्यक्रम में एक मनोरंजन का साधन गीत संगीत भी तो है।

0: Ανάσα.
1: सखियों, आप हमारे कार्यक्रम में पत्र भी लिख सकती हैं। हमारा पता है, कार्यक्रम नारी जगत, द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी पटना, और पिन कोड है 800001। तो आज के कार्यक्रम से अपनी रेडियो सखी रंजना को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।
2: महिलाओं का कार्यक्रम नारी जगत अभी आपने सुना। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज़ पर। दिन के समय स्टूडियो की घड़ी में 1 बजने को हैं। थोड़ी देर में हमारे दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार प्रसारित होंगे। हिंदी में समाचारों के लिए कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। देश आज ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ मना रहा है। पिछले वर्ष 7 मई को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था, जिसके तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में आतंकियों के 9 ठिकानों पर हवाई हमले किए गए थे। ये कार्रवाई पिछले वर्ष 22 अप्रैल को पहलगाम में पर्यटकों पर हुए पाकिस्तान प्रायोजित बर्बर आतंकी हमले का भारत की ओर से करारा जवाब था। एक रिपोर्ट।
4: इस बहुआयामी अभियान ने आतंकवादी खतरों को प्रभावी ढंग से निष्क्रिय कर दिया, पाकिस्तानी आक्रामकता को रोका और आतंकवाद के प्रति भारत की शून्य सहिष्णुता नीति को दृढ़ता से लागू किया। इस अभियान का उद्देश्य आतंकवाद के अपराधियों और योजनाकारों को दंडित करना और सीमा पार आतंकी ढांचे को नष्ट करना था। इस अभियान के परिणाम स्वरूप 9 प्रमुख आतंकी शिविरों का विनाश, 11 पाकिस्तानी हवाई अड्डों पर हमला और कई प्रमुख आतंकवादियों का खात्मा हुआ। भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
3: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने ऑपरेशन सिंदूर को आतंकवाद, देश की संप्रभुता तथा नागरिकों की सुरक्षा को खतरे में डालने वाली सभी ताकतों के खिलाफ अटूट संकल्प का एक निर्णायक प्रमाण बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अद्वितीय साहस, सटीकता और दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन किया। गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय सशस्त्र बलों के शौर्य और बलिदान को नमन किया है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन ने पटना के गांधी मैदान में नवनियुक्त मंत्रियों को शपथ दिलाई। इसमें श्रवण कुमार, विजय कुमार सिन्हा, दिलीप कुमार जायसवाल, निशांत कुमार और लेसी सिंह सहित कई अन्य मंत्रियों ने शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और एनडीए के कई वरिष्ठ नेता शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित थे। इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना में रोड शो कर रहे हैं। पुदुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगासामी ने आज उपराज्यपाल के कैलाशनाथन को अपना इस्तीफा सौंप दिया। इससे केंद्र शासित प्रदेश में नई सरकार के गठन का मार्ग प्रशस्त हो गया है। मुख्यमंत्री ने राजनिवास में उपराज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपा। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख जोसेफ विजय ने आज लोकभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से दूसरी बार मुलाकात की। बताया जा रहा है कि राज्यपाल ने उन्हें बुलाया था। कल भी विजय ने राज्यपाल से मुलाकात की थी और पार्टी विधायकों की सूची तथा कांग्रेस का समर्थन पत्र प्रस्तुत किया था। इस समय उन्हें बहुमत के लिए और अधिक समर्थन की आवश्यकता है। वीसी के नेता थिरु मावलन ने कहा है कि उनकी पार्टी आज विधानसभा की बैठक के बाद विजय को समर्थन देने पर फैसला करेगी। उनकी पार्टी के 2 विधायक हैं। वामदलों ने भी राज्यपाल से अपील की है कि वे सबसे बड़ी पार्टी टीवीके को सरकार बनाने का अवसर दें। कांग्रेस पार्टी केरलम में नई सरकार बनाने के लिए चर्चा कर रही है। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ ने राज्य की 140 विधानसभा सीटों में से 102 सीटें जीती हैं। केरलम के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर के पास तमिलनाडु का अतिरिक्त प्रभार भी है। वे इस समय चेन्नई में हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आरोप लगाया है कि भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस सरकार द्वारा फैलाई गई हिंसा की

0: राजनीति का एक और भयावह उदाहरण है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री प्रधान ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों को बार बार निशाना बनाया गया है, उन पर हमले किए गए हैं और उनकी हत्या की गई है, क्योंकि वे कभी तृणमूल सरकार की भय के राजनीति के आगे नहीं झुके। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने नए श्रम संहिता के अंतर्गत 40 वर्ष और उससे अधिक आयु के श्रमिकों के लिए आज राष्ट्रव्यापी वार्षिक स्वास्थ्य जांच पहल का शुभारंभ किया। ये पहल व्यावसायिक स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करने और देश के कार्यबल के लिए व्यापक स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम ने आज मुंबई स्थित नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का दौरा किया। राष्ट्रपति तो लाम आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात करेंगे। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग आधा प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 345 अंक बढ़कर 78,304 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त। दिस इज आकाश,
1: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज़ पर। दिन के 1:05 हुए हैं। कार्यक्रम सुर भारती में सुनिए वार्ता, सनातन है देश प्रेम की अविरल धारा। वार्ताकार अर्चना चौधरी।
2: सनातन धर्म भारतीय संस्कृते मूलाधार अस्ति। अयं धर्म केवलं धर्म निष्ठा न अपितु जीवन शैली राष्ट्रनिष्ठा च अस्ति। यत्र धर्म तत्र राष्ट्र, यत्र राष्ट्र तत्र प्रेम। ऐसा एव भावना देश प्रेम सनातन धर्मे मूल रूपेण प्रवहति। यह धर्म सर्वेषां प्राणिनां हिताय कार्यं करोति। स धर्म राष्ट्र अपि एकत्वं समर्पणं च उत्पादयति। यतो हि कथ्यते सनातन धर्म देश प्रेमस्य अविरल धारा अस्ति। ऋग्वेदे अथर्ववेदे च राष्ट्रं प्रति प्रेम सुस्पष्टतया प्रतिपादितम्। मातृभूमि पुत्रोऽहं पृथिव्या अयं मन्त्रः दर्शयति यत् राष्ट्रं मातरम् इव पूजितव्यम्। वेदेषु धर्मः सत्यं एकता समर्पणं च राष्ट्रस्थापनीयम् इति उपदिष्टम्। भारतीय इतिहासे अनेके महापुरुषाः देशप्रेमस्य प्रतीकाः अभवन्। सनातन इति नित्यः सर्वथा शाश्वतश्च। सनातनसंस्कृते राष्ट्रप्रेमस्य अविरल प्रवाहः प्रवहति। आद्ये राष्ट्र ततः सर्वम् इति सनातन संस्कृतेर दर्शनम्। तेन उक्तम् राष्ट्रं मे जन्मभूमिश्च, राष्ट्रं मे परमं तपः, राष्ट्राय समर्प्यामि जीवनाहं सर्वदा। अस्माकं राष्ट्रः महान् भारतवर्षः, विश्वशिरोमणि जगद्गुरु च वर्तते, विष्णुपुराणे वर्णितम्।

0: देशभक्ति गीत अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। एक अंतराल के बाद सुनेंगे फिल्म संगीत।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: इधर आइए, इधर।
5: इधर?
4: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए, और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
6: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
5: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
6: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
5: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना। हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612222502। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
6: शुभ वाणी,
5: लाभ वाणी,
4: आकाशवाणी।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: इधर आइए, इधर।
5: इधर?
4: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए, और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
6: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
5: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
6: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
5: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना। हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन

0: नंबर है 0612-222-5042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
1: शुभ वाणी,
0: लाभ वाणी,
1: आकाशवाणी।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है, मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज़ पर। दिन के समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 1:30 होने को है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

फिल्म परिंदा सी ये नगमा था। खुर्शीद हुल्लारी के बोल, आर डी बर्मन का संगीत और आशा भोसले और सुरेश वाडकर ने इसे गाया। अब अनुराधा पौडवाल और सुरेश वाडकर को सुनवा रहे हैं। फिल्म है लाल दुपट्टा मलमल का, मजरू के बोल और आनंद मिलिंद का संगीत।

0: सुरेश वाडिकर और अनुराधा पडवाल की जुगल स्वर में ये गीत लिया था फिल्म लाल दुपट्टा मलमल से। मजरू के बोल आनंद मिलिंद का संगीत, और अब सुरेश वाडिकर के साथ अनुराधा पडवाल को एक बार फिर से सुनवा रहे हैं। फिल्म है भ्रष्टाचार, बोल आनंद बख्शी के, धुन बनाई है लक्ष्मीकांत पेरेलाल ने।
1: सा रे गा मा, तुम भी गाओ।

0: अच्छा तुम ये तो गाओ,
1: तेरे नैना
2: तेरे नैना तेरे।
0: तुम ऐसा करो, ये गाओ।

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: इधर आइए, इधर।
3: इधर?
2: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
4: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
3: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
4: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
3: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना।
5: हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612222205042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
4: शुभ वाणी,
3: लाभवाणी,
2: आकाशवाणी।

0: फिल्म सिंदूर से ये गीत हमने आपको सुनवाया, लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर को आपने सुना। गीत के बोल आनंद बख्शी के थे और इसे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने संगीत से संवारा। फिल्म संगीत का हमारा ये कार्यक्रम अब संपन्न हुआ।
1: इधर आइए, इधर
2: इधर।
1: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
3: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
2: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
3: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
2: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना, हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612-222-5042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
3: शुभ वाणी,
2: लाभवाणी,
1: आकाशवाणी।
0: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर श्रोता सुन रहे हैं हमारी पहली सभा के कार्यक्रम

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल का आज विस्तार किया गया। पटना के गांधी मैदान में आयोजित भव्य समारोह में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन ने 32 मनोनीत मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। कैबिनेट में भाजपा कोटे से 15, जदयू से 13, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से 2, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा से 1-1 मंत्री को शामिल किया गया है। मंत्रियों ने पहले 5-5 और फिर 6-6 के समूह में शपथ ली। सबसे पहले श्रवण कुमार, विजय कुमार सिन्हा, लेसी सिंह, निशांत कुमार और दिलीप जायसवाल ने मंत्री पद की शपथ ली। इसके बाद रामकृपाल यादव, नीतीश मिश्रा, अशोक चौधरी, दामोदर रावत और संजय सिंह टाइगर को शपथ दिलाई गई। शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल, सुनील कुमार, श्रेयसी सिंह, मोहम्मद जमा खान, नंद किशोर राम और प्रमोद कुमार ने भी मंत्री पद की शपथ ली। रमा निषाद, संतोष कुमार सुमन, भगवान सिंह कुशवाहा, मदन सहनी और अरुण शंकर प्रसाद को भी राज्यपाल ने शपथ दिलाई। अंत में रामचंद्र प्रसाद, संजय कुमार, श्वेता गुप्ता, संजय कुमार सिंह, मिथिलेश तिवारी और दीपक प्रकाश ने मंत्री पद की शपथ ग्रहण की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह, जेपी नड्डा समेत केंद्रीय मंत्रिमंडल के कई सदस्य शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद रहे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार समेत एनडीए के कई वरिष्ठ नेता मुख्य मंच पर मौजूद थे। इस दौरान गांधी मैदान में भारी संख्या में एनडीए गठबंधन दलों के नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के मंत्रिमंडल विस्तार में अत्यंत पिछड़ा वर्ग का सबसे अधिक मंत्री बनाए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से अत्यंत पिछड़ा वर्ग से 5 विधायकों को मंत्री बनाया गया है। जनता दल यू की ओर से 4 अत्यंत पिछड़ा वर्ग के विधायकों को मंत्री बनाया गया है। राज्य मंत्रिमंडल में अत्यंत पिछड़ा वर्ग के मंत्रियों की कुल संख्या 9 हो गई है। सम्राट मंत्रिमंडल में 5 महिला मंत्रियों को जगह दी गई है। इनमें भाजपा से जमुई विधायक और पूर्व मंत्री श्रेयसी सिंह और मुजफ्फरपुर के औराई से विधायक पूर्व मंत्री रमा निषाद शामिल हैं। वहीं जदयू कोटे से पूर्णिया के धमदाहा से विधायक और पूर्व मंत्री लेसी सिंह, मधुबनी के फूलपरास से विधायक और पूर्व मंत्री शीला कुमारी और शिवहर से विधायक श्वेता गुप्ता को कैबिनेट में जगह दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना हवाई अड्डे से समारोह स्थल गांधी मैदान तक सड़क के रास्ते गए। इस दौरान सड़क के दोनों किनारों पर उत्साहित लोगों की भीड़ ने प्रधानमंत्री का जोरदार स्वागत किया। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। विभिन्न सांस्कृतिक और सामाजिक संगठनों की ओर से अलग अलग जगहों पर पारंपरिक नृत्य और गीतों की प्रस्तुति दी गई। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली स्थित कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC से श्रमिकों के लिए राष्ट्रव्यापी वार्षिक स्वास्थ्य जांच पहल की शुरुआत की। इस अवसर पर पटना के बिहटा स्थित ESIC मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में जांच शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 40 वर्ष और उससे अधिक आयु के श्रमिक स्वास्थ्य जांच करा सकते हैं। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राज्य के विभिन्न भागों में आंधी बारिश की

0: स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग ने आज भी पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, कटिहार और बांका समेत राज्य के उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व भागों में तेज हवा के साथ बारिश को लेकर चेतावनी जारी की है। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान पटना जिले में 85 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी के साथ बारिश हुई है। इस अवधि में पूर्वी चंपारण के तेतरिया में सबसे अधिक 59.2 मिलीमीटर, सीवान के महाराजगंज में 54.2 और समस्तीपुर के पूसा में 52.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।
1: आदाब, यह आकाशवाणी पटना है। अब आप नाजिया से इलाकाई खबरें सुनिए। वजीर आलम सम्राट चौधरी की क्यादत वाली काबीना की आज तौसी की गई। पटना के गांधी मैदान में मनकी तकरीब में गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल सुबुकदोर सैयद अता हसनैन ने 32 मंतखब वजरा को ओहदा और राजदारी का हलफ दिलाया। काबीना में बीजेपी से 15, जेडीयू से 13, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से 2, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा से 1-1 वजीर को शामिल किया गया है। वजरा ने पहले 5-5 और फिर 6-6 के ग्रुप में हलफ लिए। सबसे पहले शरवन कुमार, विजय कुमार सिन्हा, लेसी सिंह, निशांत कुमार और दिलीप जायसवाल ने वजीर ओहदे का हलफ लिया। इसके बाद रामकृपाल यादव, नीतीश मिश्रा, अशोक चौधरी, दामोदर रावत और संजय सिंह टाइगर को हलफ दिलाया गया। शैलेश कुमार उर्फ बूलो मंडल, सुनील कुमार, श्रेयसी सिंह, मोहम्मद जमा खां, आनंद किशोर राम और प्रमोद कुमार ने भी वजीर के ओहदे का हलफ लिया। रमा निषाद, संतोष कुमार सुमन, भगवान सिंह कुशवाहा, मदन सहनी और अरुण शंकर प्रसाद को भी हलफ दिलाया गया। आखिर में रामचंद्र प्रसाद, संजय कुमार, श्वेता गुप्ता, संजय कुमार सिंह, मिथिलेश तिवारी और दीपक प्रकाश ने वजीर ओहदे का हलफ लिया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी, मरकजी वजीर राजनाथ सिंह, अमित शाह, जेपी नड्डा समेत मरकजी काबीना के कई अरकान हलफ बरदारी तकरीब में मौजूद रहे। बीजेपी के कौमी सदर नितिन नवीन ने, जेडीयू के कौमी सदर नीतीश कुमार समेत एनडीए के कई सरकर्दा रहनुमा स्टेज पर मौजूद थे। इस दौरान गांधी मैदान में कसीर तादाद में एनडीए इत्तेहादी पार्टियों के रहनुमा और कारकुनान शरीक थे। वज़ीर-ए-आला सम्राट चौधरी की काबीना तौसी में इंतहाई पसमानदा तबके के सबसे ज्यादा वजीर बनाए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी की जानिब से इंतहाई पसमानदा तबके से 5 अरकान असेंबली को वजीर बनाया गया है। रियासत के काबीना में इंतहाई पसमानदा तबकों के वजरा की कुल तादाद अब 9 हो गई है। सम्राट काबीना में 5 खातून वजरा को जगह दी गई है। इनमें बीजेपी से जमुई रुकन असेंबली और साबिक वजीर शेरसी सिंह और मुजफ्फरपुर के औराई से रुकन असेंबली और साबिक वजीर रमा निषाद शामिल हैं। वहीं जेडीयू जुमरे से पूर्णिया के धमदाहा की रुकन असेंबली और साबिक वजीर लेसी सिंह, मधुबनी के फुलपरास से रुकन असेंबली और साबिक वजीर शीला कुमारी और शिवहर से श्वेता गुप्ता को काबीना में शामिल किया गया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी पटना एयरपोर्ट से तकरीब गाह गांधी मैदान तक बराए सड़क पहुंचे। इस दौरान सड़क के दोनों किनारों पर उनका पुरजोश लोगों की भीड़ ने वजीर आजम का जोरदार इस्तकबाल किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हाथ हिलाकर लोगों का शुक्रिया अदा किया। मुख्तलिफ सकाफती और समाजी तंजीमों की जानिब से अलग अलग मकामात पर रिवायती रक्स और नगमे भी पेश किए गए। मेहनत व रोजगार के वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली वाकई ईएसआईसी से मजदूरों के लिए कौमी सालाना सेहत जांच पहल की शुरुआत की। इस मौके पर पटना के बिहटा वाकई ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में जांच कैंप का इनेकाद किया जा रहा है। इस मुहिम के तहत मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 40 साल और उससे ज्यादा उम्र के मुलाजमीन सेहत की जाँच करा सकते हैं। मगरबी हवा के असर से रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों में आंधी बारिश की सूरत हाल बरकरार है। महकमा मौसमियात ने आज भी मगरबी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, कटिहार और बांका समेत रियासत के शुमाल मगरबी, शुमाल मशरकी और जुनूब मशरकी हिस्सों में तेज हवा के साथ बारिश का इंतवा जारी किया है। इधर गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान पटना जिले में 85 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी के साथ बारिश हुई है। इस मुद्दत में मशीकी चंपारण के तेतरिया में सबसे ज्यादा 59.2 मिलीलीटर, सीवान के

0: महाराजगंज में 54.2 और समस्तीपुर के पूसा में 52.6 मिलीलीटर बारिश दर्ज की गई है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से उर्दू का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: कहां चलती है, इधर तो आओ।
4: इधर आइए, इधर।
5: इधर?
4: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
6: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
5: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
6: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
5: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना।
7: हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612225042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
6: शुभवाणी।
8: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। अब रोजगार सूचना सुनिए। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF ने कांस्टेबल टेक्निकल ट्रेड्समैन के 9175 पदों पर भर्ती के लिए योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया है। उम्मीदवार भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। न्यूनतम आयु 18 और अधिकतम पद के अनुसार 23 से 27 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आरक्षित वर्गों को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 अगस्त 2026 के आधार पर होगी। आवेदन ऑनलाइन स्वीकार किया जाएगा। अंतिम तिथि 19 मई 2026 है। विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट पर जाएं, पता नोट करें www.crpf.gov.in। कर्मचारी चयन आयोग ग्रेड सी और ग्रेड डी के लिए स्टेनोग्राफर के 731 पदों पर भर्ती के लिए योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया है। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। न्यूनतम आयु 20 और अधिकतम ग्रुप डी के लिए 27 और ग्रुप सी के लिए 30 वर्ष निर्धारित है। आरक्षित वर्ग को नियम के अनुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 अगस्त 2026 के आधार पर होगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। अंतिम तिथि है 15 मई 2026। विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट देखें, पता है www.ssc.gov.in। रोजगार सूचना समाप्त हुई।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
8: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज़ पर। अपराह्न के समय हमारे

0: घड़ियों की घड़ी में 2:15 होने वाले हैं। थोड़ी देर में हमारे दिल्ली केंद्र से दोपहर समाचार प्रसारित करें। दोपहर समाचारों के लिए कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर सशस्त्र बलों के शौर्य को नमन किया। प्रधानमंत्री ने आतंकवाद और इसे बढ़ावा देने वाले तंत्र को नष्ट करने की राष्ट्र की प्रतिबद्धता दोहराई। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। नीतीश कुमार के पुत्र सहित 32 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। तमिलनाडु और केरल में सरकार गठन के लिए सघन वार्ताओं का दौर जारी। सरकार ने 40 वर्ष और उससे अधिक आयु के श्रमिकों के लिए राष्ट्रव्यापी वार्षिक स्वास्थ्य जांच शुरू की। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर सशस्त्र बलों के शौर्य को नमन किया है। उन्होंने आतंकवाद और इसे बढ़ावा देने वाले तंत्र को नष्ट करने की राष्ट्र की प्रतिबद्धता को दोहराया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अद्वितीय साहस, सटीकता और दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बलों ने पहलगाम में निर्दोष नागरिकों पर हमला करने वालों को मुंहतोड़ जवाब दिया। अपने संस्कृत श्लोक सुभाषितम में प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत की असाधारण विजय देश के बहादुर सैनिकों के उल्लेखनीय शौर्य और देशभक्ति का एक प्रेरक उदाहरण है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कई अन्य मंत्रियों ने ऑपरेशन सिंदूर में सशस्त्र बलों के शौर्य की सराहना की।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ऑपरेशन सिंदूर को आतंकवाद, देश की संप्रभुता तथा नागरिकों की सुरक्षा को खतरे में डालने वाली सभी ताकतों के खिलाफ अटूट संकल्प का एक निर्णायक प्रमाण बताया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने ऑपरेशन सिंदूर को एक निर्णायक क्षण बताया जब भारत ने शांति, एकता और संप्रभुता को भंग करने की कोशिश कर रहे आतंकी संगठनों और आतंकवाद को प्रायोजित करने वाले देशों को दृढ़ता से जवाब दिया। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय सशस्त्र बलों के शौर्य और बलिदान को नमन किया है। गृह मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इतिहास में इस दिन को भारतीय सशस्त्र सेना की ताकत और उसके सटीक निशाना लगाने की क्षमता तथा देश की खुफिया एजेंसियों की सूझबूझ के लिए जाना जाएगा। रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर राष्ट्रीय संकल्प और तैयारी का मजबूत प्रतीक है, जो दिखाता है कि भारतीय सशस्त्र बल हर चुनौतियों का निर्णायक जवाब देने के लिए हमेशा तैयार है।
1: भारतीय सशस्त्र बलों ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर ने अपने उद्देश्यों को सफलतापूर्वक हासिल किया है। इस अभियान में सेना, नौसेना और वायुसेना के बीच उत्कृष्ट समन्वय का प्रदर्शन किया गया। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर आज जयपुर में भारतीय सशस्त्र बलों के कमांडरों का संयुक्त संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया गया। इस दौरान लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ भारत का अभियान दृढ़ संकल्प के साथ जारी है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने दिखा दिया है कि आत्मनिर्भर भारत का सपना अब सिर्फ एक नारा मात्र नहीं रह गया है। श्री घई ने बताया कि भारत के 65% से अधिक रक्षा उपकरण स्वदेशी रूप से निर्मित हैं। भारतीय सेना ने आज ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ भारत की सुनियोजित, सटीक और प्रभावी कार्रवाई को दर्शाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय सशस्त्र बलों के शौर्य को सम्मान देने के लिए अपने सोशल मीडिया अकाउंट प्रोफाइल पिक्चर बदल दी है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी सशस्त्र सेनाओं की सफलता और उनके प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए देशवासियों से भी अपने सोशल मीडिया हैंडल पर प्रोफाइल पिक्चर बदलने की अपील की है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज कुमार सिन्हा ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर इस बात का प्रमाण है कि भारत के सशस्त्र बल देश की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा हर कीमत पर करेंगे। उपराज्यपाल ने ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर सशस्त्र बलों को श्रद्धांजलि अर्पित की। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा में भी पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों के लिए विशेष प्रार्थना सभा आयोजित की।

0: गई। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में महिलाओं ने ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ के उपलक्ष्य में देशभक्ति दर्शाने वाली रंगोली बनाई। देशभक्ति के विषयों और राष्ट्रीय प्रतीकों से सजी इन रंगोलियों को एक सामुदायिक कार्यक्रम में प्रदर्शित किया गया। इसमें स्थानीय निवासी और महिला प्रतिभागी शामिल थीं। आज के ही दिन भारतीय सशस्त्र बलों ने अत्याधुनिक मिसाइलों, ड्रोन तकनीक और सटीक खुफिया जानकारी का उपयोग करके ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था।
1: कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं।
2: विनय न मानत जलधि जड़, गए तीन दिन बीते, बोले राम सकोप तब भय बिनु होए ना प्रीति। जी श्रोताओं, बिल्कुल ठीक ही कहा गया है कि भय के बिना प्रीति संभव नहीं होती। ठीक कुछ ऐसा ही हुआ भारतीय सशस्त्र बलों के अद्भुत साहस और शौर्य के प्रतिमान ऑपरेशन सिंदूर में, जब भारतीय सैन्य बलों के रणबांकुरों ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में आतंकवादी ठिकानों और आतंकी नेटवर्क की जड़ों को हिलाने वाली सटीक और निर्णायक कार्रवाई की। पिछले वर्ष 6-7 मई की दरमियानी रात भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। इस अभियान में करीब 100 आतंकवादी मारे गए थे। सिंदूर नाम अपने आप में प्रतीकात्मक है। भारतीय संस्कृति में सिंदूर सम्मान, सुरक्षा और अस्मिता का प्रतीक माना जाता है, इसीलिए इस अभियान का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया। ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की सैन्य क्षमता, तकनीकी दक्षता और त्वरित निर्णय क्षमता को प्रदर्शित किया। ये अभियान भारतीय सशस्त्र बलों के साहस, अनुशासन और राष्ट्रभक्ति का उत्कृष्ट उदाहरण है। तस्मात् मुतिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुण, भुजंगक्ष्व राज्यम समृद्धम, मये वेते निहता पूर्वमेव निमित्त मात्रम भव सव्य साचिन।
1: कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। पटना के गांधी मैदान में आयोजित एक भव्य समारोह में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन ने 32 मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मंत्रिमंडल में अब भाजपा के 15, जेडीयू के 13, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के 2 और हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा तथा राष्ट्रीय लोक मोर्चा से एक एक मंत्री है। मंत्रियों ने पहले 5-5 के समूह में और फिर 6-6 के समूह में शपथ ली। शपथ लेने वाले मंत्रियों में जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार भी शामिल हैं। जेडीयू के कुल 15 मंत्री हैं, जिनमें से 13 ने आज गांधी मैदान में शपथ ली। श्री विजय कुमार चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद यादव ने अप्रैल में सम्राट चौधरी के साथ शपथ ली थी और उन्हें उप मुख्यमंत्री नामित किया गया था। 243 सदस्य विधानसभा में 89 विधायकों के साथ भाजपा सबसे बड़ी पार्टी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह और जेपी नड्डा समेत केंद्रीय मंत्रिमंडल के कई अन्य सदस्य शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित थे। तमिलनाडु और केरल में सरकार गठन के लिए सघन वार्ताओं का दौर जारी है। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख जोसेफ विजय ने आज लोकभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से दूसरी बार मुलाकात की। बताया जा रहा है कि राज्यपाल ने उन्हें बुलाया था। श्री विजय ने आज राज्यपाल से मुलाकात की। कल उन्होंने पार्टी विधायकों की सूची और कांग्रेस का समर्थन पत्र राज्यपाल को प्रस्तुत किया था। इस समय उन्हें बहुमत दिखाने के लिए और अधिक समर्थन की आवश्यकता है। वीसी के नेता थिरुमावलवन ने कहा है कि उनकी पार्टी आज विधानसभा की बैठक के बाद श्री विजय को समर्थन देने पर फैसला करेगी। उनकी पार्टी के 2 विधायक हैं। वामदलों ने भी राज्यपाल से अपील की है कि वे सबसे बड़ी पार्टी टीवीके को सरकार बनाने का अवसर दें। कांग्रेस पार्टी केरल में नई सरकार बनाने के लिए चर्चा कर रही है। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ ने राज्य की 140 विधानसभा सीटों में से 102 सीटें जीती हैं। केरलम के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर के तिरुवनंतपुरम पहुंचने पर उनसे संपर्क किया जाएगा। उनके पास तमिलनाडु का अतिरिक्त प्रभार भी है। वे इस समय चेन्नई में हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि केरला में नए मुख्यमंत्री का नाम पार्टी आलाकमान तय करेगी। हालांकि आज तिरुवनंतपुरम में कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई, लेकिन इसमें मुख्यमंत्री के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया। कांग्रेस के पर्यवेक्षक नव निर्वाचित सदस्यों के

0: साथ व्यक्तिगत बैठकें कर रहे हैं। पर्यवेक्षकों का उद्देश्य सभी नवनिर्वाचित सदस्यों के विचारों को जानना और उनकी मंशा को दल के शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचाना है। राज्य में मौजूदा हालात को देखते हुए मुख्यमंत्री का नाम रविवार तक तय होने की उम्मीद है। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पुलरुथि की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
1: पुदुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगासामी ने आज उपराज्यपाल के कैलाश नाथन को अपना इस्तीफा सौंप दिया। इससे केंद्रीय शासित प्रदेश में नई सरकार के गठन का मार्ग प्रशस्त हो गया है। मुख्यमंत्री ने राजनिवास में उपराज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपा। पश्चिम बंगाल में नवनिर्वाचित भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह शनिवार को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में रविन्द्र जयंती के अवसर पर आयोजित किया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों के शामिल होने की संभावना है। एक रिपोर्ट।
2: बंगाल के नया मुख्यमंत्री कौन होंगे, इसको लेकर चल रहे अकालों पे विराम लग सकता है। उस दिन शाम 4 बजे न्यू टाउन के विश्व बांग्ला कॉन्वेंशन सेंटर में बीजेपी विधानमंडल दल की पहली बैठक बुलाया गया है। उसी बैठक में औपचारिक रूप से विधानमंडल दल की नेता का चयन हो सकता है, अर्थात बंगाल का नया मुख्यमंत्री के ताज किसके सर सजेगा, इसके संकेत इस हाई प्रोफाइल मीटिंग से मिल सकता है। राजनीतिक महल की नजर एक और बात पर भी टिकी हुई है। बीजेपी विधानमंडल दल के नेता के चयन के लिए इस बार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद कलकत्ते में मौजूद रहेंगे। बीजेपी नेतृत्व चाहते हैं कि नेता के चयन सर्वसम्मति से हो, साथ ही सरकार गठन के पहले विधायकों को एकजुट रखने का संदेश भी देना चाहते हैं दल। आकाशवाणी के लिए कलकत्ता से अभिरूप भट्टाचार्य।
1: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आरोप लगाया है कि भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस सरकार द्वारा फैलाई गई हिंसा की राजनीति का एक और भयावह उदाहरण है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री प्रधान ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों को बार बार निशाना बनाया गया है, उन पर हमले किए गए हैं और उनकी हत्या की गई है, क्योंकि वे तृणमूल सरकार की भय की राजनीति के आगे कभी नहीं झुके। इस बीच पश्चिम बंगाल में भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या के मामले में राज्य पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 7 सदस्यीय विशेष जांच दल का भी गठन किया है। कल रात हमलावरों ने चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या कर दी थी। असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी तथा अन्य राज्यों में विधानसभा उपचुनाव के दौरान लागू आचार संहिता को हटा दिया गया है। आयोग ने कहा है कि पश्चिम बंगाल के फलता विधानसभा क्षेत्र में फिर से मतदान होने के कारण वहां आचार संहिता लागू रहेगी। फलता में मतदान 21 मई को और मतगणना 24 मई को होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @YARNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने नए श्रम संहिता के अंतर्गत 40 वर्ष और उससे अधिक आयु के श्रमिकों के लिए आज राष्ट्रव्यापी वार्षिक स्वास्थ्य जांच पहल का शुभारंभ किया। नई दिल्ली स्थित कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का उद्घाटन करते हुए डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में देश के कार्यबल और युवा शक्ति के प्रति सम्मान में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
3: आज से 1 दशक पहले देश में केवल 30 करोड़ लोगों को सोशल सिक्योरिटी का कवरेज मिलता था, लेकिन 12 साल के बाद इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल ने अनाउंसमेंट करा कि भारत में सोशल सिक्योरिटी कवरेज बढ़ के मोदी गवर्नमेंट के प्रयासों से आज देश में 94 करोड़ लोगों को सोशल सिक्योरिटी की कवरेज मिल रहा है।
1: अमेरिका ने होर्मुज जलडमरू मध्य से वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षित निकासी के लिए चलाए गए अभियान प्रोजेक्ट फ्रीडम को रोक दिया है। सऊदी अरब ने इस अभियान में शामिल अमरीकी विमानों को अनुमति नहीं दी है। आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से होगा। हैदराबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर सशस्त्र बलों के शौर्य को नमन किया। प्रधानमंत्री ने आतंकवाद और इसे बढ़ावा देने वाले तंत्र को नष्ट करने की राष्ट्र की प्रतिबद्धता दोहराई। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। नीतीश कुमार के पुत्र सहित 32 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। तमिलनाडु और केरल में सरकार गठन के लिए सघन वार्ताओं

0: का दौर जारी। सरकार ने 40 वर्ष और उससे अधिक आयु के श्रमिकों के लिए राष्ट्रव्यापी वार्षिक स्वास्थ्य जांच शुरू की और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज़ पर 2:30 हो रहे हैं। लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम।

0: संबंध।
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। आइए श्रोताओं, करते हैं शुरुआत एक सुंदर विचार के साथ, जिसे हमें भेजा है ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीना पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे जी ने। लिखते हैं,
2: कोमल वचन और विनम्र व्यवहार ही मनुष्य को महान बनाते हैं।
1: इस सुंदर विचार के लिए हम उमंग कार्यक्रम की ओर से आपका आभार प्रकट करते हैं। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के संदेश।
2: ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी, अबान अब्बासी और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य।
1: और संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव।
2: बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन।
1: और केंद्रपाड़ा ओडिशा से देशदीप दास।
2: धन्यवाद आप सबका संदेशों के लिए।
1: स्वागत है श्रोताओं आप सबका बहुत बहुत हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए में। श्रोताओं, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं समुद्र की,
2: इसके अद्भुत और रहस्यमय संसार की।
1: जी,
2: भारतीय शास्त्रों में समुद्र को अनंत ज्ञान का प्रतीक और जीवनदाता माना गया है। गीता, रामायण, पुराणों और वेदों में भी इसे विशेष महत्व दिया गया है। समुद्र मंथन की घटना से हम सब परिचित तो हैं ही, तो अजीत जी, आज हम समुद्र की किस विशेषता पर चर्चा करने जा रहे हैं?
1: विमलेश जी, अभी अभी आपने कहा समुद्र को शास्त्रों में जीवनदाता कहा गया है।
2: जी,
1: है ना?
2: बिल्कुल।
1: आज हम चर्चा करेंगे कि इसे जीवनदाता कहने का कारण क्या है। तो चलिए आपसे करते हैं शुरुआत।
2: जी अजीत जी, ये जानना बहुत जरूरी है, वरना हम समुद्र के महत्व को समझ ही नहीं पाएंगे। यदि पूछा जाए कि हमें जीने के लिए प्राणवायु या ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है, तो सबका उत्तर होगा पेड़ पौधों से। ये ठीक है, लेकिन सच ये है कि समुद्र लगभग 60-70% तक ऑक्सीजन पैदा करता है।
1: अरे वाह, ये तो बड़ी रोचक बात है। जी हाँ श्रोताओ, यदि प्रतिशत को मान लें तो कहा जा सकता है कि समुद्र पेड़ पौधों से भी अधिक ऑक्सीजन पैदा करता है।
2: जी,
1: जो हमारे जीने के लिए बहुत जरूरी है, इसीलिए तो इसे जीवनदाता भी कहा जाता है।
2: अजीत जी, मैंने पढ़ा है कि समुद्रों को धरती का फेफड़ा भी कहा जाता है, क्योंकि ये हमारे सांस लेने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। लेकिन ये जानकारी होना बहुत जरूरी है कि समुद्र ऑक्सीजन कैसे पैदा करता है।
1: जी विमलेश जी, समुद्र में फाइटोप्लैंकटन होते हैं। जरा श्रोताओं को जानकारी तो दे दें कि फाइटोप्लैंकटन होते क्या है।
2: श्रोताओं, फाइटोप्लैंकटन दरअसल बहुत ही सूक्ष्म और छोटे छोटे पौधे होते हैं, जो समुद्र के जल में तैरते रहते हैं। इनमें बहुत अधिक मात्रा में क्लोरोफिल होता है, जिसके कारण वे सूर्य की गर्मी से फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं और बदले में ऑक्सीजन छोड़ते हैं।
1: जी, एक रोचक बात और जान लेते हैं। फाइटोप्लैंकटन नाम ग्रीक या यूनानी भाषा के शब्द से आया है।
2: जी,
1: फाइटो का अर्थ है पौधा और प्लैंकटन का अर्थ है भटकने वाला या तैरने वाला।
2: जी,
1: ये पौधे समुद्र में यहाँ वहाँ तैरते रहते हैं।
2: जी हाँ श्रोताओं, इनकी संख्या अरबों खरबों में है। ये धरती के सबसे पुराने ऑक्सीजन उत्पादकों में से एक हैं। अजीत जी, श्रोताओं की ओर से एक और प्रश्न मेरे मन में है। वो ये है कि इनके द्वारा बनाई गई ऑक्सीजन हवा में कैसे आती है, यानी हमें कैसे मिलती है?
1: जी देखिए, समुद्र में बनी ऑक्सीजन दो तरह से फैलती है। तो पहली बात है, ये ऑक्सीजन पानी में घुल जाती है। इसी ऑक्सीजन से मछलियाँ और सारे समुद्री जीव सांस लेते हैं। लेकिन दूसरी एक और बात है।
2: दूसरी बात है, इनके द्वारा बनाई गई ऑक्सीजन लहरों और हवा के संपर्क में आकर हमारे पर्यावरण में पहुंचती है।
1: जी, और इतना ही नहीं, समुद्री शैवाल भी बहुत बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन पैदा करते हैं।
2: लेकिन अब एक खतरा है जो लगातार बढ़ता जा रहा है। श्रोताओ, एक बहुत गंभीर बात आपको बता दें, समुद्रों में हर दिन हजारों टन प्लास्टिक और कारखानों का कचरा नदियों द्वारा लाया

0: जाता है। समुद्री तटों पर पर्यटक भी कचरा फेंक देते हैं। शहरों का कचरा जहाजों द्वारा समुद्रों में लाकर फेंक दिया जाता है।
1: और श्रोताओं, इससे होता यह है कि समुद्री जीवों के जीवन पर संकट आता है
0: जी
1: और समुद्र द्वारा ऑक्सीजन पैदा करने की क्षमता भी प्रभावित होती है।
0: श्रोताओं, क्या आपको पता है कि समुद्रों में कुछ जगहों पर प्लास्टिक इकट्ठा होकर बड़े बड़े ढेर बना लेता है, जिसे प्लास्टिक या गार्बेज आइलैंड कहते हैं। ये तैरते हुए कचरों के द्वीप हैं। तो आइए अपने जीवनदाता समुद्र का सम्मान करें, प्लास्टिक का कम से कम उपयोग।

0: कहते हैं, ये तैरते हुए कचरों के द्वीप हैं, तो आइए अपने जीवनदाता समुद्र का सम्मान करें, प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करें और कचरा इधर उधर न फेंकें। शास्त्रों में समुद्र को देवता भी माना जाता है।
1: श्रोताओं, समुद्र का विश्व सभ्यता में बहुत बड़ा योगदान है। दुनिया का 80% व्यापार समुद्री मार्ग से ही होता है। यह जलवायु, ऋतुओं और पर्यावरण को भी नियंत्रित करता है। ऐसा भी कहते हैं कि जीवन की उत्पत्ति भी समुद्र से ही हुई है।
0: जी,
1: आइए आज अपने जीवनदाता समुद्र को धन्यवाद दें, हम उसकी रक्षा करें।
0: तो समाप्त करते हैं आज की चर्चा। श्रोताओं, कैसी लगी आपको ये जानकारी, हमें जरूर बताइएगा। अब सुनिए आज का प्रश्न।
1: आज का प्रश्न है, समुद्रों को प्रदूषित होने से बचाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? कोई दो कारण बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: समुद्रों को प्रदूषित होने से बचाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, कोई दो कारण बताइए।
1: आप अपना उत्तर हमारे IBRS नंबर यानी 8800-44-0559 पर भेज सकते हैं और हमारे ईमेल पर भी। हमारे ईमेल का पता है audio@ceet.nic.in।
0: और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की। सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम, माला की चांदी की पायल।
1: इस कार्यक्रम में एक प्यारी सी बच्ची के बारे में बताया गया है जिसे पायल पहनकर घर में घूमना बहुत अच्छा लगता है। वो पायल पहनकर घूमती है और बहुत सी मजेदार गतिविधियां भी करती है। ये कार्यक्रम कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित सुंदर नाट्य प्रस्तुति है, माला की चांदी की पायल।
2: माला बिल्ली को डराती है। वो अपनी नानी को डराती है।
3: अरे माला, तू
2: वो अपने छोटे भाई को डराती। वो डाकिये को डराती।
4: बहन जी, डाकिया।
2: उसकी टोपी भी हवा में उछल गई। एक दिन माला की मां ने उसे एक छोटी सी डिब्बी दी।
3: माला, यह तुम्हारे लिए है।
2: माला ने जल्दी से डिब्बी खोली जिसमें उसे मिली नीले कागज में लिपटी प्यारी सी चांदी की पायल। उन्हें पहनकर वो पूरे घर में घूमने लगी। छोटे छोटे घुंघरू झनकते। अब माला जहां भी जाती सब जानते। उसकी आवाज से बिल्ली को पता लग गया कि माला आ रही है। माला की होश से पहले बिल्ली कूद गई। माला की हेज से पहले नानी पलट गई। इस बार वो डरी नहीं क्योंकि उन्हें माला के आने का पायल की आवाज से पहले ही पता चल गया था। माला की थप से पहले छोटा भाई बाहर भाग गया। माला की भौ से पहले डाकिया निकल गया। माला की छिक छिक छम की पायल की आवाज सुनकर डाकिये को पहले ही पता चल गया कि माला आ रही है। अब माला किसी को डरा नहीं पाती। तो ऐसे में माला ने क्या किया? उसने अपनी

0: चांदी की पायल उतार दी। वो बहुत खुश है।
1: तो बच्चों, अभी आपने सुनी डराने की अलग अलग अभिव्यक्तियाँ। अब आपके सोचने के लिए कुछ बातें। विभिन्न भावों की अलग अलग अभिव्यक्ति होती है, जैसे हंसने की, रोने की इत्यादि। तो आप भी अपने मित्रों के साथ प्रयास करके देखिए कि आप कितने प्रकार से हंस सकते हैं। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, कलाकार बाबला कोचर और ममता मलकानी, ध्वन्यांकन मयंक कुमार, निर्माण सहयोग जगबंधु जाना तथा निर्देशन एवं निर्माण अजीत होरो। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।
2: और अब सुनते हैं भारतीय शास्त्रीय हिंदुस्तानी संगीत की श्रृंखला राग रस बरसे का एक और कार्यक्रम। शीर्षक है राग गौड़ मल्हार।
0: इस कार्यक्रम में राग गौड़ मल्हार के बारे में विस्तृत विवरण दिया गया है और विशेष रूप से बताया गया है कि इसे कब गाया जाता है, इसकी स्वर मालिका क्या है और इसमें कौन कौन से कोमल और तीव्र स्वर लगते हैं।

राग गौड़ मल्हार। राग गौड़ मल्हार की उत्पत्ति खमाज थाट से हुई है। इस राग में दोनों निषाद अर्थात कोमल नी और शुद्ध नी प्रयोग किए जाते हैं तथा अन्य सभी स्वर शुद्ध लगते हैं। इसके आरोह और अवरोह में सात सात स्वरों के प्रयोग होने के कारण इस राग की जाति संपूर्ण संपूर्ण है। इस राग का वादी स्वर मध्यम यानी म है, संवादी स्वर षडज यानी स है। इस राग का गायन समय रात्रि का द्वितीय प्रहर है एवं ये वर्षा ऋतु में विशेष रूप से गाया जाता है। राग गौड़ मल्हार के आरोह अवरोह और पकड़ इस प्रकार हैं। सबसे पहले सुनिए आरोह।

अब प्रस्तुत है राग गौड़ मल्हार की स्वर मालिका जो तीन ताल मध्य लय में निबद्ध है। इसमें 16 मात्राएं होती हैं। पहले प्रस्तुत है इस राग की स्वर मालिका की स्थाई।

अभी आपने सुनी राग गौड़ मल्हार की स्वर मालिका। अब इसी स्वर मालिका पर आधारित एक रचना सुनिए। बोल हैं, उमड़ घुमड़ कर आते बादल। पहले प्रस्तुत है इसकी स्थाई।

अभी आपने सुनी राग गौड़ मल्हार की स्वर मालिका, साथ ही सुनी इस स्वर मालिका पर आधारित रचना।

0: अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। आशा है श्रोताओं कि ये कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा।
1: मैं एक नन्ही बच्ची हूँ, प्री स्कूल में जाती हूँ। अलारू मैं चल चल।

0: तो सुनिए अपने छोटे बच्चों के मन की बात। निष्ठा, गुणवत्ता पूर्ण प्रारंभिक बाल शिक्षा, जिससे मिलेगा बचपन को महत्वपूर्ण आयाम। बाल्यावस्था में 6 वर्ष तक के छोटे बच्चों का शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्तर पर तीव्र सकारात्मक विकास होता है। जी हाँ, अब महकेंगे आंगनबाड़ी और प्री स्कूल, क्योंकि गुणवत्तापूर्ण बाल शिक्षा से, निष्ठा से खिलेंगे ये नन्हे फूल।
1: और अब सुनते हैं कार्यक्रम साथी की सहायता।
2: इस कार्यक्रम में सच्ची मित्रता के बारे

0: एक बालक था, उसकी उम्र 11 वर्ष थी। एक दिन वो अपने पिताजी के पास गया और बोला,
1: पिताजी मुझे 5-7 रुपए दे दीजिए।
0: पिताजी ने कहा,
2: 5-7 रुपए? तुम ये रुपए किस लिए मांग रहे हो?
0: बालक बोला,
1: मुझे इन रुपयों की जरूरत है।

0: पिताजी ने बालक को 5 रुपए दे दिए, लेकिन वो जानना चाहते थे कि बालक रुपए किस काम में खर्च करेगा। वो चुपचाप उसके पीछे चल पड़े। बालक सीधा अपने साथी के घर गया। वो उसे बुला लाया, फिर दोनों बाजार की ओर चल पड़े। पिताजी भी उनके पीछे पीछे गए। बाजार में पुस्तकों की एक दुकान थी, वहां दोनों रुक गए। बालक ने कुछ पुस्तकें खरीदी और अपने साथी को दे दी। साथी को इन पुस्तकों की बहुत जरूरत थी। पिताजी सब कुछ समझ गए। वे प्रसन्न थे कि उनके बेटे ने अपने साथी की मदद की। पिताजी ने बालक को बुलाया। वे प्यार से बोले,
1: बेटा, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। साथियों की सहायता करना बहुत अच्छी बात है। मैंने तुम्हें पुस्तकें खरीदते देख लिया था।
0: इस बालक का नाम था चितरंजन दास। चितरंजन दास ने देश की बहुत सेवा की। लोग इन्हें देश बंधु चितरंजन दास कहने लगे।

0: जी, अभी आपने सुना कार्यक्रम साथी की सहायता।
1: और अब इसी के साथ हमारा आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत,
0: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
4: मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। अंतराल से पूर्व आपने सुना प्रायोजित कार्यक्रम। हमारे स्टूडियो की घड़ी में समय अपराह्न के 3 बज रहे हैं। संपन्न होती है हमारी आज की ये सभा। हमारी अगली सभा शाम 4:30 पर आरंभ होगी। तब तक के लिए आज्ञा

0: सखी सहेली
1: सभी सखियों सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। चंचल जी आपको भी हमारा नमस्कार।
2: ममता जी आपको और सभी सुनने वालों को मेरा यानी चंचल वर्मा का नमस्कार। और एक लंबे अरसे के बाद इस मंच के साथ आपकी और हमारी भेंट हुई है।
1: बिल्कुल। और इस भेंट में ये देख रही हूँ कि निजात, इतनी भीषण गर्मी से निजात पाने के लिए आपके चेहरे पर जो सुकून दिखाई दे रहा है ना स्टूडियो में एसी की ठंडक में, वो अलग ही बता रहा है कि आप भीषण गर्मी से हाल बेहाल हैं सब लोग, हम सब।
2: हाँ, सभी का इन दिनों तो कह सकते हैं कि देश के हर हिस्से में जिस तरह से गर्मी ने अपना प्रचंड रूप ले लिया है तो हर कोई त्रस्त है और वो यही देखता रहता है कि कहीं कोई छांव मिल जाए।
1: और ऐसे तो छांव सड़क पे, खुली सड़क पे तो छांव ढूंढते रहते हैं, तो एक जरा सी छाया मिलती है, पेड़ जब पत्तियां हिलती हैं तो एक जरा सी हवा चलती है, ठंडी हवा जिसे हम कह सकते हैं। हाँ। लेकिन गानों की छांव ऐसे सुकून दे है कि ठंडी हवा के जब गाने सुनते हैं तो सचमुच हमें सुकून मिल जाता है। लेकिन ठंडी हवा की छांव में चलने से पहले जरा आज के विषय पर हम गौर फरमा लें।
2: हाँ, तो जो हमारे साथी जुड़ चुके हैं और अभी तक उन्होंने फेसबुक की पोस्ट नहीं देखी है, जो फेसबुक से नहीं जुड़े हैं उन्हें भी पता लग जाएगी किन विषयों पर आज हम बात करेंगे। तो आपने जब ठंडी हवा की बात करी ना, तो भाई उसके लिए पर्यावरण का दुरुस्त होना बहुत जरूरी होता है।
1: बिल्कुल।
2: ताकि पर्यावरण अच्छा रहे, पेड़ पौधों से भरा हुआ वातावरण हो, तो एक ऐसी महिला जिसने इसमें बहुत बड़ा योगदान दिया उनकी आज हम बात करेंगे। और इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है, तो ये हैं तुलसी गौड़ा, इनकी आज बात होगी।
1: पर्यावरणविद हैं, इनके बारे में बताएंगे। और गर्मी से निजात पाने के लिए कपड़ों का ध्यान रख रखाव भी जरूरी है कि हम कौन सी पोशाक पहनते हैं गर्मी के मौसम में। कई बार बहुत सिंथेटिक कपड़ा या सिल्क पहन के धूप में, तपती दोपहरिया में, या बहुत डार्क कलर पहन के निकल जाते हैं तो आपको गर्मी का एहसास और ज्यादा होता है, बल्कि पसीना ज्यादा आता है। गर्मी में कॉटन कपड़े पहन के निकले तो ज्यादा आपको ठंडक महसूस होगी।
2: और आज हम इस बारे में बात करेंगे कि कुछ कपड़े जिन्हें कई बार हम थोड़े ही दिन पहना, उन्हें बस यूज नहीं हो रहे, इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो उनको फिर से अगर पहनने का मन करे तो उनको एक नया रूप देकर किस तरह से पहना जा सकता है। कई कपड़े बहुत बार पहनने के बाद भी कपड़े की क्वालिटी अच्छी है, कपड़ा अभी तक चल रहा है, तो अब इसका क्या इस्तेमाल किया जा सकता है, ये जो तरीके हैं कि पुराने कपड़े को किस तरह से एक नया लुक देना है, इसके बारे में बात।
1: बिल्कुल, तो ये ज्ञान की बातें हो जाएंगी। और गर्मी के मौसम में सड़क पर चलते हैं तो कैसा लगता है खुली सड़क पर, जब निचाट धूप होती है तो बहुत तकलीफ होती है ना। तो
2: कई बार ऐसा होता है ना कि लगा हुआ है रेड सिग्नल, लेकिन क्योंकि धूप में खड़े नहीं रहना तो सिग्नल तोड़ के हम आगे बढ़ते हैं, कि यातायात के नियमों का उल्लंघन कई बार गर्मी से बचाव में भी हो जाता है।

0: लेकिन सड़क पर चलते हुए खुद के लिए भी और जो अन्य लोग चल रहे हैं, चाहे वो वाहन में है या पैदल हैं, उनकी सुरक्षा का भी ध्यान रखना है। इसलिए कुछ बातें सड़क सुरक्षा की।
1: एक और जरूरी बात है, वो कौन सी है बताइए जरा, जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं।
0: बिल्कुल, क्योंकि गर्मियों की जब बातें इतनी सारी चल ही रही हैं, तो एक बहुत विशेष उपकरण है रेफ्रिजरेटर, जो सबके घर में है, और कई बार उसकी अगर साफ सफाई ना की जाए या कुछ सामान ऐसे रख दिया जाए जिनमें से गंध अलग तरह की आने लगती है, तो जो अन्य खाने की सामग्री रखी है उसको भी वो प्रभावित कर देता है। तो उस गंध से कैसे बचा जाए, इसके टिप्स हमारी सखियां हमारे साथ जरूर साझा करें।
1: और हम अब साझा कर रहे हैं ये ठंडी छांव और सुकून दे गाना, जिससे हमें छांव मिलेगी, ठंडक भी महसूस होगी
0: जी,
1: और पर्यावरण के रखरखाव, पर्यावरण की सुरक्षा की भी बातें हम सोच सकते हैं इस गाने को सुनते हुए। सुनते ही ये गाना।

ठंडी हवा के झोंके जब चलते हैं तो यादों का कारवां भी चलता है और छांव तो मिलती है, सुकून मिलता ही है। और हमने कार्यक्रम की शुरुआत में चर्चा की है चंचल जी कि आज पर्यावरण विद तुलसी गौड़ा के बारे में जानकारी देंगे, क्योंकि इस तपती दोपहरी में, तपती गर्मी में जहां भीषण गर्मी है, पर्यावरण का असंतुलन हो रहा है, ऐसे में पर्यावरण की बातें करके पर्यावरण की ओर ध्यान देना हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। किसी भी प्रजाति के वृक्ष की मातृवृक्ष को पहचानने की उनकी क्षमता के कारण तुलसी गौड़ा को वन का

0: वृक्षकोश कहा जाता था। वृक्ष देवी के नाम से भी वे जानी जाती थी क्योंकि उन्हें वनों का बहुत गहरा ज्ञान था। भले ही आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी विरासत पर्यावरण संरक्षण के लिए हमेशा एक प्रेरणा बनी रहेगी और आने वाली पीढ़ियों को भी हमारी पृथ्वी की रक्षा के लिए प्रेरित करती रहेगी।
1: और बहुत से पर्यावरणीय परिवर्तन और प्रदूषण जो कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हम सभी मनुष्यों की गतिविधियां, जैसे जो औद्योगीकरण बहुत बढ़ रहा है या वनों की कटाई हो रही है, इसके कारण जो भी उत्पन्न होते हैं उनसे वनों को भी बहुत क्षति पहुंचती है। इन्हीं वनों के संरक्षण के प्रति उनकी जो गहरी प्रतिबद्धता थी, इस क्षति को कम करने के लिए वो सहायक हो सकती थी। और इनकी शुरुआती जीवन की अगर हम बात करें तुलसी गौड़ा की, तो इनका जन्म हुआ साल 1944 में कर्नाटक के होन्नाली गांव में। बहुत ही गरीब परिवार में इनका जन्म हुआ और जब वो सिर्फ 2 साल की थी तभी पिता का साथ भी छूट गया। इसलिए जब वो बड़ी हो रही थी तो अपनी माँ, जो वो काम किया करती थी एक स्थानीय नर्सरी में दिहाड़ी मजदूर के रूप में, उनके साथ वो चली जाया करती थी। और औपचारिक शिक्षा वैसे तो इन्हें कभी नहीं मिली, ना इन्होंने स्कूल जाकर कभी सीखा, लेकिन तुलसी गौड़ा कर्नाटक वन विभाग में नर्सरी में जो भी उगाए जाने वाले बीज थे उनके देखभाल का कार्य किया करती थी। उन्होंने बीजों के संरक्षण में अपने कार्यों और वनस्पति विज्ञान को देखते हुए स्थायी पद की पेशकश के लिए जाने तक अपनी माँ के साथ नर्सरी में दिहाड़ी मजदूर के रूप में 35 सालों तक काम किया और 70 साल की उम्र पूरा होने तक, यानी कि सेवानिवृत्त होने से पहले करीब करीब 15 वर्षों तक नर्सरी में इसी स्थायी पद पर उन्होंने काम किया था।
0: और इसके अलावा नर्सरी में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने भूमि के पारंपरिक ज्ञान का उपयोग करते हुए वन विभाग के वृक्षारोपण प्रयासों में भी योगदान दिया और प्रत्यक्ष रूप से काम किया। पौधों को रोपने के साथ साथ उन्होंने वन्य जीवों को नष्ट करने वाले शिकारियों और जंगल की आग को रोकने के लिए भी काम किया।
1: तुलसी गौड़ा ने कर्नाटक वन विभाग में रहते हुए करीब 60 सालों से भी अधिक समय तक सेवा की इन जंगलों की, इन पेड़ पौधों की। और इसमें एक सामुदायिक अभ्यारण्य, 5 बाघ अभ्यारण्य, 15 संरक्षण अभ्यारण्य और करीब 30 वन्य अभ्यारण्य शामिल हैं। और उनका उद्देश्य गांवों को प्रकृति से फिर से जोड़ देना था, क्योंकि लोग प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं ना, इसीलिए। और तुलसी गौड़ा को पर्यावरणविदों ने वन का विश्वकोश कहा, जैसा कि आपने शुरू में बताया, और वृक्ष देवी के रूप में भी वो जानी जाती रही क्योंकि उन्हें वन और पौधों का बहुत ही गहरा ज्ञान था। और वन में कहीं भी लगाए हुए पेड़ों की प्रजाति के जो मात्र वृक्ष हैं उनकी पहचान किस तरह की जाती है, इसमें उनको एक अद्भुत क्षमता हासिल थी। तुलसी गौड़ा बीज इकट्ठा करने और उन्हें पहचानने में भी विशेषज्ञ थी। सभी तरह के जो पौधे होते थे उनकी प्रजातियों को फिर से जीवित किस तरह से करना है, दोबारा उनको विकसित करने के लिए मात्र वृक्ष से बीज किस तरह निकालना है, ये एक बहुत कठिन प्रक्रिया होती है, लेकिन तुलसी गौड़ा इसमें सक्षम थी।
0: और इसके अलावा तुलसी गौड़ा खुद भी कभी किसी को ये नहीं समझा सकी कि उन्होंने जंगल के बारे में इतना ज्ञान कैसे पाया, लेकिन वो ये जरूर कहती थी, ऐसा लगता है जैसे वो जंगल की भाषा बोल सकती हैं। उनके समुदाय की परंपराओं में मातृसत्ता प्रकृति से जुड़ी हुई है और भूमि की देखभाल भी करती है।
1: ऐसा अनुमान ममता जी लगाया जाता है कि तुलसी गौड़ा ने कर्नाटक में अकेले ही करीब 1 लाख के करीब उन्होंने पेड़ लगाए हैं और उनके गांव के आसपास के क्षेत्र में तुलसी गौड़ा को वहां का गौरव भी लोग मानते हैं। उन्हें जंगल और औषधीय पौधों का अमूल्य ज्ञान था। उन्होंने जो भी पौधे लगाए उनमें बहुत ज़्यादा जो पौधे थे वो औषधीय पौधे भी थे और इनका उपयोग उस वक्त बहुत ज़्यादा किया गया जब गाँव के लोग बीमार पड़ जाया करते थे।
0: हालांकि एक समय जब वो कर्नाटक वन विभाग से सेवानिवृत्त हो चुकी थी, फिर भी उन्होंने अपने गांव के बच्चों को जंगल के महत्व के साथ साथ बीज खोजने और उनकी देखभाल करने के बारे में सिखाना जारी रखा।
1: तुलसी गौड़ा ने अपने गांव की महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में भी जागरूक किया और जब कुछ कहा सुनी के बाद, कई ऐसे भी मामले होते ना कि कुछ मार पिटाई भी हो जाती है, कुछ झगड़ा हो जाता है, तो ऐसे मामलों में भी वो आगे आई और किसी निरपराध को उन्होंने कभी सजा नहीं होने दी। और पुरस्कार और सम्मान भी जब कोई ऐसा काम करता है तो वो भी उन्हें दिए जाते हैं। अब उन्हें क्या क्या मिला इसके बारे में बताते हैं। साल 1986 में तुलसी गौड़ा को इंदिरा प्रियदर्शिनी वर्ष मित्र पुरस्कार प्रदान किया गया, जिसे IPVM पुरस्कार के नाम से भी हम जानते हैं। और ये पुरस्कार वनीकरण और बंजर भूमि विकास के योगदान के लिए किसी व्यक्ति या किसी संस्थान को दिया जाता है। इसके बाद साल 1999 में तुलसी गौड़ा को कर्नाटक राज्योत्सव पुरस्कार का सम्मान प्राप्त हुआ, जो कर्नाटक राज्य का

0: दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और साल 2020 में उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया, जो भारत के नागरिकों को दिया जाने वाला चौथा सर्वोच्च सम्मान है। और ये सम्मान मिलने पर भी तुलसी गौड़ा का कहना ये था कि पद्मश्री प्राप्त करके उन्हें खुशी तो है, लेकिन फिर भी जंगल और पेड़ों को वो ज्यादा महत्व देती है।
1: और उन्होंने पर्यावरण की रक्षा के लिए सभी समुदायों को शामिल किया जो आसपास के समुदाय थे। इससे सामूहिक जिम्मेदारी की भावना भी विकसित हुई लोगों में और लोग खुद भी पहल करने के लिए आगे आए। उनके प्रयास से कर्नाटक के बहुत सारे बंजर क्षेत्रों को पुनर्जीवित करके फिर से पर्यावरण के संतुलन को बहाल किया गया और उन्होंने आसपास के क्षेत्र में रहने वाले लोगों को जंगलों और उनके संसाधनों के संरक्षण के महत्व के बारे में भी शिक्षित किया, जिससे देश और समाज का कल्याण हो सकता है।
0: और फिर आया 16 दिसंबर 2024 का दिन, जब उनकी उम्र करीब 86 साल की थी। इस समय वो इस संसार को छोड़कर, हम सभी को छोड़कर चली गई और तुलसी गौड़ा की विरासत हम सबके लिए प्रेरणा है और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने वाली है। उन्होंने हमें समझाया कि कोई भी पहल पर्यावरण में बदलाव ला सकती है। उनका जीवन हमें प्रकृति की देखभाल और जुड़ाव की महत्वपूर्ण संस्कृति को विकसित करने का संदेश देता है।
1: और जब हम पर्यावरण की सुरक्षा करेंगे तो ये बात अपने आप से कह सकेंगे।

0: तो भाई ये बूंद जो बन गई मोती फिल्म का गाना था, मुकेश की आवाज थी, भरत व्यास की ये रचना थी, सतीश भाटिया का संगीत था।
1: अच्छा ममता जी, इसे पिछली बार जब हम मिले थे विविध भारती में और हम जब गेट पर ही थे तब उल्टी दिशा में आप जा रही थी बड़ी तेजी से।
0: अरे बड़े ध्यान से आप देखती हैं।
1: भाई क्या होता है ना, सीधी दिशा में तो सभी चल रहे थे, अचानक आपको जब उल्टी दिशा में जाते देखा मैंने, तो मैं समझ नहीं पाई कि कारण क्या है। तो आज जब मुलाकात हुई तो लगा यही पूछ लूं।
0: ठीक, सवाल बिल्कुल सही है। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि बाएं तरफ चलो
1: जी,
0: और एकदम किनारे किनारे चलो।
1: हाँ।
0: जो सड़क के किनारे जो बना रहता है, जिसको हम पैदल यात्रियों के लिए चलने के लिए बना रहता है,
1: हाँ,
0: वहां
1: हाँ।
0: चलना चाहिए, ये सिखाया जाता है हमें।
1: इसीलिए सिखाया जाता है ना कि भाई सुरक्षा के मद्देनजर ये जरूरी भी तो
0: हाँ,
1: है।
0: और सड़क सुरक्षा के बहुत सारे नियम होते हैं जिनका पालन कुछ लोग तो बहुत सदाशयता के साथ करते हैं, लेकिन कुछ लोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहते हैं। तो वो नियम उस दिन पालन मैंने नहीं किया, लेकिन आपने पूछा कि क्यों चल रही, उसकी एक वजह है। देखो सड़क के किनारे चलने के लिए जो कई बार छायादार वृक्ष लगे होते हैं, बाई तरफ हम चलते हैं, लेकिन कई बार ऐसी सड़कें हैं, चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं, और ख़ास तौर से हाईवे जो होते हैं वहाँ पर तो आपके लिए पैदल चलने के लिए कुछ बना नहीं होता है
1: जी।
0: और हाईवे ना हो तो भी कुछ सड़कों पर जहाँ पर किनारे चलने की जगह ना हो तो वहाँ पर मुझे लगता है कि उल्टा चलना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि मैंने कई बार देखा है कि बाई तरफ चल रहे हैं, पीछे से बाइकर्स इतनी तेज़ रफ्तार में आते हैं कि वो उन बाइकर्स की आवाज़ से अपना बैलेंस बिगड़ जाता है और गिरते गिरते बचते हैं, और ऐसे हादसे हमने आंखों के सामने देखे हैं। तो मैं क्या करती हूँ, जब जहाँ पर पैदल यात्रियों के लिए जगह नहीं बनी रहती तो मैं उल्टा चलती हूँ, क्योंकि सामने से वाहन आता हुआ दिखाई देता है तो हम सतर्क रहते हैं पहले से।
1: और आपने जब बात की ना कि कई बार लोग हॉर्न बहुत तेज बजाते हैं, तो हम नियमों की बात तो करते हैं, उसमें इस बात का भी हमें ख्याल रखना चाहिए कि हमारी गाड़ी में कितने ज्यादा तेज आवाज की हमें जरूरत है। हम उतना ही, कई लोग सिर्फ दिखावे के लिए या कहते हैं कि शो ऑफ करने के लिए, लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए इतनी तेज आवाज वाला हॉर्न अपनी मोटरसाइकिल में या अपनी गाड़ी में लगा लेते हैं, और इससे कई बार लगता है कि जैसे कान के पर्दे कहीं फट ना जाए, तो इन चीजों का भी ध्यान रखें। फिलहाल हम बात कर रहे हैं सड़क सुरक्षा के बारे में, और इसका मतलब होता है कि सड़क पर होने वाली जो भी दुर्घटना है उसके खतरे को किस तरह से हम कम कर सकते हैं। सड़क पर होने वाली जो भी दुर्घटना है उनको कम करने के लिए यातायात के कुछ नियम बनाए गए हैं, उन नियमों का पालन करना ना सिर्फ खुद की सुरक्षा के लिए बल्कि दूसरों की सुरक्षा के लिए भी बहुत जरूरी होता है। जैसे हेलमेट, सीट बेल्ट का उपयोग, गति सीमा का पालन करना, नशे में गाड़ी ना चलाना, रेड लाइट का सम्मान करना, ये सारे नियम ऐसे हैं जिनके बारे में हम सब जानते हैं और जीवन रक्षा के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण भी हैं। और आज के समय में सड़कों पर वाहनों की संख्या जिस तरह से बढ़ती जा रही है, ट्रैफिक से हर कोई बदहाल है, बेहाल है, और इनसे दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ रहा है। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा, ये बातें हम करते तो हैं, ये सिर्फ नारा नहीं, लेकिन ये हम सबकी जिम्मेदारी भी होती है। यातायात के जो भी नियम हैं वो इसलिए बनाए जाते हैं कि सड़कों पर वाहन और पैदल चलने वाले जितने भी लोग हैं उनका संतुलन वो बना रहे, कोई दुर्घटना ना हो, जान माल की हानि ना हो।
0: बिल्कुल, और कुछ नियम हैं जिनका पालन हमें करना चाहिए, जैसे कि लेन का पालन करें।
1: हाँ।
0: और हमने तो भाई देखा है कि तुरंत यहाँ मुंबई की सड़कों पर लेन अगर गलत तरीके से चेंज किया तो चलान हो जाता है, और आजकल तो ऑटोमेटिक चलान आपको पता भी नहीं चलता, आपके जब पैसे कटते हैं तो पता चलता है।
1: जब खासतौर पर हम हाईवे पे गाड़ी चला रहे हैं तो वहाँ आपकी गति के हिसाब से लेन बनाई हुई होती है, तो जिस गति में आपकी गाड़ी चल रही है, आप चला रहे हैं, उसी लेन में आपको रहना जरूरी है ताकि अगल बगल जो भी लोग चल रहे हैं अपनी गाड़ी को लेकर उन्हें कोई दिक्कत।
0: मुंबई की बात करें तो मुंबई में खास तौर से जो मुंबई का शहरी इलाका जिसको मुंबई महानगर कहा जाता है, जैसे कि जहां पर विविध भारती का स्टूडियो है, ये तो उपनगर है बोरीवली, लेकिन मरीन लाइंस और दादर इस तरह इस इन इलाकों में लेन का एक रूल है, अगर लेन बदला तो आपको फाइन भरना पड़ता है। तो जरूरी नहीं कि आप बाई तरफ ही चले, वो ट्रैफिक रूल के आपको ट्रैफिक रूल समझ लेना चाहिए मुंबई की सड़कों पर गाड़ी चलाने के लिए। और दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट लगाना बहुत

0: जरूरी है, चार पहिया वाहन में सीट बेल्ट का उपयोग अनिवार्य है, वरना उसके लिए भी फाइन हो जाता है। हम सब एक आध बार सीट बेल्ट के लिए कार में बैठकर फाइन भर चुके हैं, हमें लगता है।
1: कई बार लोग कहते ना कि कुछ लड़के खासतौर पर कहते हैं कि हीरोपंती में गाड़ी चलाने के लिए वो हेलमेट नहीं पहनते, सिर्फ जब उनको ट्रैफिक सिग्नल पर से निकलना होता है कि सिग्नल आने वाला है, कहीं कोई ट्रैफिक पुलिस में ना हो तो उनसे बचने के लिए वो हेलमेट पहनते हैं। लेकिन आपको हेलमेट चालान से बचने के लिए नहीं बल्कि अपनी सुरक्षा के लिए पहनना है, इस बात का ध्यान रखना है। और वाहन चलाते समय निर्धारित जो गति सीमा है उसका पालन करना जरूरी है, क्योंकि तेज गति जो है वो कई बार दुर्घटना का कारण बन जाती है। इसी तरह से ट्रैफिक के जो भी सिग्नल हैं उनका पालन करें। रेड लाइट का मतलब है कि आपको थोड़ी देर रुकना है, पीली बत्ती है कि आप तैयार हो जाएं, हरी बत्ती का मतलब है कि आप आगे बढ़िए। इसी तरह से मादक पदार्थों का सेवन करने के बाद ड्राइविंग ना करें, और ये कानूनन अपराध भी है। वाहन चलाते समय मोबाइल फोन पर बात कभी ना करें।
0: चंचल जी, जी यहाँ पर ये बताना जरूरी है कि मोबाइल फोन पर बात करते समय वाहन न चलाएं। ये कहना तो बड़ा आसान है लेकिन कोई मानता नहीं है। अब तो ईयर प्लग लगा के कार में तो आराम से लोग बातें करते हुए जाते हैं। अब तो कार में ये सुविधा भी है कि आप फोन करो और आपका स्पीकर चल जाता है, तो स्पीकर पे बात करते हैं, वो भी कहीं ना कहीं खतरनाक है। और जो मोबाइल बाइक पर हेलमेट के अंदर ईयर प्लग लगा के लोग आराम से बात करते हुए जाते हैं, जब ये प्लग नया नया आया था बाजार में, तो कई लोगों को हमने देखा कि ये पागल है क्या, बंदा अपना बाइक पे चला जा रहा है और बातें करते हुए जा रहा है अपने आप से। तो बाद में पता चला कि सुविधा भी है कि आप आराम से बाइक चलाते रहो और बातें करते रहो। ये बहुत खतरनाक होता है। कहाँ पर आपका आपसे बात करने वाला कोई ऐसी बात कर रहा है कि आपका ध्यान भटक जाए,
1: बिल्कुल सही,
0: वो बहुत खतरनाक होता है।
1: इसी तरह से जो वाहन की लाइट्स होती हैं उनका भी सही उपयोग जरूरी होता है। कई बार हमें लेफ्ट या राइट जब लेना होता है, अपनी गाड़ी को टर्न करना होता है, मोड़ लेना होता है, उस वक्त के लिए कुछ बत्तियां हमारी गाड़ी में निर्धारित होती हैं, तो कई बार उनका लोग प्रयोग किए बिना ही आपने अगर सिग्नल पे से आपने टर्न ले लिया तो जो पीछे वाले जो लोग हैं जो अपने वाहन पर हैं उनके लिए चीज़ खतरा बन सकता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ज़ेब्रा क्रॉसिंग पैदल यात्रियों की सुविधा के लिए बनाई जाती है, इसीलिए जब भी ट्रैफिक रुकता है तो ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर जो लोग चल रहे हैं उन्हें रास्ता ज़रूर दें और अगले वाहन से एक उचित दूरी ज़रूर बनाकर रखें ताकि दुर्घटना को टाला जा सके। दूसरे वाहनों को अगर दाईं ओर से ओवरटेक करने की नौबत आती है तो बड़ा सावधानीपूर्वक करना है ताकि आप भी सुरक्षित हों और जिस गाड़ी को आप ओवरटेक कर रहे हैं उनको भी कोई नुकसान ना हो। ज्वलनशील जो भी पदार्थ होते हैं उनको वाहन में ना लेकर जाएं। वाहनों का समय समय पर उचित रखरखाव जो है या प्रदूषण की जांच है ये भी करवाना जरूरी है। ये सड़क सुरक्षा का नियम नहीं है लेकिन ये आपकी सुरक्षा के लिए जरूरी है क्योंकि आपको अपने वाहन को उसी सड़क पर
0: वरना धुआं उगलता हुआ वाहन आपके लिए नुकसानदेह है और सड़क पर जो चल रहे यात्री उनके लिए भी नुकसानदेह।
1: सड़क सुरक्षा का महत्व खुद के लिए भी और दूसरों के जीवन रक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए यातायात के जो भी नियम है उनका पालन अगर करेंगे तो दुर्घटना या अकाल मृत्यु दोनों से बच सकते हैं और ट्रैफिक जाम को भी हम कम कर सकते हैं। आवागमन तेज हो सकता है इससे। अगर इन नियमों का हम उल्लंघन करते हैं तो जुर्माना, सजा कुछ भी हो सकता है। सिर्फ इनसे बचने के लिए नहीं अपनी खुद की सुरक्षा के लिए भी आप करिए। और कई बार तो हमें कहना चाहिए कि छोटे बच्चे जब, क्योंकि कई बार छोटे बच्चों को भी हम वाहन हाथ में दे देते हैं, तो इन चीज़ों के बारे में उन्हें समझ हो। पहली बात उन्हें वाहन देना नहीं हाथ में, लेकिन बच्चे जब बड़े होकर वाहन चलाने लगे,
0: 18 साल से कम उम्र के बच्चों को तो उनको वाहन देना है नीचे, कानूनन अपराध है। और देखिए सड़क सुरक्षा के बहुत सारे नियम है, बच्चों को सड़क पार करने का तरीका भी सिखाएं। जो छोटे बच्चे साइकिल चलाना सीखते हैं नया नया उनके भी जो रूल हैं बताएं कि हेलमेट लगाएं। और देखिए सड़क सुरक्षा के बारे में अपने जाने माने अभिनेता जॉन अब्राहम क्या कहते हैं, सुनते हैं।

जॉन अब्राहम, मैं तो यही कहूंगा कि धूम में भी मैंने हेलमेट पहनी थी। जितने पेरेंट्स हैं, जितने यंगस्टर्स हैं, जो भी सुन रहे हैं, ऑलवेज वेयर अ हेलमेट। हेलमेट बहुत ही जरूरी है। मैं अपने यंगस्टर्स को यह भी कहना चाहता हूँ कि मैं बाइक्स को रेसिंग ट्रैक पे लेके जाता हूँ, नॉर्मल रोड्स पे ऐसे नहीं चलाता हूँ। काफी यंगस्टर्स बहुत फास्ट बाइक चलाते हैं बिना हेलमेट। तो मैंने एक यंगस्टर को साइड में लाके मैंने कहा कि तुम हेलमेट क्यों नहीं पहनते हो, लड़कियों को दिखाना चाहते हो, राइट? तो ने कहा हाँ। तो मैंने कहा तो इतना तेज क्यों चलाते हो, कौन देखेगा तुम्हें, राइट नाउ यू आर एन इडियट, आराम से चलाओ। और मैंने कहा कि जो कूल को

0: है ना, वो हेलमेट पहन के आराम से चलाओ, बिना हेलमेट के मत चलाओ।
1: कूल बनिए, फूल नहीं, हीरो ही पहनते हैं हेलमेट। बेहतर जिंदगी के लिए ये था हमारा छोटा सा प्रयास।
2: सखी सहेली कार्यक्रम में अब ले रहे हैं एक ब्रेक छोटा सा।

0: विविध भारती से यह है कार्यक्रम सखी सहेली।
1: अंतराल में जो गाना बज रहा था बाबूजी धीरे चलना, तो मुझे याद आई हम बात कर रहे थे सड़क सुरक्षा के बारे में। हमारे साथी का कहना है कि सड़क सुरक्षा के विषय पर मैं यही कहना चाहूंगा कि घर पर कोई आपका इंतजार कर रहा है। हेलमेट पहनना बोझ नहीं बल्कि सुरक्षा कवच है। आज की युवा पीढ़ी को रफ्तार से ज्यादा अपनी और दूसरों की जिंदगी की कीमत समझनी चाहिए। याद रखें, सड़क पर आपकी समझदारी ही आपका सबसे बड़ा सुरक्षा घेरा है। एक अन्य संदेश में हमारे एक साथी ने लिखा है कि बेहतर सड़क सुरक्षा बेहतर जीवन सुरक्षा। जीवन को बचाना है तो नियमों का पालन करना है, सड़क पर चलना है तो नियमों को जानना है। यातायात नियमों का पालन करें और सुरक्षित रहें। और क्यों ना ममता जी, एक गाना सुन लिया जाए।
0: गाने से पहले एक छोटी सी टिप्पणी है जो श्रोताओं तक पहुंचा दें। हमारे एक सुधीर श्रोता हैं जो नियमित रूप से विविध भारती सुनते हैं। इन्होंने लिखा है कि मोबाइल पर बात करते या ईयरफोन पर गाना सुनते हुए सड़क पार करने की वजह से कई बार लोगों की जान चली जाती है और ट्रेन से भी दुर्घटना होती है। कई बार लोग मोबाइल पर बात करते हुए ब्रिज का प्रयोग नहीं करते हैं और रेलवे क्रॉसिंग से क्रॉस करते हैं, तो इस वजह से भी कई बार दुर्घटनाएं घटती हैं। और एक श्रोता ने लिखा है, हमने वो बातें बताई हैं हालांकि, तो फिर भी इनका कमेंट हम शामिल कर रहे हैं। लिखा है इन्होंने कि सड़क सुरक्षा का अर्थ है सड़क का उपयोग करते समय दुर्घटनाओं और चोटों से बचाव के लिए यातायात नियमों का पालन करना, हेलमेट सीट बेल्ट पहनना, गति सीमा का पालन, नशा न करना, जेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग, ट्रैफिक सिग्नलों का सम्मान करना इसमें शामिल है। कई बार देखा है कि लोग देखते हैं ट्रैफिक पुलिस नहीं है तो चलो सिग्नल पार कर जाओ। तो हम अपने घर में अपने बच्चों के साथ जुमला इस्तेमाल करते हैं कि अगर मान लो ट्रैफिक पुलिस ने नहीं देखा
1: लेकिन कैमरा देख रहा है,
0: कैमरा देख रहा है, जब कैमरा नहीं था तो आपका आपका अपना आपकी नैतिकता देख रही है ना। अगर आप खुद को बताओ कि हम गलत कर रहे हैं तो अपने आप सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन।
1: और आजकल हर सिग्नल पर, ट्रैफिक सिग्नल पर एक तीसरी आंख यानी कि कैमरा लगा दिया गया है, तो आप ये ना सोचे कि कोई हवलदार नहीं है तो आपको किसी ने देखा नहीं है।
0: अब गाना सुनते हैं एक।

0: ये पतिता फिल्म का गाना था और सड़क सुरक्षा के लिए हमारे श्रोता बहुत सजग है भाई, बहुत सारी टिप्पणियां आ रही है। एक श्रोता ने लिखा है कि सड़क सुरक्षा एक महत्वपूर्ण पहलू है, लेकिन ये सच है कि हम उसे उतना महत्व तो नहीं देते। इस विषय पर हमें बच्चों को स्कूल और घर से ही शिक्षा के एक रूप में देना चाहिए। आजकल पढ़े लिखे नौजवान, खासतौर पर नवयुवतियाँ भी फैशन के चक्कर में बिना हेलमेट पहने दो पहिया वाहन चलाते देखे जाते हैं, उनका चालान भी होता है।
1: और नवयुवतियों की जब बात हुई है तो नवयुवतियाँ भी कई बार फैशन में, वो सिर्फ जिस तरह का हेलमेट पहनते हैं वो सिर्फ एक टोपी जैसा होता है जिसमें सुरक्षा का कोई नामो निशान नहीं होता। ये सिर्फ आपको हम बार बार बता रहे हैं कि चालान से बचने के लिए नहीं बल्कि अपनी जिंदगी को सुरक्षित रखने के लिए पहनना है। और ममता जी, आपने जब उल्टा चलने की बात बताई थी ना, इसी बात पर हमारी एक सखी ने कुछ कमेंट लिखा है। वो कहती हैं कि ममता जी आपने बिल्कुल सही कहा, उल्टा चलना कई बार ज्यादा सुरक्षित है। कुछ साल अब अपनी अपनी घटना बता रही हैं। कुछ साल पहले पुणे में इसी तरह हम कुछ सहेलियां लौट रहे थे। एक सहेली बाईं तरफ से दाहिनी तरफ जाने लगी तो मैंने मना किया। इस पर उसने कहा कि नहीं, दाहिने से ही चलो, कम से कम उधर से आते हुए वाहन दिखाई तो देते हैं, गाड़ी आ रही है तो हम पीछे हो सकते हैं। तब से मैं भी कई बार इस तरीके को अपनाने लगी हूँ।
0: लेकिन बस सजग रहना बहुत जरूरी है कि आप पता चला मोबाइल देखते देखते चल रहे हो, सामने से कोई वाहन चला रहा तेज स्पीड में, तो आपका बैलेंस तो बिगड़ेगा ही और जान को बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। तो ये आपकी सजगता पर डिपेंड करता है। मोबाइल देखते हुए, फोन पर बात करते हुए लोग चले जा रहे होते हैं। आजकल ये जो मोबाइल फोन है वो सब बहुत सारी मुसीबत की जड़ हो गई है।
1: हाँ, लेकिन अगर ये मोबाइल फोन आप कमेंट्स लिखने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो अच्छा है, तो हम कमेंट्स पढ़कर सुनाते हैं। हाँ। अगला जो हमारा विषय है जिस पर हमें बात करनी थी, यानी कि पुराने कपड़े जिन्हें आपने बहुत पहन लिया लेकिन अभी वो अच्छी अवस्था में है, आपको उनको कोई नया रीयूज करना है तो किस तरह करेंगे, इसके बारे में जो कमेंट्स हमें मिल रहे हैं। इस पर एक कमेंट बड़ा अच्छा आया है कि पुराने कपड़ों को थोड़ी मेहनत के साथ नया रूप दिया जा सकता है। पुराने सूट, साड़ी या जीन्स को नया डिजाइन देकर फैशनेबल बनाया जा सकता है। उन पर कढ़ाई, लेस, बटन, पैचवर्क, रंग बिरंगे कपड़ों को जोड़कर आकर्षक लुक दिया जा सकता है।

0: तो चंचल जी, इससे गाने से पहले आप पुराने कपड़ों को नया लुक किस तरह से देना चाहिए बता रहे थे, और हमारी सखियों की बहुत सारी टिप्पणियां भी आपने सिखाई हमें, तो याद है बचपन में कि पुराने कपड़ों की बहुत सारी चीजें तैयार की जाती थी, यहाँ तक कि टेबल क्लॉथ बना दिया जाता था और कुशन कवर, तो बताया ही हमारी सखियों ने। और हमें याद है कि हमारी माँ पुराने कपड़ों से बहुत सारी चीजें और डिजाइनदार बनाती थी, सिलाई मशीन होती थी घर में, सिलाई मशीन का कवर कपड़ों से तैयार किया जाता था, और पैरपोश उस समय बाजार में बहुत कम मिलता था हमें, तो जहाँ तक याद है तो कपड़ों से ही तैयार किया जाता था, और बहुत सारे तकिए के कवर सुंदर डिजाइनदार बना दिए जाते थे, झालरदार झालर बहुत सुंदर लगता था।
1: कई बार अलमारियां जो घर में होती थी, जैसे अब दरवाजे वाली अलमारियां होती हैं, जब पहले नहीं होते थे ऐसे आले होते थे, खुले होते थे, तो उन पर भी पर्दा लगाने के लिए जो घर के पुराने कपड़े हैं उन्हीं का इस्तेमाल किया जाता था।
0: और एक बात और, जो बड़ा सा रेडियो हुआ करता था टेबल पर, एक परिवार के सदस्य की तरह बैठा रहता था, मर्फी वाला रेडियो, तो उसके लिए भी कवर बनाया जाता था, और वो बाकायदा डिजाइनदार कवर होता था कि वो स्पीकर दिखाई पड़े और कवर

0: से पूरा रेडियो ढका रहे ताकि उसमें डस्ट ना जाए।
1: और कई बार होता है ना कि कोई बड़े चाव से हमने साड़ी खरीदी, कुर्ता खरीदा या कोई भी जीन्स खरीदी, उस पर कुछ ऐसी जगह पे वो अटक गया जिससे हल्की सी खरोंच लग गई या कुछ फट गया वो उस जगह से, तो हमें लगता है कि अब दोबारा नहीं पहनेंगे, मन में एक खटास सी आ जाती है। लेकिन कुछ दिन बाद अलमारी में जब हम फिर से उसी कपड़े को देखते हैं तो मन करता है कि चलो कुछ नया करके इसको पहन लिया जाए। तो इस तरह से जो ये चीज़ें हमारी अन्य सखियों ने लिखी है ना कि पैच वर्क लगा कर, कुछ कढ़ाई बना कर या उसको कुछ काट छाट कर छोटा बड़ा करके, इस तरह से कई कपड़ों को नया लुक हम दे सकते हैं। और अगर वो दाग वहाँ पर कोई आ गया है तो उन्हें डाई करके, होते ना कई बार हमने मशीन में सारे कपड़े एक साथ में डाल दिए और कपड़े नए के नहीं दाग लगने से खराब हो जाते हैं, तो उनको किस तरह से अलग तरह से डाई किया जाए या रंग बिरंगे जो छपाई की जाती है, इस तरह से उस कपड़े को हम नया लुक देकर फिर से पहन सकते
0: वैसे हैं। जो डिजाइनदार दुपट्टे होते हैं चुन्नी, उसके तो कुर्ते बनाए हैं आपने भी और हमने भी है ना, और तो वो बहुत सुंदर बनता है।
1: बहुत सारी जो कामकाजी महिलाएं हैं जिनके पास इतना समय नहीं होता कि वो रोज साड़ी पहन सकें, और जब वो अपनी वार्डरोब को खोलती हैं तो लगता है कि हाय इतनी सारी साड़ियां हैं सभी पसंदीदा हैं, तो उनका
0: ये आप अपने दिल की बात कर रही हैं ना?
1: उनका इस्तेमाल
0: हम सबके दिल की बात है।
1: हम कई बार गाउन बना लेते हैं, कई बार उनसे प्लाजो सेट बना लेते हैं, तो और आजकल आप जाइए डिजाइनर्स के पास में तो वो इतने सारे उनके रीयूज बता देते हैं, और जिन कपड़ों को हम बहुत पहन चुके होते हैं तो उनसे तो आजकल इतनी तरह के बैग बनने लगे हैं, कुशन बनने लगे हैं, तो ये जो रीयूज है ना ये बहुत ज्यादा।
0: और बात आपने साड़ियों की निकाली है तो साड़ियां तो ऐसे ललचाती हैं तो हम उसको रखे रहते हैं कि अब फला मौके पर फला साड़ी पहनेंगे, और उन साड़ियों को कई बार रखे रखे उसमें क्या कहते हैं कीड़े भी लग जाते हैं, खासतौर से सिल्क की साड़ियों में। तो अगर आप टेलर के पास ले जाएं और ये कहें कि इसका एक डिजाइनदार जो आजकल बहुत चलन में था पिछले दिनों वेस्टर्न गाउन, जिसे कि आप कहीं बाहर फंक्शन में जाते थे पार्टी में और वो जब खरीदने जाते थे तो महंगे महंगे मिलते थे, तो साड़ियों का डिजाइनदार आप वेस्टर्न गाउन बना सकते हैं।
1: उनकी कलियां अलग अलग कटवा कर, तो जो खराब हिस्सा है अनारकली में कट जाता है, तो छोटी छोटी कलियां कटवा कर उनकी स्कर्ट बन जाती हैं, उनके अनारकली ड्रेस बन जाते हैं, या आप स्कर्ट बना लीजिए, लहंगा बना लीजिए, ऊपर से कुछ कुर्ती या टॉप नया ले लीजिए, तो वो बहुत सारे नए लुक हैं। इस तरह से जो हमारे सुनने वाले हैं उन्होंने भी कुछ आइडियाज हमें दिए हैं, तो पुराने कपड़ों को नया लुक देने के लिए आप ब्लीचिंग या उनको डाई करना, कढ़ाई, पैचवर्क का उपयोग कर सकते हैं, टी शर्ट को क्रॉप टॉप में बदला जा सकता है, जीन्स को डिस्ट्रेट यानी कि फाड़कर स्टाइलिश बनाया जा सकता है, शर्ट पर बटन या लेस लगाकर उनको नया रूप दिया जा सकता है, डाई का उपयोग करके फीके पड़ चुके कपड़ों को फिर से चमकीला बनाया जा सकता है। इसी तरह से एक अन्य संदेश में हमारे साथी ने जो हमें लिखकर बताया है कि कुछ रचनात्मक उपाय उन्होंने बताए हैं कि डाई से नया अंदाज किस तरह से दिया जा सकता है, पेंटिंग या कढ़ाई करके किसी भी शर्ट, टी शर्ट या साधारण से कुर्ते को भी फैब्रिक पेंटिंग उस पर लगा दीजिए, हाथ से कढ़ाई कर दीजिए तो एक फूल पत्ती बना देंगे तो नया डिजाइनर लुक आ जाता है। इसी तरह से जीन्स का कई तरीके से इस्तेमाल है, शॉर्ट्स बना सकते हैं, बैग या पाउच बना सकते हैं, कुशन या मोबाइल के स्टैंड बना सकते हैं, इस तरह से लैच और पैच वर्क कर सकते हैं, मिक्स एंड मैच कर सकते हैं, फिटिंग में बदलाव कर सकते हैं, कुछ एक्सेसरीज जोड़ी जा सकती हैं, और आगे इन्होंने संक्षेप में लिखा है कि इससे पैसों की बचत होती है, पर्यावरण संरक्षण होता है, रचनात्मकता का विकास होता है और यूनिक व्यक्तिगत फैशन का स्टाइल बनता है।
0: छोटे बच्चों के लिए बहुत सारे डिजाइनदार कपड़े बन सकते हैं, फ्रॉक है, टी शर्ट है, ये बन सकते हैं। और अब एक गाना सुन सकते हैं।

0: कपड़ों से और क्या क्या बन सकता है चंचल?
1: पुराने जो स्वेटर होते हैं ना, उनका भी हम एक नया लुक दे सकते हैं, उनसे टोपी बन सकती है, और जो पुलोवर होते हैं उनसे हम कार्डिगन बना सकते हैं।
0: लेकिन ऊन कट जाता है बीच से, फिर उसको कैसे करें?
1: अरे मैं आपको एक आइडिया बताती हूँ।
0: अच्छा।
1: एक बार हुआ क्या कि ये तो उन दिनों की बात है जब मैं जयपुर में रहा करती थी और वहाँ ठंड बहुत होती है, तो पूरा तैयार हो गई, हेयरसेल वगैरह अच्छे से बना लिया, बाद में आता है कि स्वेटर नहीं पहना है। अब स्वेटर पहनने में रखने लगा कि भाई ऊपर से जब गले में से हम डालेंगे सर पे तो सारा हेयरसेल ख़राब हो जाता है, और ये समस्या और भी लोगों को शायद होती होगी। तो उस दिन तो फिर मुझे दोबारा हेयरसेल बनाना पड़ा, लेकिन इससे बचने के लिए मैंने परमानेंटली उस स्वेटर को काट दिया आगे से। और फिर वहां पर मम्मी ने, क्योंकि मम्मी सिलाई कढ़ाई किया करती थी, तो वहां पर मेरी माता जी ने एक जिप लगा दी और बड़ा सुंदर सा वो कार्डिगन बन गया। तो ये भी एक नया तरीका इस्तेमाल है। अगर आपका कोई पूरा ऐसा स्वेटर है जो आपको गले में से सर पे से डालकर पहनना पड़ता है, पूरा बंद है, और ये समस्या कभी आपके साथ भी हुई हो, तो आप इसे जरूर इस्तेमाल कर सकते हैं कि उसको आगे से काट लीजिए, और वहां पट्टी लग जाती है तो उसको मोड़ दिया जाता है, तो ऊन के धागे निकलने का डर भी नहीं रहता, और जिप लगाने के बाद में उसे खोलकर पहनने में बड़ी आसानी हो जाती है। लेकिन अगर आप बटन लगाएंगे तो शायद वो ऊन के धागे निकलने का डर रहता है, इसलिए जिप लगाना ज्यादा सुरक्षित।
0: और एक बड़े काम की चीज है कि पुराने कपड़ों को, खासतौर से जो छींटदार शर्टें होती है कॉटन की मोटी, तो उसके सुंदर डिजाइनदार बैग या झोले बनाए जा सकते हैं, क्योंकि वो आपको प्लास्टिक की थैलियाँ लेनी जानी है, तो झोले तो बहुत सारे घर में चाहिए होते हैं, तो वो डिजाइनदार बैग बन सकता है।
1: और इस तरह से ममता जी हम प्लास्टिक के उपयोग को रोक भी सकते हैं। आजकल ज्यादातर कागज के थैलियों में सामान आने लगा है, तो कई बार लटका कर आपको बहुत देर तक तो कोई भारी वजनदार सामान लाना है, तो वो कागज की थैलियां भी उस वजन को झेल नहीं पाती हैं, इसलिए बेहतर है कि आप घर पर बना हुआ कपड़े का बना हुआ कोई थैला लेकर जाएं।
0: और थैले से जब सब्जियां लेकर आते हैं ना, तो कहाँ रखते हैं? फ्रिज में रखते हैं। उसकी साफ सफाई देख रेख कैसे करते हैं, जरा बताइए।
1: हाँ भाई, ये तो एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। इसके बारे में हमारे साथियों ने भी हमें लिखकर भेजा है कि ये जो बहुत महत्वपूर्ण उपकरण है हमारे रसोई घर में होता है, जो कि होता है खाने को सुरक्षित रखने के लिए और ताजा रखने के लिए, लेकिन कोई ऐसी चीज अगर रख दी जो खाने को ताजा रखने की बजाय बदबूदार बना दे, या कई चीजें बहुत दिन तक रखी हुई हैं तो भी वो एक सड़न या बदबू पैदा करने लगती हैं, तो इससे हमारी सेहत को भी नुकसान पहुंचता है। फ्रिज से जो दुर्गंध आती है उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं जिन्हें हम कई बार नजरअंदाज करते हैं, फिर बैक्टीरिया और फफूंद पनपने लगती है। तो इसके लिए सबसे पहले अगर इस गंध से आपको बचना है तो बेकिंग सोडा का जो घोल है उससे आप साफ कर सकते हैं। ये हमारे साथियों ने ये टिप हमें बताई।
0: कटा हुआ नींबू का टुकड़ा रख देना चाहिए, उससे भी उसकी जो,
1: ये जो आपने स्मेल होती है चली जाती है। ये टिप भी हमारे साथियों ने हम तक

0: लिखकर पहुंचाई है। अगर बेकिंग सोडे के घोल से आप पहुंच नहीं सकते हैं तो एक खुले एक बर्तन में कटोरी में आप बेकिंग सोडा रख दीजिए तो वो भी गंध को सोख लेता है। और अगर ये बदबू बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है तो सफ़ेद सिरका जो होता है उसे पानी में घोलकर एक मिश्रण तैयार कीजिए और इससे पोछा लगा दीजिए। और कॉफ़ी के जो दाने हैं उनको भी रखा जा सकता है, ये भी हमारे एक श्रोता की लिखी हुई टिप्पणी है। और नींबू की तो आपने बताई दी है। इसके बाद जो सक्रिय कोयला जिसे एक्टिव चारकोल कहते हैं वो भी गंध सोखने में शक्तिशाली होता है, तो उसे भी रखकर आप फ्रिज
1: नमी सोख लेता है। और अब चलते चलते सुनते हैं ये गाना, फिल्म है भरोसा, लता मंगेशकर की आवाज़।

0: भरोसा फिल्म का ये सुरीला सा गीत था। जी तो चाह रहा है कि पूरा गाना सुनवाए, लेकिन घड़ी की ओर देख रहे हैं तो अब वक्त नहीं कि पूरा गाना, कुछ एक अंतरा बचा रह गया, फिर कभी। अब बस अब श्रोताओं से इजाज़त लेने की बारी है, तो श्रोताओं से लेते हैं इजाज़त। आप सभी को ममता सिंह
1: और चंचल वर्मा का
0: नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

0: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आपका अपना प्रिय रेडियो स्टेशन विविध भारती। कहते हैं वक्त के साथ चलना ही जिंदगी की पहचान है। जो ठहर गया वो किस्सों में, जो बढ़ गया वही नई उड़ान है। पुराने कार्यक्रमों की अपनी एक अलग ही खुशबू होती है, यादों से भरी, अपनापन लिए हुए, और नए कार्यक्रम अपने साथ लाते हैं ताजगी, नए विचार और एक नई ऊर्जा। जिंदगी की तरह रेडियो भी हमेशा गतिमान रहता है, क्योंकि बदलाव ही वो धड़कन है जो हर चीज को जीवंत बनाए रखती है। इन्हीं खूबसूरत बदलावों के साथ हमारे रेडियो पर कुछ नए कार्यक्रमों की शुरुआत हुई है, वहीं कुछ पसंदीदा कार्यक्रम अब नए समय पर आपसे मुलाकात कर रहे हैं। तो आज के इस खास फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश में हम जानना चाहेंगे आपकी राय, क्या ये बदलाव आपको पसंद आ रहे हैं, कौन सा नया कार्यक्रम दिल को छू रहा है और बदले हुए समय आपकी दिनचर्या में कितने फिट बैठ रहे हैं। तो आइए अपनी बात खुलकर कहिए अपनी आज की हेलो फरमाइश कार्यक्रम की साथी यानी कि मैं नेहा आगरकर देसाई के साथ, क्योंकि आपकी आवाज ही हमारे हर कार्यक्रम की असली जान है। और आइए अब देखते हैं पहला कॉल किसका है। हेलो फरमाइश
1: जी। नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन जनाब बात कर रहे हैं?
1: जी हम भोपाल से बोल रहे हैं, राम गोपाल मालवीय।
0: भोपाल से गोपाल जी? जी गोपाल जी, बताइए आप क्या करते हैं?
1: हाँ, हमारा ये लॉन्ड्री का काम है, ये काम वाम करते हैं और एफएम सुनते ही रहते हैं। हम तो सुबह से लेके शाम तक आपके प्रोग्राम विविध भारती के।
0: अच्छा, तो आप बिल्कुल रेगुलर श्रोता हैं?
1: हाँ जी जी जी, बिल्कुल सुनते हैं, लेकिन फोन पहली बार लगाया है।
0: ओहो क्या बात है, पहली बार आपका फोन लग रहा है, खुशी जरूर हो रही होगी।
1: हाँ जी, बहुत खुशी हो रही है।
0: अच्छा ये बताइए कि विविध भारती के कुछ कार्यक्रमों में अब बदलाव आए हैं, तो आप उन बदलावों के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कैसे लगे आपको ये बदलाव?
1: बिल्कुल अच्छे लगे हैं। जो वो अपना मन चाहेगी, जो आपने पत्रों पे आधारित प्रोग्राम शुरू किए हैं संडे और सैटरडे को
0: जी
1: 3 बजे से, वो प्रोग्राम अच्छे, और हमने 2 पत्र डाल दिए, एक ना एक तो शामिल हो ही जाएंगे हमारे।
0: ओहो हो, हमें भी इंतजार है आपके खतों का और आपकी बातों का। तो अच्छा, मतलब इस बार आपका कॉल भी लग गया है और अब आपको उम्मीद है कि पत्र भी शामिल हो ही जाएगा।
1: हाँ जी जी,
0: यानी चित भी आपकी और पट भी आपकी।
1: हाँ जी बिल्कुल, एक छोटा सा बदलाव आपने किया है, ठीक है, लेकिन मंगलवार को वो जो नया प्रोग्राम शुरू होने वाला है, तो ये हेलो फरमाइश एक दिन आएगा, सिर्फ गुरुवार।
0: जी एक ही दिन आएगा।
1: अच्छा,
0: और आप उसको रिपीट में भी सुन सकते हैं अगले दिन, जैसे गुरुवार को आप नया प्रोग्राम सुनेंगे और शुक्रवार को वही कार्यक्रम सुबह 10 बजे सुन सकेंगे, तो रिपीट में भी आप इसे सुन सकेंगे। जरा अपने दिल को थाम के रखिए, क्योंकि हम नए कार्यक्रम आपसे परिचित करवाने वाले हैं, तो और हमें बिल्कुल उम्मीद है कि इन कार्यक्रमों के साथ भी आपको उतना ही मजा आएगा जितना हेलो फरमाइश के साथ आ रहा है।
1: जी जी।
0: चलिए ये बताइए गोपाल जी, कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे आप?
1: संगीत फिल्म का एक गाना है इसमें, सुनो ऐ हसीनो।
0: सुनो ऐ हसीनो संगीत फिल्म से, और फिलहाल आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

Let's let

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार मैम।
0: नमस्कार, कौन जनाब बात कर रहे हैं?
1: ग्राम नंगला काचियान पोस्ट औरंगाबाद जिला कासगंज उत्तर प्रदेश से रूप सिंह साथी बात कर रहा हूँ। और मैम कैसे हैं?
0: जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए आप क्या करते हैं, कैसे हैं?
1: बढ़िया है, खेती बाड़ी करता हूँ और आकाशवाणी परिवार में सभी लोग कैसे हैं?
0: जी बिल्कुल, आपकी दुआ से सब सही है, सब सलामत है।
1: जी सर, सभी को रहना भी चाहिए, स्वस्थ रहना चाहिए, मस्त रहना चाहिए और आपके कार्यक्रम जितने भी आते हैं वो सुनना चाहिए, जिससे कि वैज्ञानिक भरे हुए भी हैं और मनोरंजन भी है।
0: जी
1: भी है।
0: क्या बात है, इतनी सारी तारीफें आपने की हैं, अब मैं कुछ बातें आपसे पूछ लूं? देखिए आपकी बातों से तो ये समझ आ रहा है कि आप हमारे कार्यक्रम बिल्कुल ध्यान से सुनते हैं। अब ये बताइए कि जो नए बदलाव हुए हैं वो आपको कैसे लग रहे हैं?
1: बढ़िया जी, नए नए प्रोग्राम जब चलते हैं तो अच्छा भी रहता है, क्योंकि समय का परिवर्तन जरूरी होता है ना।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। तो अभी जो नए कार्यक्रम शुरू हुए हैं या फिर जिन कार्यक्रमों के बदलाव हुए हैं वो आपको कैसे लग रहे हैं? आपके जिन कार्यक्रमों के समय में बदलाव हुआ है वो आपके टाइम के हिसाब से फिट हो रहे हैं?
1: जी जी बिल्कुल।
0: क्या बात है, तो खेती बाड़ी करते हुए आप हमारे कार्यक्रम सुना करते हैं?
1: जी जी, कहीं पर भी सुन सकते हैं, खेत पर भी, घर पर भी, क्योंकि अब मोबाइल ऐप पर जो चालू हुआ है उसके माध्यम से कहीं भी सुना जा सकता है।
0: जी बिल्कुल, न्यूज ऑन AIR ऐप जो है उसके जरिए फोन पर भी सुना जा सकता है। चलिए बताइए कौन सा गीत आज आप सुनना चाहेंगे?
1: फिल्म है गिरफ्तार, धूप में निकला न करो रूप की रानी।
0: गर्मी के हिसाब से गीत को पसंद किया है क्या आपने?
1: बिल्कुल, इसी की वजह से सुनना चाहता हूँ। जैसे मौसम चेंज भी हो रहा है ना, इसलिए, और थोड़ा पानी वगैरह साथ लेकर रखें।
0: ये तो बिल्कुल सही है। मेरा तो ये मानना है कि सिर्फ रूप की रानी क्यों, बल्कि रूप के राजा को भी बाहर नहीं निकलना चाहिए। यानी कि इन धूप के, कड़ी गर्मी के दिनों में किसी को भी बिना वजह या फिर जब तक जरूरी ना हो बाहर नहीं निकलना चाहिए, है ना?
1: जी
0: बिल्कुल। चलिए आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: मधुशाला में ताला न पड़ जाए।
1: हेलो फरमाइश
2: जी, हमारा नाम है चंद्र प्रकाश पात्र
1: जी। कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
2: रामपुर ग्राम पालीगंज पटना बिहार।
1: क्या बात। तो चंद्र प्रकाश जी बताइए, क्या करते हैं आप?
2: हम तो अभी अप्लाई कर रहे हैं ऑफिसर के ड्यूटी में।
1: ऑफिसर के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, किस क्षेत्र में?
2: जी RBI के। हम CFC रंगराजन, हमारा रुपया है गवर्नर, तो उसी में हम अप्लाई कर रहे हैं। तो अभी ज्वाइन न किए हैं, सामान वन मंगा लिए हैं और लेंगे आज कल।
1: अच्छा, तो मतलब आपका सिलेक्शन हो गया है?
2: जी
1: वाह। अरे वाह, क्या बात है। विविध भारती परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।
2: जी
1: चलिए, ये बताइए आज कौन सा गाना आप सुनना चाहेंगे?
2: जी हमको सुनना है अखियों की झरोखों से फिल्म के हेमलता की आवाज़।
1: चलिए चंद्र प्रकाश जी, आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो, फरमाइश
1: जी। नमस्ते मैम, मेरा नाम रामेश्वर एकवार है। मैं ग्राम भगवता जिला छतरपुर मध्य प्रदेश से बात कर रहा हूँ। मैडम जी,
0: रामेश्वर जी बताइए, क्या करते हैं आप?
1: खेती का काम निपट गया है।
0: खेती का काम हो चुका है तो फिर अब क्या विचार है आपका आगे?
1: अषाढ़ आएगा ना मैडम, जून के महीने में, तो उसमें बुआई होगी अगली फसल की।
0: कौन सी फसलों की बुआई करेंगे आप?
1: मैडम जी, ये उड़दा और मूंग।
0: क्या बात है, तो इसकी पूर्व तैयारी भी कुछ लगती होगी?
1: अभी तो ऐसे खेत खाली पड़े हैं, अभी नहीं है कुछ नहीं।
0: तो फिर अभी आप बिल्कुल फ्री हैं विविध भारती के सारे कार्यक्रम सुनने के लिए?
1: जी मैडम, मैं सुनता हूँ सभी। जो दोपहर में आता है कमेंट वाला, वो भी सुनते हैं, और छाया गीत सुनते हैं, हवा महल भी सुनते हैं।
0: तो अब जो कमेंट वाला आता है उसमें कुछ बदलाव हुए हैं? क्या बदलाव है जानते हैं आप?
1: जी मैडम, पहले गीतमाला था, अब सुरीला सफर हो गया।
0: पर उसके क्या बदलाव आए हैं कार्यक्रम के अंतर्गत? ये तो आपने नाम का अंतर बताया, कार्यक्रम में क्या बदलाव आए हैं वो बताइए।
1: मैडम जी, कार्यक्रम में तो काफी बदलाव है, थोड़ी जानकारी मुझे कम है।
0: चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, हम आपको एक बार बता देते हैं। जैसे अभी मैंने आपसे ये पहेली पूछी, बस इसी तरह की एक इबारत यानी कि एक टेक्स्ट उस कार्यक्रम में आता है, और उस टेक्स्ट या इबारत में कुछ शब्द ऐसे शामिल होते हैं जिनके ऊपर कुछ गीत बजने वाले होते हैं, उन शब्दों से शुरू होने वाले, या फिर उन शब्दों को लिए हुए कोई गीत, उस गीत के बीच में कोई शब्द आ सकता है। तो ऐसे गीतों की वो इबारत होती है और आपको पहचानना होता है कि कौन सा गीत बजने वाला है।
1: जी मैडम।

0: जी, तो ये तो था यूं ही ताकि आपको भी और हमारे श्रोताओं को भी पता चल जाए, और हम तो जानना चाहते थे कि आपने उस कार्यक्रम को कितना समझा है। चलिए कोई बात नहीं, अभी कार्यक्रम नया नया है, 2-3 दिन ही हुए हैं, तो धीरे धीरे आपको भी पता चल जाएगा और फिर आपके भी कमेंट्स उसमें आएंगे, ऐसी हम आशा करते हैं।
1: जी मैडम।
0: अच्छा ये बताइए रामेश्वर जी, कौन सा गाना आज आप सुनना चाहेंगे?
1: मैडम जी, पड़ोसन फिल्म का है, चतुर करके सिंगार।
0: तो चलिए रामेश्वर जी, आपको सुनवा देते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

आज लगाए चोटे कर दूंगा। तजम तकजम तकनम तकदम तक।

0: हेलो, फरमाइश।
1: मैं राजकुमार यादव बोल रहा हूँ, बड़ा गाँव जेलागोना मध्य प्रदेश से।
0: क्या बात है राजकुमार जी, क्या करते हैं आप?
1: किसान हूँ, खेती बाड़ी में व्यवसाय है मेरा।
0: आपकी पसंद का काम है या फिर आपके यहाँ पूर्वज जो आपके पिताजी होंगे, दादाजी होंगे, तो ऐसे करते आ रहे हैं इसलिए कर रहे हैं?
1: जी मैम, जो हमारा बचपन से ही काम है खेती बाड़ी का।
0: अच्छा अच्छा,
1: पहले से ही चलती आ रही है खेती बाड़ी। किसान ही है हमारे गांव में, सब किसान ही है।
0: इसके अलावा और क्या शौक है आपके?
1: हमारे तो विविध भारती रेडियो सुनना, और थोड़े बहुत समय मिल जाए तो खेती बाड़ी में हाथ बटा लेते हैं।
0: क्या बात है, तो जब आपका शौक है विविध भारती सुनना, तो चलिए आपसे कुछ सवाल जवाब कर लिए जाए।
1: जी जी मैम।
0: तो बताइए, विविध भारती में जो कार्यक्रमों में बदलाव हुए हैं वो आपको कैसे लग रहे हैं?
1: मुझे तो बहुत अच्छे लग रहे हैं और पसंद भी आ रहे हैं। मैम आपकी आवाज भी हम सुनते रहते हैं प्रोग्राम में, जो हेलो फरमाइश है, साकी सहेली है।
0: पसंद आता है आपको कार्यक्रम?
1: जी जी मैम आता है।
0: क्या बात है, चलिए ये बताइए राजकुमार जी, कौन सा गीत आप सुनना पसंद करेंगे?
1: आज मुझे कच्चे धागे फिल्म का गीत सुनना चाहता हूँ मैम। उसमें एक गीत है लता मंगेशकर और कुमार सानू की आवाज में, दिल का

मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। शाम के 4:30 हुए हैं। हम उपस्थित हैं आज की दूसरी सभा के कार्यक्रमों के साथ। सभा के आरंभ में आइए सुनते हैं युवाओं का मन पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी।

0: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं आपका रेडियो दोस्त प्रितेश
1: और मैं हूं मोहम्मद साजिद जिया।
0: आकाशवाणी के सबसे लोकप्रिय, सबसे चहेते और सबसे दिलकश कार्यक्रम युववाणी में आपका दिल से स्वागत है।
1: दोस्तों, आप सबका साथ, आपका प्यार और आपकी मुस्कुराहट, यही तो है जो हमें हर बार और भी ज्यादा ऊर्जा के साथ आपके सामने लाता है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने।
1: सच कहूं तो दोस्तों, युवानी सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं, ये युवाओं का भरोसा है।
0: बिल्कुल, और हमारे श्रोताओं का भी। अब हमारे श्रोताओं ने जो ट्यून ऑन किया होगा और वॉल्यूम बढ़ा के हमारी आवाजों को सुनने बैठे होंगे, तो चलिए दोस्तों, और आज भी हम आपके लिए लेकर आए हैं मजेदार बातें, जरूरी जानकारियां और दिल खुश कर देने वाली धुनें।
1: तो दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हम प्रेरक पंक्ति से करेंगे जो आपके हौसलों को और भी बुलंद करेगा। फिर उसके बाद आज की बात में हम चर्चा करेंगे विश्व एथलेटिक्स दिवस पर। फिर उसके बाद चर्चा होगी रविंद्रनाथ टैगोर जी की जयंती के बारे में।
0: बिल्कुल,
1: आपको बताएंगे स्पोर्ट्स अपडेट और कुछ मजेदार रोचक तथ्य जिसे सुनकर आपके ज्ञान में
0: वृद्धि होगी। और बीच बीच में शाजिद, हम श्रोताओं को सुनाते रहेंगे प्यारे प्यारे गाने जिनसे उन्हें बोरियत फील ना हो, ऐसा ना लगे कि ये दोनों बैठ गए हैं तो सिर्फ ज्ञान ही दिए जा रहे हैं। नहीं, बीच बीच में थोड़े प्यारे प्यारे गाने भी चलते रहेंगे,
1: दिल खुश कर देने वाले। तो चलिए दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारे से
0: गीत के साथ।

0: तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फुल्ली फालतू, फिल्म फालतू से, और आवाज़ थी मिक्का सिंह की। जी हाँ, गाना तो बहुत दिलचस्प था,
1: बिल्कुल
0: और एनर्जेटिक। तो श्रोताओं, आज की प्रेरक पंक्ति की शुरुआत करते हैं नई सोच नई उड़ान के साथ। जो हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस ताकत की जो हर इंसान के अंदर होती है, लेकिन अब अक्सर लोग उसे पहचान नहीं पाते, क्यों जया?
1: जी जी हाँ दोस्तों, ज़िंदगी में मुश्किलें सबके हिस्से में आती है। कभी हालात साथ नहीं देते, कभी लोग साथ छोड़ देते हैं, और हाँ, कभी कभी तो खुद का आत्मविश्वास भी कमज़ोर पड़ने लगता है।
0: ये बात आपने बिल्कुल सही कही, लेकिन याद रखिए श्रोताओं, सूरज हर शाम ढलता है ताकि अगली सुबह फिर से चमक सके।
1: जी
0: तो श्रोताओं, आज की पहली प्रेरक पंक्ति आपके लिए, हारना बुरा नहीं है, हार मान लेना बुरा है, क्यों?
1: जी हाँ दोस्तों, असफलता सिर्फ एक पड़ाव है, मंजिल नहीं।
0: बिल्कुल,
1: जो लोग गिरकर फिर उठते हैं वही इतिहास रचते हैं प्रीतेश।
0: एकदम सही कहा आपने, मेरी मन की बातों को छीन लिया आपने। एक छोटा सा उदाहरण, जब बच्चा चलना सीखता है, शाजी जैसा कि आपने देखा होगा, हमारे पूरे श्रोताओं ने देखा होगा कि जब बच्चा चलना सीखता है तो कितनी बार गिरता है, लेकिन क्या वह चलना छोड़ देता है?
1: नहीं,
0: बिल्कुल नहीं, वह बार बार उठता है और एक दिन दौड़ने लगता है। ठीक वैसे ही जिंदगी भी हमें गिराकर मजबूत बनाती है ताकि हम जो है दौड़ना सीख सके। मतलब आने वाले समय हमें बहुत बड़ी जिम्मेदारियां मिलेगी, तो हम उसे कैसे सारी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे उसे सही तरीके से ये कर सकते हैं, इसीलिए ज़िंदगी हमें पहले हराती है उसके बाद जिताती है।
1: जी जी बिल्कुल। और कभी अपने सपनों को दूसरों की राय से छोटा मत होने दीजिए,
0: बिल्कुल सही कहा,
1: क्योंकि दुनिया वही कहती है जो उसे दिखता है, लेकिन आप वो जानते हैं जो आपके अंदर जल रहा है।
0: बिल्कुल
1: दोस्तों, कहते हैं ना कि अगर मेहनत आदत बन जाए तो सफलता मुकद्दर बन जाती है।
0: वाह, क्या बात कही है आपने शाजिद, कि अगर मेहनत आदत बन जाए तो सफलता
1: मुकद्दर बन जाती है।
0: और आज अगर रास्ता कठिन है तो समझ लीजिए कि मंजिल शानदार होने वाली है।
1: क्या बात है।
0: कई लोग कहते हैं ना कि मेरे पास साधन नहीं है, मेरे पास समय नहीं रहता, मेरे पास कोई नहीं है। बताइए, ये एक नहीं होता है कि आप बहाना बना रहे कि अरे मेरे पास तो ये नहीं है, मेरे पास तो वो नहीं है, मेरे पास तो ये नहीं है।
1: लेकिन दोस्तों, इतिहास गवाह है,
0: बिल्कुल,
1: जिनके इरादे मजबूत होते हैं उनके लिए रास्ते खुद बन जाते हैं। जिसे खुद पर भरोसा होता है, दुनिया भी उसी पर भरोसा करने लगती है।
0: बिल्कुल सही कहा साजिद आपने। और यही नहीं, अगर हम देखें कि धीमी गति से, आपने देखा होगा कि धीमी गति से चलना गलत नहीं है, बस रुकना नहीं चाहिए।
1: जी हाँ,
0: याद रखिए, पेड़ भी धीरे धीरे बढ़ता है।
1: जी हाँ।
0: लेकिन जब बढ़ता है तो जो छाया देता है वो सबको देता है।
1: बिल्कुल। तो दोस्तों, आज की ये प्रेरक पंक्ति सिर्फ सुनने के लिए नहीं, अपनी जिंदगी में उतारने के लिए है।
0: बिल्कुल,
1: कल क्या हुआ उसे भूल जाइए।

0: आज क्या कर सकते हैं उस पर ध्यान दीजिए,
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि बीता हुआ समय वापस नहीं आता, लेकिन आने वाला समय अभी आपके हाथ में
1: बिल्कुल
0: है।
1: सही कहा।
0: तो उठिए, खुद पर भरोसा रखिए और अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाइए और सुनिए एक प्यारा सा सॉन्ग।
1: सुनते हैं फिर
0: जी।

0: तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे किताबें बहुत सी पढ़ी होगी तुमने फिल्म बाजीगर से, और आवाज़ थी आशा भोसले एंड विनोद राठौड़ की। किताबें तो बहुत सी पढ़ते हैं, लेकिन गाने ने भी बता दिया कि चेहरा पढ़ना सीखिए
1: जी।
0: तो शाजिद, पता है आज 7 मई है
1: जी,
0: और मेरा मन कहीं ना कहीं आज सुबह से ही कर रहा था कि थोड़ा दौड़ूं भागूं, क्रिकेट खेलना, बहुत सारी चीज़ें, पता नहीं क्यों
1: जी।
0: तो आज पता चला कि आज क्या है, आज विश्व एथलीट दिवस है। मतलब यहाँ से यहाँ तक, मतलब मन कर रहा था सुबह सुबह के दौड़ने भागने का, तो थोड़ा एक्सरसाइज तो कर लिया, लेकिन आज पता चला कि एथलीट्स दिवस है। इस दिन की शुरुआत बच्चों और युवाओं में खेलों के प्रति रुचि जगाने के लिए की गई थी
1: जी।
0: और वही नहीं, एथलेटिक्स केवल दौड़ना या कूदना नहीं जैसे मैंने आज सुबह किया है, बल्कि यह इंसानी इच्छा शक्ति और शारीरिक क्षमता की परीक्षा है कि आप कितना दौड़ सकते हैं, आपकी मतलब कितना है
1: जी बिल्कुल प्रीतेश, एथलीट्स को खेलों की जननी कहा जाता है।
0: बिल्कुल,
1: दुनिया का शायद ही कोई ऐसा खेल हो जिसमें दौड़ने, कूदने या फेंकने की जरूरत ना हो। आज हम चर्चा करेंगे कि कैसे मैदान का यह अनुशासन एक आम इंसान को चैंपियन बनाता है।
0: बिल्कुल साजिद, और एथलेटिक्स का इतिहास प्राचीन यूनान के ओलंपिक से जुड़ा है। अगर हम देखें तो उस समय योद्धा अपनी ताकत और गति का प्रदर्शन करते थे, मतलब करने के लिए, जैसे 1896 में जब आधुनिक ओलंपिक शुरू हुए तब से एथलेटिक्स इसका सबसे बड़ा आकर्षण रहा है। यह सदियों से मानव सभ्यता का हिस्सा रहा है।
1: बिल्कुल प्रीतेश, 1912 में इंटरनेशनल एमेच्योर एथलेटिक्स के फेडरेशन यानी IAAF की स्थापना हुई, जिसने इसे वैश्विक नियम और पहचान दी।
0: अच्छा,
1: आज इसे वर्ल्ड एथलेटिक्स के नाम से जाना जाता है। समय बदला, तकनीक बदली,
0: लेकिन दौड़ने की वही
1: जो रफ्तार है, वो जीतने का जज्बा आज भी वही है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। और यही नहीं, अगर हम देखें कि एथलेटिक्स को मुख्य रूप से ट्रैक एंड फील्ड कहा जाता है, जैसा कि आपने देखा होगा कि ज्यादातर जो भी दौड़ भाग की प्रक्रिया होती है वो ट्रैक पे होती है या फील्ड्स में होती है
1: जी।
0: और ये दो भागों में बटा है, एक ट्रैक और एक फील्ड
1: जी।
0: ट्रैक पर जहां 100 मीटर की फराटा दौड़ और लंबी दूरी की मैराथन होती है, वहीं फील्ड पर हाई जंप, लॉन्ग जंप और पोल वॉल्ट जैसे हैरतअंगेज करतब देखने को मिलते हैं।
1: और हम थ्रोइंग इवेंट्स को कैसे बोल सकते हैं?
0: बिल्कुल,
1: शॉर्ट पुट, डिस्क थ्रो,
0: डिस्क थ्रो जो होता है फेंकने बहुत है
1: जी, और जेवलिन थ्रो, जहां ताकत और तकनीक का सही तालमेल जरूरी है।
0: बिल्कुल,
1: इन खेलों का रोमांच ऐसा होता है प्रीतेश कि पलक झपकते ही रिकॉर्ड टूट जाते हैं।
0: बिल्कुल,
1: और नया इतिहास लिख दिया जाता है।
0: मतलब पलक झपका और कहां से कहां चला जाता है जेवलिन, मतलब बहुत सारी चीजें हैं। वही नहीं साजिद, अगर हम देखें कि भारतीय एथलेटिक्स के लिए पिछले कुछ समय गोल्डन पीरियड रहा है
1: जी,
0: हमारे जितने भी श्रोता सुन रहे हैं उन

0: को भी पता होगा, नीरज चोपड़ा
1: जी हाँ
0: के भाले ने पूरी दुनिया में भारत का डंका बजाया है।
1: जी
0: आज हमारे युवा एथलीट किसी भी वैश्विक मंच पर आंखों में आंखें डालकर मुकाबला करने के लिए एकदम तैयार रहते हैं कि आ जाओ भाई, हम भी तैयार हैं,
1: जी
0: हमारे
1: जी
0: यहाँ भी आ चुके हैं सब लोग।
1: सही कहा प्रीतेश। नीरज के अलावा मिल्खा सिंह और पीटी उषा जैसी हस्तियों ने जो
0: जी
1: नींव रखी थी
0: हाँ
1: उसे आज की पीढ़ी आगे बढ़ा रही है। अविनाश साबले, हिमा दास और अन्नू रानी जैसी नाम आज हर घर में प्रेरणा का स्रोत बन चुके हैं।
0: बिल्कुल। और यही नहीं, जैसे एक एथलीट के लिए केवल शरीर का मजबूत होना काफी नहीं है शाजिद, ये
1: जी
0: सबसे जरूरी बात है युवाओं को समझना कि अगर वो एथलीट बनना चाहते हैं तो सिर्फ वो ये ना माने कि उनके शरीर
1: बहुत
0: मजबूत है तो सिर्फ,
1: ताकत।
0: हाँ, मैदान में 100 मीटर की दौड़ में मिली सेकेंड का अंतर तय करता है कि गोल्ड किसे
1: किसे
0: मिलेगा।
1: मिलेगा? जी
0: तो क्या ये सिर्फ
1: नहीं
0: शारीरिक क्षमता है?
1: नहीं
0: नहीं,
1: नहीं
0: इसके लिए लोहे जैसी मानसिक एकाग्रता और दबाव झेलने की क्षमता होनी चाहिए आपके अंदर।
1: बिल्कुल बिल्कुल। एथलेटिक्स हमें अनुशासन सिखाता है।
0: बिल्कुल
1: सुबह अंधेरे में उठकर अभ्यास करना, अपनी डाइट पर नियंत्रण रखना और हार के बाद भी फिर से खड़े होना,
0: बिल्कुल
1: यह जीवन का सबसे बड़ा सबक है। एक अच्छा एथलीट असल जीवन में भी एक विजेता की तरह सोचता है।
0: बिल्कुल। बताइए तो, आज आपने प्रेरक पंक्ति ही इस पे बता दी थी कि हार जाना नहीं है, हार
1: जी
0: जाने वाला मतलब वो नहीं है कि आप हार गए हैं, आप हारने के बाद कोशिश नहीं करते, वो है असली हारना।
1: जी बिल्कुल।
0: तो इसलिए अगर आप देखें कि विश्व एथलेटिक्स दिवस का मुख्य उद्देश्य स्कूलों और गांवों से प्रतिभाओं को ढूंढना है,
1: जी
0: अक्सर ग्रामीण अंचलों में देखा जाता है कि ऐसे बच्चे होते हैं जो प्राकृतिक रूप से बहुत तेज दौड़ते हैं,
1: जी हाँ
0: अगर उन्हें सही कोचिंग और जूते मिले, देख लें आप कि अगर कोच अच्छा मिल जाए, मतलब गुरु अच्छा मिल जाए
1: जी हाँ
0: और सारी चीजें फैसिलिटी जो होती है वो अगर मिल जाए तो विश्व
1: विश्व
0: चैंपियन
1: चैंपियन
0: बन
1: बन
0: सकते हैं,
1: सकते
0: उन्हें कोई रोक
1: हैं।
0: सकता है?
1: नहीं, बिल्कुल। तो इसलिए तो खेलो इंडिया जैसी योजनाएं बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है
0: हाँ
1: कि खेलो इंडिया जैसी योजनाएं अब प्रतिभा केवल बड़े शहरों की महंगे स्टेडियम तक सीमित नहीं है प्रीतेश।
0: बिल्कुल
1: प्रतिभा की खोज अब तहसीलों और गांवों के मैदानों में हो रही है। ग्रामीण युवाओं के पास अब अपने हुनर को साबित करने का पूरा मौका है।
0: बिल्कुल सही कहा। और यही नहीं, अगर आज हम देखें कि एथलेटिक्स के जो मतलब एथलीट्स जितने भी होते हैं के ट्रैक पर महिलाएं पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर चल रही
1: जी
0: हैं,
1: हाँ
0: मतलब महिलाएं अब किसी भी चीज़ में पीछे नहीं
1: पीछे
0: हैं,
1: नहीं है, होना
0: उन्होंने
1: भी नहीं
0: हाँ
1: चाहिए।
0: होना भी नहीं चाहिए, उन्होंने साबित कर दिया है कि समाज की बेरियां उन्हें तेज दौड़ने से नहीं रोक सकती।
1: जी बिल्कुल।
0: हमारी महिलाएं एथलीट आज दुनिया के सबसे कठिन मुकाबलों में पदक जीत के ला रही हैं।
1: जी हाँ, जैसे हिमा दास
0: बिल्कुल
1: और पीटी उषा इसके सबसे बड़े उदाहरण है ना। गांव की गलियों से मिलकर इंटरनेशनल, गांव की गलियों से
0: निकल
1: निकलकर
0: कर मतलब
1: जी
0: गांव की गलियों से आई हैं और इंटरनेशनल लेवल तक।
1: जी ट्रैक तक का उनका सफर करोड़ों लड़कियों की के लिए उम्मीद की किरण है।
0: बिल्कुल
1: जब एक लड़की मैदान पर दौड़ती है तो वो पूरे समाज की सोच को गति देती
0: ये
1: है।
0: आपने बिल्कुल सही कहा कि समाज की जो सोच होती है उसे गति देना बहुत जरूरी है, जो आज की महिलाएं कर रही हैं। आज के दौर में एथलेटिक्स में तकनीक का बहुत बड़ा योगदान है, अगर तकनीक ना हो तो आप कहीं ना कहीं, वही कहा जाता है, मिली सेकेंड से छूट सकते हैं। हवा के दबाव को मापने वाले यंत्रों से लेकर सुपर फास्ट रनिंग शूज तक सब कुछ एथलीट के प्रदर्शन को सुधारने के लिए डिजाइन किया गया है, यहां तक कि ट्रैक की बनावट भी गति तय करती है। क्यों
1: जी बिल्कुल। तो बातें तो होती रहेगी
0: बात,
1: प्रीतेश, क्यों ना
0: एक
1: एक
0: प्यारा
1: प्यारा सा
0: सा,
1: सॉन्ग सुना जाए।
0: हाँ, श्रोताओं को भी
1: सर
0: मजा है।

0: तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कभी नहीं, फिल्म तेरा चेहरा। आवाज थी अदनान समी और दूसरी आवाज तो सब जानते हैं, अमिताभ बच्चन। शाजिद, हम एथलीट्स की बात कर रहे थे,
1: हाँ।
0: तो बताइए।
1: प्रीतेश, जो तकनीक की बात हो रही थी, ट्रैक पे
0: हाँ,
1: कैसे
0: तकनीक,
1: दौड़ना, वो
0: हाँ,
1: जो
0: वो
1: है
0: सारी
1: कि
0: चीजें।
1: हाँ, तो वहां तक तो बात ठीक है कि तकनीक ठीक है, लेकिन अंत में मेहनत ही काम आती है।
0: हाँ, ये तो है।
1: स्मार्ट वॉचेस और डेटा एनालिसिस अब कोचों को ये समझाने में मदद करते हैं कि एथलीट के दौड़ने के स्टाइल में कहाँ सुधार की ज़रूरत है।
0: बिल्कुल,
1: विज्ञान और खेल अब दोनों जो है एक दूसरे के क्या बन चुके हैं।
0: पूरक बन चुके हैं।
1: हाँ, ये कह
0: और
1: सकते
0: यही
1: हैं।
0: नहीं, अगर एक एथलीट का शरीर एक मशीन की तरह काम करता है और उसे सही ईंधन की जरूरत होती है, तो आपने देखा ही होगा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन का सही संतुलन ही उसे 90 मिनट तक मैदान पर ऊर्जावान बनाए रखता है।
1: जी
0: बाहर का खाना उनके लिए लगभग वर्जित होता है।
1: जी हाँ, और इसके साथ ही हाइड्रेशन यानी पानी का सही स्तर बनाए रखना भी
0: बिल्कुल,
1: ज़रूरी है। एथलीटों की डाइट उनके खेल के हिसाब से तय होती है।
0: बिल्कुल,
1: एक मैराथन धावक की ज़रूरत एक शॉर्ट पुट थ्रोअर से बिल्कुल अलग होती है। अनुशासन रसोई से ही शुरू होता है ना।
0: बिल्कुल साजिद। सफलता की शॉर्टकट तलाश के चक्कर में कई खिलाड़ी प्रतिबंधित दवाओं का सहारा ले लेते हैं। जैसे बहुत सारी दवाएं हैं जो केवल खेल की गरिमा को ठेस पहुंचाती है, बल्कि खिलाड़ी के स्वास्थ्य और करियर को भी हमेशा के लिए बर्बाद कर देती है। क्यों?
1: इसीलिए तो वाडा, विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी, और नाडा, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी जैसे संस्थान बहुत सख्त हैं।
0: जी
1: युवाओं को यह समझना होगा कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: एक ईमानदार हार बेईमानी की जीत से कहीं बेहतर है। खेल
0: सही
1: की
0: बात,
1: भावना को बनाए रखना हर एथलीट का पहला कर्तव्य है। प्रीतिश,
0: बिल्कुल सही कहा आपने। बातचीत तो होती रहेंगी, लेकिन चलिए पहले श्रोताओं को एक और प्यारा सा गाना सुनाते हैं,
1: जी
0: लेकिन
1: नहीं,
0: उससे पहले एक प्यारा सा संदेश।
2: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
3: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री, बस 30 रुपए में।
4: आज ही अपने घर

0: तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे
1: नवाब।
0: नवाब, और खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। फिल्म थी MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी, आवाज़ थी अनन्या नंदा की। तो यही नहीं, अभी जैसे शाजिद हमने बात की एथलेटिक्स
1: दिवस के
0: आज
1: बारे में,
0: दिवस के बारे में, आज विश्व एथलेटिक दिवस है, उसके साथ साथ आज एक बहुत बड़े साहित्यकार की जयंती भी है,
1: जी बिल्कुल
0: और वो है जिन्हें हम प्यार से गुरुदेव कहते हैं,
1: जी,
0: रविंद्रनाथ टैगोर
1: टैगोर
0: जी।
1: जी
0: टैगोर केवल एक कवि नहीं थे शाजिद,
1: जी
0: बल्कि वे एक ऐसी चेतना थे जिन्होंने भारतीय संस्कृति को और दर्शन को पूरी दुनिया में एक नई पहचान दिलाई है।
1: प्रितेश, रविंद्रनाथ टैगोर दुनिया के इकलौते ऐसे कवि हैं
0: जी
1: जिनकी रचनाएं दो देशों का राष्ट्रगान बनी।
0: ओ
1: आज हम उनकी यादों की गलियों में घूमेंगे और जानेंगे कि कैसे उनके विचार
0: जी
1: आज के आधुनिक युग में भी हमें रास्ता दिखाते हैं।
0: अच्छा, और यही नहीं, रविंद्रनाथ, अगर हम श्रोताओं को बताएं तो श्रोताओं, रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कोलकाता के प्रसिद्ध जोड़ा सांको ठाकुर बाड़ी में हुआ था। वे बचपन से ही प्रकृति प्रेमी थे, उन्हें बंद कमरों में पढ़ना पसंद नहीं था शाजिद,
1: जी
0: ऐसा मतलब कहते हैं ना कि बंद चीज़ें, आपको एक जगह बंद कर दिया जाए तो वो अच्छा नहीं लगता था, तो इसीलिए वो उन्होंने प्राकृतिक की गोद चुनी और हमेशा जाके नेचर में बैठे रहते थे, प्राकृतिक में बैठे रहते थे, और जो भी उन्हें लिखने का होता था तो मन में होता था वो अपने किताबों पेनों से लिख देते थे।
1: शब्दों में पिरोना शुरू किया। बिल्कुल, उनके घर का माहौल ही ऐसा था जहां कला, संगीत और साहित्य का संगम था।
0: जी
1: महाश्री देवेंद्रनाथ टैगोर के पुत्र होने के नाते उन्हें विरासत में ही आध्यात्म

0: आध्यात्मिक और दार्शनिक सोच मिली थी
1: जी।
0: जिसने आगे चलकर उन्हें महाकवि की उपाधि दिलाई।
1: टैगोर के जीवन का सबसे ऐतिहासिक पल 1913 में आया, जब उनकी काव्य कृति गीतांजलि के लिए उन्हें साहित्य का नोबल पुरस्कार मिला। वे यह सम्मान पाने वाले पहले गैर यूरोपीय व्यक्ति थे। उनकी कविताओं ने पूरी दुनिया को शांति का संदेश दिया था।
0: और गीतांजलि केवल कविताओं का संग्रह नहीं
1: बिल्कुल
0: बल्कि ईश्वर और मानवता के प्रति एक समर्पण है।
1: जी
0: इसकी पंक्तियों में जो सरलता और गहराई है
1: बिल्कुल
0: उसने पश्चिमी जगत के विचारों को भी हैरान कर दिया।
1: सही कहा
0: इसी
1: आपने,
0: पुरस्कार ने भारतीय साहित्य को वैश्विक मंच पर गौरव दिलाया।
1: बिल्कुल। और यही नहीं, अगर साजिद जब भी आपने सुना ही होगा जन गण मन की धुन हमारे कानों में पड़ती है तो हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है।
0: जी
1: गुरुदेव ने ही हमारे राष्ट्रगान की रचना की थी, जो अनेकता में एकता और भारत के गौरवशाली भूगोल का अद्भुत वर्णन करते हैं।
0: और सिर्फ भारत ही नहीं, बांग्लादेश का राष्ट्रगान
1: जी
0: आमार सोनार बांग्ला भी गुरुदेव ही की देन है।
1: जी
0: यहाँ तक कि श्रीलंका के राष्ट्रगान पर भी उनकी अमिट छाप दिखती है।
1: जी
0: यह दिखाता है कि उनकी सोच और शब्द सीमाओं के बंधन से बहुत ऊपर थे।
1: बिल्कुल। टैगोर ने शिक्षा को किताबी बोझ से मुक्त करने का संकल्प लिया था शाजिद, कि
0: जी
1: जरूरी नहीं है कि किताब आप पढ़ते रहो तो आपको शिक्षा मिले, नहीं। उन्होंने शांति निकेतन और विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की। यहाँ
0: जी
1: खुले आसमान के नीचे पेड़ों की छाँव में छात्र पढ़ते हैं।
0: जी
1: उनका मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य इंसान की आत्मा को आजाद करना है।
0: सही कहा। आज के दौर में जहां शिक्षा एक व्यवसाय बनती जा रही है, टैगोर का दर्शन हमें याद दिलाता है कि सीखना एक आनंदमय प्रक्रिया होनी चाहिए।
1: बिल्कुल
0: उन्होंने कला, संगीत और हस्तशिल्प को औपचारिक शिक्षा का अभिन्न हिस्सा बनाया, जो आज भी प्रेरणादायक है।
1: बिल्कुल। और यही नहीं, बात तो आगे होती रहेगी, लेकिन इससे पहले एक श्रोताओं को गाना सुना देते हैं
0: जी
1: जो
0: प्रीतेश,
1: श्रोताओं को बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा,
0: दिल खुश।
1: दिल खुश कर देगा उन।

0: तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आमी जे तुमार भूल भुलैया 2 से। आवाज़ थी अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल की। जैसा कि हम बात कर रहे थे शाजिद, टैगोर जी,
1: जी
0: टैगोर ने संगीत की एक अपनी ही शैली विकसित की जिसे रविंद्र संगीत कहा जाता है। उन्होंने शास्त्रीय संगीत के आधार पर हजारों गीतों की रचना की जिनमें प्रकृति, ईश्वर और मानवीय संवेदनाओं का जो सुंदर चित्रण मिलता है उसमें।
1: जी प्रीतेश, रविंद्र संगीत की धुनें इतनी रूहानी होती है कि सुनने वाले को एक अलग ही दुनिया मिले जाती है।
0: जी
1: बंगाल के हर घर में और हर त्यौहार पर उनके गीत गूंजते हैं।
0: जी
1: उन्होंने संगीत को आम आदमी की भावनाओं के इजहार का जरिया बना दिया।
0: बिल्कुल सही कहा आपने साजिद। क्या आप जानते हैं कि टैगोर ने 60 साल की उम्र के बाद चित्रकला शुरू की थी। उनके चित्र उनकी कविताओं की तरह ही रहस्यमयी और गहरे थे। उन्होंने साबित किया कि सृजन और कला की कोई उम्र नहीं होती।
1: जी हाँ, उनकी पेंटिंग्स को दुनिया के बड़े बड़े गैलरीज में सराहा गया।
0: बिल्कुल,
1: उनमें जो आधुनिकता और रंगों का प्रयोग था वह उस दौर के हिसाब से काफ़ी क्रांतिकारी था।
0: बिल्कुल,
1: गुरुदेव का जीवन हमें सिखाता है कि सीखने की ललक कभी ख़त्म नहीं होनी चाहिए।
0: बिल्कुल। टैगोर केवल एक कलाकार नहीं बल्कि एक प्रखर राष्ट्रवादी भी थे। 1919 में जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो उन्होंने इसके विरोध में ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई नाइटहुड यानी सर की उपाधि लौटा दी थी।
1: वह साहस का एक बड़ा उदाहरण था। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि जिस शासन में मेरे देशवासियों के साथ ऐसा क्रूर व्यवहार हो वहाँ मैं किसी पदवी का सम्मान नहीं रख सकता।
0: जी
1: उनका यह कदम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रति
0: बिल्कुल,
1: उनकी गहरी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
0: जी बिल्कुल। और यही नहीं साजिद, अगर टैगोर एक एक व्यक्तित्व ही नहीं बल्कि एक निरंतर बहने वाली धारा है। उनकी जयंती पर हम संकल्प लेते हैं हम सभी कि हम भी अपनी कला और विचारों से समाज में उजाला
1: फैलाएंगे।
0: क्यों?
1: गुरुदेव हमेशा हमारे गीतों, हमारी शिक्षा और हमारी आज़ादी के एहसास में जिंदा रहेंगे।
0: बिल्कुल साजिद, आज आपको याद है ना आज कौन सा दिन है?
1: आज तो गुरुवार है।
0: गुरुवार है
1: जी,
0: यानी कि हमारा एक खास सेगमेंट जाता है जो श्रोताओं को बहुत पसंद है। उसका नाम है थ्रो बैक थर्सडे, जिसमें हमारी जो कंपेयर हैं धारणी, उन्होंने ऋचा जी से बातचीत की है। क्या कुछ बातचीत की है ऋचा जी से, आइए हम श्रोताओं को सुनाते हैं।
2: दोस्तों, मन का एक कोना ऐसा है जो कभी खाली नहीं रहता। पुराने लोग, पुरानी जगहें, पुराने दिन, पुराने पल और पुरानी बातें हम सभी के मन में यादें बनकर रह जाती हैं। मन के इस संदूक से कुछ यादें निकालकर हमारे साथ उन्हें साझा करने युववाणी में आज हमारी खास मेहमान ऋचा शर्मा हमारे साथ जुड़ी हैं। नमस्कार ऋचा, आपका स्वागत है युववाणी के थर्सडेज स्पेशल सेगमेंट थ्रोबैक गुरुवार में।
3: धन्यवाद धारिणी, मुझे आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: ऋचा, पुराने पन्ने पलटने से पहले मैं जानना चाहूंगी कि आपकी लाइफ का सबसे यादगार फेज कौन सा है?
3: अगर बात करें सबसे यादगार पहलू की तो मैं कॉलेज लाइफ की बात करना चाहूंगी। जब आप कॉलेज लाइफ से आगे बढ़ते हो तब उसकी वैल्यू और बढ़ जाती है और तब ये रियलाइजेशन होता है कि वो जो पल थे वो कितने ही खास पल थे और हमेशा के लिए यादगार बन के रह जाते हैं। तो मैं सबसे यादगार पलों का नाम अपने कॉलेज लाइफ को दूंगी।
2: जी, मैं भी आपकी इस बात से रिलेट कर सकती हूँ और मुझे उम्मीद है कि हमारे बाकी युवा साथी जो है वो भी इस बात से काफी रिलेट कर पाएंगे। तो इसके बाद मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपके हिसाब से लाइफ का सबसे गोल्डन फेज कौन सा होता है?
3: वैसे हम बचपन से ये सुन के बड़े होते हैं कि यही पल है तुम्हारा जब

0: तुम स्टूडेंट हो, इसे जी लो, हमारे बड़े अक्सर हमें ऐसा कहते हैं। तो जब आप खुद उस पल को जी के आगे बढ़ते हो और वर्किंग लाइफ शुरू करते हो, तब आप रियलाइज करते हो कि वो सच्ची बात थी। तो मेरी नजर में जब आप स्टूडेंट होते हो, जब आप स्कूल से कॉलेज आते हो, कॉलेज लाइफ होती है, तो गोल्डन फेज ऑफ लाइफ आप बिल्कुल कॉलेज लाइफ को बोल सकते हो, क्योंकि उस लाइफ की इम्पोर्टेंस और उस ड्यूरेशन में जो फन आप एक्सपीरियंस करते हो, वो आप आगे जाके उसकी वैल्यू और बढ़ती है। तो आप अपनी मतलब अपनी एक्सपीरियंस पे आप देख सकते हो कि जो कॉलेज लाइफ है वो आपकी लाइफ का गोल्डन लाइफ रहा है, क्योंकि आगे ये जो चुनौतियां हैं जो वर्क लाइफ में आपको मिलती है नए नए में, वो शायद आगे बढ़ती ही जाए। तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि वो जो गोल्डन लाइफ पीरियड है वो आप जी चुके हो पहले ही, बीइंग स्टूडेंट, बीइंग इन कॉलेज।
1: जी बिल्कुल। तो कॉलेज लाइफ की आपको अभी कितनी याद आती है?
0: हाँ, मैं ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि मैंने इतना नहीं सोचा था। जब आप कॉलेज में होते हो, वो जो एग्जाम्स के प्रेशर होते हैं, प्रोजेक्ट्स, असाइनमेंट, तो आपको लगता है कि ये जल्दी से बस खत्म हो जाए। तो पर वो खत्म होने के बाद आपको उसकी वैल्यू ज्यादा पता चलती है। और कहीं ज्यादा मुझे मुझे ऐसे लगता नहीं था कि जब ये पीरियड खत्म हो जाएगा तो हाँ ठीक है, वो यादें बन के रहेंगी कि कॉलेज लाइफ इट वॉज स्पेशल। पर अब जब मैंने काम करना शुरू किया है, अब मैं फ्रेशर हूँ और मैंने नया नया ही काम करना शुरू किया है, तो मुझे ज्यादा याद आती है, क्योंकि एक कैलकुलेटिव लाइफ होती है जब आप कॉलेज में होते हो। सब चीज काफी कैलकुलेटेड होता है कि एग्जाम इस डेट को है, आपको पढ़ना है, आपकी क्लासेस हैं, आपका फंक्शन है, हर चीज काफी कैलकुलेटेड होता है, शेड्यूल होता
1: जी
0: है। और वैसे जब आप काम करना शुरू करते हो तो ऐसा लगता है कि एक ही दिन बार बार कॉपी हो रहा है, क्योंकि आपको रोज ही मेहनत करनी है, काम करना है, ऑफिस जाना है, ये चीजें रिपीटेडली करनी है। तो मेरी कैलकुलेशन स्पेशली रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे बेस्ड है। तो जब आप कॉलेज लाइफ खत्म कर लेते हो तब ज्यादा याद आती है कॉलेज लाइफ की, क्योंकि काफी कुछ मतलब कितना ईजी होता था सब कुछ, ये अब रियलाइज होता है कि सब कुछ प्री कैलकुलेटेड होता था देखा जाए तो, चाहे वो क्लासेस हो, असाइनमेंट्स हो, फंक्शंस हो, फेस्टिवल्स हो, फेस्टिवल्स की छुट्टियों में घर जाना, एवरीथिंग। तो ओवरऑल ओबीसी बात है, मुझे तो बहुत ज्यादा याद आती है, जितना मैंने सोचा नहीं था उतना ज्यादा याद आती है मुझे कॉलेज लाइफ की।
1: जी, और उस समय इन कल्चरल फेस्टिवल्स और जो बाकी ओकेजन्स होते हैं, उन चीजों की और ज्यादा तलब होने लग जाती है, उन चीजों में और ज्यादा मजा आता है हमें। जी
0: बिल्कुल, क्योंकि एक आपको एक नई पहलू मिलती है उन चीजों को देखने की, उसकी सेलिब्रेशन कॉलेज में होना, फिर उसकी छुट्टी मिलना, फिर घर जाना। और यहाँ ऐसा जब आप फिर स्विच करते हो कॉलेज लाइफ से खत्म करके आप वर्किंग लाइफ में आते हो, तो कहीं ना कहीं उस एक्साइटमेंट को कम कर देता है। आप जो काम मतलब कामकाजी जीवन है, वहाँ ये चीजें कम हो जाती हैं। हाँ ठीक है, आपको छुट्टियां मिलती हैं, सब मिलती है, पर वो जो सेलिब्रेशन होता है विद द कॉलेज टच, वो आप मिस करते हो। मतलब मैं पर्सनली अपनी बात करूंगी और लिसनर्स भी रिलेट करेंगे शायद इससे, कि फिर वो आप मिस करते हो, वो सेलिब्रेशन मिस करते हो।
1: अब भी वही सेम उत्साह, वही सेम एक्साइटमेंट फेस्टिवल्स के टाइम पे बनाए रखने के लिए आप कुछ टिप्स हमारे श्रोताओं को शेयर कर दें।
0: ये तो बहुत ही मुश्किल सवाल है भारिनी, पर मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि जो उत्साह हमें पर्व त्योहारों के वक्त होता है, उसके सबसे बड़े सोर्स हम खुद होते हैं। तो मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आप चाहे जितने बड़े होते जाए, आपकी कॉलेज लाइफ जितनी भी पीछे छूटती जाए, उस एक्साइटमेंट को ड्रॉप ना होने दें, और कोशिश करें कि आप फेस्टिवल्स के टाइम पे अपने परिवार के साथ हो, आप अपने परिवार के लोगों के साथ बिताएं, कोशिश करें, क्योंकि ये बहुत मुश्किल हो जाता है जब आप काम करना शुरू करते हैं, जब आप दूसरे शहर में चले जाते हैं। पर फिर भी उस एक्साइटमेंट को बनाए रखने के लिए कोशिश करें कि छुट्टियों में आप अपने परिवार के साथ वक्त बिताएं, और अपने अंदर से उस एक्साइटमेंट को ना खत्म ना होने दें, क्योंकि वो छोटी सी खुशी आपकी जो अपनी पार्टिसिपेशन होगी उन सेलिब्रेशन में, वही आपके मूड को एनलाइटन कर सकती है। नहीं तो फिर, क्योंकि जैसे जैसे आप बड़े होते हो, आप आपके अंदर कहते हैं ना, वो अपने अंदर के बचपने को कभी खत्म नहीं होने देना चाहिए। यही सजेस्ट करूंगी कि थोड़ा कनेक्टेड रहे अपने फैमिली से, स्पेशली ये तो हमेशा ही कनेक्टेड रहे, बट स्पेशली ड्यूरिंग फेस्टिवल्स। तो अपने अंदर के उस बचपन को कभी खत्म ना होने दे, क्योंकि वो बहुत ही अनमोल चीज होती है, आपको जिंदा दिली रखने के लिए काफी जरूरी है वो।
1: मुझे उम्मीद है कि हमारे सुधी श्रोता इस बात को सुनकर अपने बचपन को वापस याद कर रहे होंगे और वापस से खुद में वो बचपना लाएंगे। अब थोड़ा स्टूडेंट लाइफ से हम प्रोफेशनल लाइफ की ओर बढ़ते हैं, और आपसे अब मैं ये जानना चाहूंगी कि आपको स्टूडेंट लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में क्या कुछ अंतर और क्या कुछ

0: समानताएं देखने को मिली।
1: मेरी नजरिए से देखें तो अंतर भी बहुत है और समानताएं भी बहुत है, पर मैं अंतर से ही शुरुआत करूंगी बिल्कुल, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में जो मुझे बहुत बड़ा चेंज दिखता है कि आपके पास ऑप्शंस ज्यादा होते हैं जब आप स्टूडेंट होते हो, तो हर स्टेप में, चाहे वो एग्जाम्स हो, डेली लाइफ हो, तो आपके पास ऑप्शंस होते हैं कि हाँ आपको प्रिपरेशन करने के लिए इतने दिन है, आपको डेट्स पता है, आज क्लासेस हैं, आप बीमार हो, आप लीव ले सकते हो, फिर आज फंक्शंस हैं, एंजॉयमेंट है, तो ऑप्शंस बहुत होते हैं। पर जब आप काम करना शुरू करते हो, जब आप जॉब लाइफ स्टार्ट करते हो, तो यहाँ पे आपको चॉइसेस की कमी हो जाती है, आपके पास ऑप्शन नहीं है। हाँ, यहाँ भी सिक लीव है, मैं वो नहीं बोल रही हूँ कि बिल्कुल भी आप बीमार हो फिर भी आपको काम करना पड़ रहा है, पर नहीं, मतलब जो जिस फ्री स्पिरिट से हम तब छुट्टियां ले लेते थे या कॉलेज में भी जाके हमें वो पिकनिक इवेंट्स, जो भी, ये चॉइसेस की कमी हो जाती है जब आप वर्क लाइफ में आते हो। वर्क लाइफ में काफी बैलेंस्ड होता है कि हाँ आपको रोज ही काम करना है, इस दिन आपकी छुट्टी है, चलो आपको छुट्टी लेनी है, बाकी आपको काम करना है, रोज ही काम करना है, तो चॉइसेस की कमी जो है पहला अंतर है, ये आप मिस करते हो जब आप काम करना शुरू करते हो। और समानताएं यही है कि जब कॉलेज लाइफ में भी, मतलब बीइंग स्टूडेंट और बीइंग वर्कर समवेयर, आपको जो पंक्चुअलिटी है, ये बहुत बड़ी सिमिलर चीज जो है मेरे नजरिए में, कि आप कॉलेज लाइफ में भी पंक्चुअलिटी सीखते हो, आपके टीचर्स, आपके फेलो स्टूडेंट्स सब आपको बोलते हैं कि टाइम का जो इम्पोर्टेंस है वो, ये मुझे लगता है सिर्फ स्टूडेंट होने के साथ और सिर्फ जॉब लाइफ में ही नहीं, ये मुझे लगता है ये जीवन में हमेशा ही रह जाता है, जो टाइम को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, जो पंक्चुअलिटी को हमें मध्य नजर से देखना चाहिए, ये हमेशा ही रहता है लाइफ में, तो ये एक सिमिलैरिटी है। आप जब जॉब करने लगते हो तो आप ज्यादा पंक्चुअल हो जाते हो।
0: जी बिल्कुल, हम सभी इस बात से एग्री कर रहे हैं
1: जी। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि एक और समानता है, वो ये है कि आप कुछ ना कुछ सीखते हो, बीइंग स्टूडेंट भी आप रोज ही कुछ, आप स्टूडेंट होके तो आपका एम ही होता है नहीं कि सीख रहे हैं हम, और जॉब लाइफ में भी आके बीइंग फ्रेशर, मैं ये चीज कहना चाहूंगी, जब आप एक्सपीरियंस हो गए हो और आप काफी समय से काम कर रहे हो, तब तो आप सीख चुके हो बहुत कुछ, पर कहीं ना कहीं वो लोग भी मुझसे अग्री करेंगे कि वो भी कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं, तो ये जो लर्निंग फेज है ये भी एक सिमिलर फेज है दोनों फेज ऑफ लाइफ में।
0: जी, तो इसी के साथ मैं चाहूंगी कि आप कोई अपने कॉलेज टाइम की थ्रोबैक स्टोरी हमसे शेयर करें।
1: हाँ बिल्कुल, मेरे पास तो बहुत सारी कहानियां हैं, पर मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूंगी। बिल्कुल, जब हम पहले दिन कॉलेज जाते हैं तो एक वो डर होता है अंदर, एक डर होती है, एक्साइटमेंट, सब एक मिक्सचर सी फीलिंग होती है, तो उस दिन आप सोचते हो कि, और मैं बता दूं कि मैंने अपनी कॉलेज लाइफ की शुरुआत जब की थी तो मैं अपने घर से दूर आई थी, मैं हॉस्टल में रह रही थी।
0: अच्छा।
1: तो मेरे लिए काफी नया था सब कुछ, कि परिवार को भी छोड़ना, नए दोस्त बनाना, बहुत प्रेशर है, पर मैं फिर अपने कॉलेज में मैं कुछ ऐसी लड़कियों से मिली जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं आज, और उन्होंने मुझे वो परिवार वाली फीलिंग कॉलेज में भी दी, और मैं सबसे स्पेशली बताना चाहूंगी कि काफी थोड़ा फूडी सा चॉइस है मेरे आंसर में, पर हमारे कॉलेज में होता था कि बहुत सारी लड़कियां थी जो हॉस्टल से आती थी, तो हमारे लिए जो अच्छे जायके का जो खाना होता है, जो घर का खाना होता है, उसकी अलग ही वैल्यू होती थी।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: वही, और हमारे लिए क्या, आई गेस इससे जो हमारे श्रोता है वो भी रिलेट करेंगे कि जो घर का खाना होता है, जब आप हॉस्टल जाते हो तभी आप उसकी वैल्यू समझते हो कि घर का खाना कितनी बड़ी बात है और कितनी, मतलब कितनी वैल्यूएबल चीज है। तो हमारे क्लास में कुछ लड़कियां नहीं जो हमारे दोस्तों में थी जो घर से आती थी, तो वो हमारे लिए एक्स्ट्रा लंच लाया करती थी स्पेशली कि तुम लोग हॉस्टल से आते हो तो इसीलिए हम तुम्हारे लिए फूड लेके आए हैं। तो वो बहुत ही यादगार पल होता था और बहुत ही प्यारा लम्हा होता था कि वो एज अ फैमिली, मतलब बीइंग अवे फ्रॉम फैमिली, हमें वो फैमिली का फील दिलाते थे कि ये खाना घर का है और हम तुम्हारे लिए लाए हैं, तो वो बहुत ही स्पेशल मोमेंट होता था हमेशा ही।
0: इसी बात पर मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगी कि हमेशा से दिल का रास्ता पेट से होकर ही जाता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल ही सही कहा गया है कि जो दिल का रास्ता होता है वो पेट से ही होके जाता है, जो हमारे रिश्ते बन पाए एज अ फ्रेंड, मतलब वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स टुडे, तो इस रिश्ते का जो बेस था कहीं ना कहीं अच्छे खाने से गुजरा, घर के खाने से गुजरा, तो वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट।
0: जी जी जी, ऋचा जी, अगर कॉलेज टाइम की बात करें तो कॉलेज में जब हम होते हैं, नए नए जाते हैं, तो हमारा

0: फैशन की तरफ एक अलग सा रुझान होने लग जाता है। अपने कॉलेज टाइम में आपका फैशन की तरफ किस तरह का इंक्लाइनेशन था?
1: अगर बात फैशन की करें तो मेरी एक छोटी सी कहानी है जिसका शीर्षक में मैं बताना चाहूंगी आपको कि मेरी एक छोटी सी कहानी है, कहानी बिंदी की। जब मैंने नया नया कॉलेज शुरू किया था तो नॉर्मल यूनिफॉर्म हमारे कॉलेज में मैंडेटरी था कि आपको यूनिफॉर्म में आना है कुछ हफ्ते हफ्ते में कुछ दिन, तो हम यूनिफॉर्म में नॉर्मल आते थे। तो मैंने एक चीज नोटिस की, जो लड़कियां थी वहां हमारी सीनियर्स हमारी क्लास में भी, वो बिंदी लगा के आया करती थी। तो मैं जैसे बड़ी हुई हूँ, मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि बिंदी लगाना बड़ी लड़कियों का काम है, जब बड़े हो जाते हैं तब बिंदी लगाते हैं। तो मेरे लिए वो बिंदी बहुत फैशनेटिंग था। मैं सोचती थी कि अगर सब लगा रहे हैं तो मैं भी कभी ट्राई करूंगी। और फिर जब मेरे कॉलेज में यही कोई एक साल बीते, कुछ पहले तो 8-12 महीने, मतलब जब पूरे एक साल हो गए, तो सेकेंड ईयर में मुझे याद है मैंने भी बिंदी लगाना शुरू किया। और मुझे उस बिंदी लगाने का जो स्टाइल था लड़कियों का, वो मैंने कॉपी किया बिल्कुल। और मुझे बिंदी से ऐसा लगाव हुआ कि मैं आज भी जब भी मैं कुछ इंडियन वेयर, मतलब कुछ भी एथनिक पहनती हूँ तो मैं बिंदी जरूर लगाती हूँ। मैं कोई और मेकअप करूँ ना करूँ पर मैं बिंदी जरूर लगाती हूँ। तो मतलब मेरा जो बिंदी को लेके लाइकिंग है, ये मुझे मेरे कॉलेज से मिला है।
2: तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे ऋचा से धारणी की बातचीत, और आपने देखा कि जितने भी युवा हैं उनको अपनी कॉलेज लाइफ बहुत ज़्यादा एंजॉय करनी चाहिए, क्योंकि ऋचा ने भी बताया शाजिद कि उन्होंने अपनी कॉलेज लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा एंजॉय की। कैसे करके वो कॉलेज जाती थी, उनके जितने भी टीचर्स थे उनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे, कौन कौन से सब्जेक्ट, तो बहुत सारी बातें। शाजिद, श्रोताओं को रोचक तथ्य सुनना है भाई
3: जी। तो दोस्तों, क्या आपको पता है कि जापान का रिंकोंजी मंदिर एक प्राचीन बौद्ध मंदिर है? दोस्तों, इसके परिसर में एक विशेष स्थान नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की स्मृति को समर्पित है।
2: स्थापना
3: कला से सुसज्जित यह मंदिर न केवल जापानी जनता के नेताजी के प्रति सम्मान का प्रतीक है, बल्कि भारतीय इतिहास और भारत जापान मित्रता की गहरी समझ को भी जीवंत उदाहरण है। हर साल अगस्त में यह मंदिर आम जनता के लिए खोल दिया जाता है।
2: बिल्कुल। और यही नहीं दोस्तों, हर मोबाइल का जो कैमरा होता है उसकी गुणवत्ता मेगा पिक्सल में मापी जाती है। आपके मोबाइल का कैमरा 2, 4, 8, 16 या फिर 20 मेगा पिक्सल का हो सकता है, पर क्या आपको पता, आपको अनुमान है कि आपकी जो आँखें हैं वो कितने मेगा पिक्सल की हैं? ये 576 मेगा पिक्सल का है। अरे भाव, मतलब हमको तो लगा था कि जो फोन आते हैं बड़े बड़े उनके मेगापिक्सल अच्छे होते होंगे, लेकिन हमारी आंखें तो उनसे भी ज्यादा मेगापिक्सल की है। और यही नहीं शाजिद, थोड़े युवाओं को स्पोर्ट्स अपडेट से भी रूबरू करवा देते हैं।
3: तो दोस्तों, सबसे पहले स्पोर्ट्स अपडेट में आईपीएल की बात करते हैं।
2: बिल्कुल।
3: 7 मैचों तक अजय रहने वाली पंजाब किंग्स की टीम अब थोड़ी बहुत लड़खड़ा गई है
2: जी।
3: सनराइजर्स हैदराबाद ने बुधवार को पंजाब को 33 रनों से हराया ही नहीं बल्कि पहले नंबर पर भी पहुंच गई है वो,
2: बताइए। और दोस्तों, आपको बता दें कि अहमदाबाद लगातार दूसरे सत्र में आ गई है, और यही नहीं 31 मई को आईपीएल के फाइनल मैच की मेजबानी करेगा, जबकि मैच ये
3: क्वालिफायर
2: एक
3: धर्मशाला, जबकि दो अन्य प्ले ऑफ मैच न्यू चंडीगढ़ में खेले जाएंगे। बीसीसीआई ने बुधवार को यह घोषणा की। अहमदाबाद ने 2022 और 2023 में ये आईपीएल फाइनल में मेजबानी करेगी।
2: शाजिद, वक्त हो चला है हमारे श्रोताओं से विदा लेने का। तो श्रोताओं, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार।

युववाणी, अभी आप ये युवाओं का मन पसंदीदा कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है मैथिली कार्यक्रम भारती।

मैथिली कार्यक्रम भारती सुननिहार समस्त श्रोता के प्रभातक सादर नमन। श्रोता मित्र, आजुक कार्यक्रम में हम सब सुनब गीतनाद स्नेहा वर्मा के स्वर में, संगे सुनब कथा पाठ झोरा। एक कथा के प्रस्तुतकर्ता प्रभाष चंद्र झा। मुदा वही से पूर्व की छपना में गप सब सेहो करब। देखो श्रोता मित्र, आजुक समय में सड़क पर होवे वाला दुर्घटना दुनिया भर में अकाल मृत्यु आ विकलांगता के बड़का कारण बन गेल अछि। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसारे प्रत्येक वर्ष करीब 13 लाख लोक एहि हादसा में अपन जान गमा दैत छथि, तो करीब 5 करोड़ से बेसी लोक घायल भ जाइत छथि। एहि हादसा के रोकय आ सड़क सुरक्षा के प्रति आम जन के जागरूक करबाक लेल प्रत्येक वर्ष विश्व सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाओल जाइत अछि। संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित एहि सप्ताह के मध्य सरकार समुदाय आ आम जन के सड़क सुरक्षा के उपाय अपनेबाक लेल प्रोत्साहित करैत अछि। एहि के लक्ष्य सड़क हादसा सँ होवय वाला मृत्यु आ चोट के कम करब, ट्रैफिक नियम जेना हेलमेट पहिरब, सीट बेल्ट बान्हब, गति सीमा में वाहन चलायब, सुरक्षित बुनियादी ढांचा जेना पैदल यात्री क्रॉसिंग आदि के बढ़ावा देबाक अछि। एहि मादे प्रयास अछि जे 2030 धरि सड़क हादसा के 50% धरि कम कयल जाय। वर्ष 2026 के थीम सड़क सुरक्षाक नायक बनी राखल गेल अछि। एहि थीम मादे ओहि सब व्यक्ति के जागरूक करबाक अछि जे हमर सड़क के सुरक्षित बनेबा में मदद करैत छथि। एहि अंतर्गत ट्रैफिक पुलिस आ सुरक्षा कार्यकर्ता, हादसा के बाद मदद करय वाला लोक आ एहि नियम के मानय वाला आम जन शामिल छथि। एहि सड़क सुरक्षा सप्ताह अंतर्गत विभिन्न जागरूकता अभियान, कार मुक्त दिवस, पैदल चलबा लेल जागरूक सेहो कयल जाइत अछि। हेलमेट, सीट बेल्ट बान्ह आ गति नियंत्रित राखय लेल अभियान चलाओल जाइत अछि। सड़क सुरक्षा मात्र सरकारक जिम्मेदारी नहि थिक, ई हमरा सभक दायित्व सेहो अछि। गाड़ी चलबैत काल मोबाइलक प्रयोग नहि करी, एहिसँ ध्यान बटा हादसा होइत अछि। सदिखन अपन लेन आ गति सीमा के पालन करी। शराब पीबि कऽ कखनो गाड़ी नहि चलाबी, ई अपना संगे दोसरो लेल जानलेवा होइत अछि। रेड लाइट के उल्लंघन नहि करी, जेब्रा क्रॉसिंग के उपयोग करी। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा समान अछि। ट्रैफिक नियम के पालन सँ हमसब सदिखन सुरक्षित रहैत छी। आओ हमसब सड़क सुरक्षा के अपनाएब, एहन संकल्प ली। ई तऽ छल किछु अपना मे श्रोता मित्र दुटप्पी। आओ कार्यक्रम के आंगन दिस प्रवेश करी आ सर्वप्रथम अपने सबके सुनबैत छी ई विद्यापति गीत स्नेहा वर्मा के स्वर में, सुनल जाए।

0: सुमधुरसन विद्यापति गीत एखन स्नेहा वर्माके स्वरमे सुनि रहल छलहुँ। हिनका धन्यवाद दियनि। कार्यक्रममे हिनका सबसँ आर गीत नाटक आनन्द लेब, मुदा एखन सुनैत छी ई कथा पाठ। शीर्षक अछि झोरा। कथाकार छथि प्रभाष चंद्र झा। तऽ सुनल जाय ई कथा।
1: झोरा कास्तिक सब सामानकेँ एकमे सम्हारि कऽ राखब, यानी एक आवरणमे, बाहर भीतर एक रंग, सएह होइत छथि पिता, माय, दादा, दादी, मैया, परिवारक सब समांगके एकठाम सम्हारिके लऽ चलबा लए आ बाहरी नजरिसँ परिवारके बचाके रखबा लेल। आइ हमरा सभक हाथमे झोरा अछि कहाँ? खाली हाथ बाजारमे घुमि रहल छी, कनियो नहि मलाल। झोरा सिर्फ झोरे नहि थिक, सबके एक कऽ के रखैत अछि। मछाहि आवरणक झील परिवारके तहस नहस कऽ रहल अछि। पहिनो रहे लोक, पहिनो हुए प्रेम, एक खुट्टाक चौबगली परिवार चलैत रहे, मुदा आइ एक परिवारमे चारि चारिटा दीवाल जँ समाङ्ग चारि अछि। आँगन चारि खण्ड भऽ गेल, एके माइक नुआ चारि खण्ड, केराक करवीर जकाँ दौड़ बहरायल, से दौड़ पात फाटि गेल। बद्री चचा की करता, क्यो कहलमे नहि, ओह भारतीय समाजक ई दुर्गति। झोरा अछि कहाँ? अपनत्वक ई झोरा, हाथ खाली घुमि रहल छी। बाजारक रसायन पॉलिथीन थिक, पन्नी, यूज एंड थ्रो, से भऽ गेला पिता, से भऽ गेली माय, से भऽ गेला दादा दादी। घरक एक कोनमे दुबकल अपन संतान सभक कारनामा देखि रहल छथि, जेना कोनो मूस मरबासँ पहिने पूर्व टुक टुक ताकि रहल हो बिलाड़ि दिस। हमरा सब खाली हाथ घुमि रहल छी, हाथमे एकटा लोला, पहिने छोट छोट बच्चा सबके देल जाइत रहे खेलाइ लए, चटै लए, ऐसे लोला थिक मोबाइल।

और वो इंसान का हस्त रेखा के झाँप देने, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐ स्पंदन के तहस नहस कर रहल है। बद्री चचा चुप छथि मौन, के सुनत हिनक बात। दुनिया से आँचर उठ गेल है, ओफ दुसह समय छी। साड़ी नहीं तो आँचर नहीं, आँचर नहीं तो कोख नहीं, कोख नहीं तो छाती के रसधार नहीं, छाती के रसधार नहीं तो वात्सल्य नहीं। जन्मीते बोतल में दूध नहीं, माइक छाती से स्पंदर दूर, सिहरन दूर, एकात्मकता दूर, एक दूसरा के नजरिक समरसता दूर छी। एहन स्त्री सुहाग रहन की ऐसा तो नीक जानवर सोहो अपन संतान के दूध पियाबित है। दूध एक दूधे नहीं थीक, माइक अंतस्थलक मान मर्यादा सोहो थीक, एंटीजन से भरल निरोग रहवाक दवाई सोहो थीक। सिर्फ हार्मोनिक विकासे नहीं, द्वितीया चान हमर अबोध कनियो नहीं मास्चर्ज, हम सब ओकर मुख बिख दे रहल छी। फिर कहै छी संतान कसाई भ गेल कि नहीं, कसाई हम सब छी। परवरिश में दुख अछि, पन्नी में दूध, बोतल में दूध छी। मन मसोस के रह जायत छथि बद्री चचा, एकरे प्रतिफल थिक बुढ़ापाक ई दशा। किया में नुकौने छथि बाजारक ऐंठ, लवनीक गंध सीढ़ी पर छहलल, पाकल धान सन ललौन, देह ककरा नहीं मोहत झनझन बजैत, असे चाँच पर चढ़ल अछि। बद्री चचाक मोहक बोल में ओतेक ताकत कहाँ रह गेलैन जे समाजक विरोध करता। ढेका खोसल सामर्थ आइ अपने परिवारक बीच रैछाइ भेल अछि। पहिने तो आंगन से धुआं उठैत रहे, आइ तो गंधो नहीं उठैत अछि। आब धुआं से आगिक अंदाज लगाओल जाइत रहे, मूल वस्तु गंधक सीमा समाप्त भ गेल अछि। समाज ओहि से बहुत आगू निकल गेल अछि। एक दिस विकसित भारतक सपना अछि तो दोसर दिस विकृत भारतक ई दुर्दशा। संस्कारहीन आत्माक अंतस्थलीय ज्वार पर नचैत इंसानियतक ई बहुरूपिया स्वरूप गरीबीक गाती में अमेरिक सेंट मारि मारि नचि रहल अछि। समाज सृजनक खिलाफ ई की भ रहल अछि? ओह, के एकर माय बाप अछि? लोकतंत्र, जनतंत्र, समाजतंत्र, मानवतंत्र, ज्ञानतंत्र, अमोघ अस्त्र कि ग्लोबीय ऋतुचक्र कि बाजारवाद कि किछु आन? हमर आँखि में धा अछि, हम नहीं बर्दाश्त करब अहाँक एहन स्वरूप। आई हो मौसम बदलते तो लोग बदलबे करते कि ना? दैविक प्रहार सँ स्थित बदल सकैत अछि। अंतरिक्ष में सैटेलाइट सँ लोकेशन आइ भेट रहल अछि, मेघ के भगाओल जा रहल अछि, अमृत सन जिंदगी में डिटर्जेंट छीटल जा रहल अछि। हम सब माटि में उपजैत चीज देखैत छी, बसात में उपजैत देखैत छी, पानि में उपजैत देखैत छी, मुदा हृदय में उपजल चीज वस्तु दिस ध्याने नहीं जाइत अछि। संतान तो हृदयक चीज थिक कि नहीं हो? बद्री चचा कहलनि। बद्री चचाक रोइयाँ सिहरि रहल छनि, ओ मुरेठा खोलि दुनू मुँह बानि झोरा बन्हैत छथि आ बाजार दिससँ गाम पर घुमैत छथि। कि बगल में कैंडी क्रश खेलाइत छोरा कहलक, हौ दादा तू अनेरे पगलायल छ, तोहर झोरा में मानलों पूरा बाजार अटि जैतौ। मुदा ए चिप्स में पूरा संसार अटल अछि, यह देखबहक तकबहक सा भेटत, जेहने तकबहक तेहने भेटत, मोबाइलक ए चिप्स में देखक न हो। पोता रे तोरा की बुझेबो, तोहर ई मोबाइल हमर झोरा के कोन में अछि पड़ल, देख न, ऐ में कोनो बैटरी नहीं, ऐ में कोनो रिचार्जक झंझट नहीं, ऊर्जा से भरल ई संसार एकटा झोरा थिक, कने उठाकर तो देखाक, टस से मस नहीं हेत प्रकृतिक ई झोरा, ऋतुवर्णा ऋतुचक्र।

0: एकर लग आबि के देखक ने कने कतेक रंग बिरंगी दुनिया अछि, कोनो क्षति नहि, कोनो विकार नहि, कोनो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक दोहन नहि, अजस्त्र ऊर्जा सीमाहीन गगनचुंबी इमारत सन सपना पूर्ति स्थल ए हृदय कने स्पर्श कऽ के तऽ देखहक। समाज एक झोरा थिक, सामाजिक झोरा में आपकताक बतासा अछि, सुख दुखक अनुराग अछि, वैशिष्टता अछि, मधुर संबंधक संवाद अछि, घोर निंदा अछि, कुचेष्टा आत्मानुरागिक। एक बेर झोराक अंदर पैस्त के तऽ देखहक, किछु दिन रहि के तऽ देखहक ई ब्रह्मांड।
1: एखन सुनि रहल छलहुँ कथापाठ, शीर्षक छल झोरा। कथाकार छलाह प्रभाष चंद्र झा, हिनका धन्यवाद दियनि। कार्यक्रममे एखन आओ सुनैत छी ई परिछन गीत स्नेहा वर्माके स्वरमे, सुनल जाय।

समय सान्दर्भिक गीत नाद एखन सुनि रहल छलहुँ स्नेहा वर्माके स्वरमे। श्रोता मित्र, विश्व रेड क्रॉस दिवस प्रत्येक वर्ष 8 मईके मनाओल जाइत अछि। ई दिवस अन्तर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस आ रेड क्रिसेंट आन्दोलनके सिद्धान्तके याद करबा आ मानवीय कार्यक प्रति प्रतिबद्धताके सम्मानित करबाक लेल मनाओल जाइत अछि। एहि दिवसक उद्देश्य दुनिया भरिमे लाखों स्वयंसेवकके मानवीय प्रयासके सम्मानित करब आ संघर्ष आपदा में सुरक्षा सहयोग करब अछि। ई दिवस हेनरी ड्यूना के जयंती पर मनाओल जाइत अछि। ई इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस के संस्थापक छलाह। हेनरी ड्यूना के जन्म 8 मई 1828 में भेल छल। पहिल आधिकारिक रेड क्रॉस दिवस 8 मई 1948 के मनाओल गेल छल। ई संगठन मानवता, निष्पक्षता, तटस्थता, स्वतंत्रता, स्वैच्छिक सेवा, एकता आ सार्वभौमिकता के 7 गोट सिद्धांत पर काज करैत अछि। ई असहाय, घायल सैनिक आ नागरिक के बिना कोनो भेदभाव के रक्षा करैत अछि। आउ एखन कार्यक्रमक समापन से पूर्व सुनैत छी ई झूमर। कलाकार छथि स्नेहा वर्मा, सुनल जाए।

सुमधुर सन झूमर के निश्चिते आनंद उठेने हैब ई पूर्ण विश्वास अछि। श्रोता मित्र, चिड़ै हमरा सभक पर्यावरण के एक गोट अभिन्न अंग अछि। पारिस्थितिकी संतुलन बना कऽ रखबा में एकर भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण थिक। ई परागण से लऽ कऽ कीट नियंत्रण धरि में मदद करैत अछि, मुदा शहरीकरण, आवास विकास आ जलवायु परिवर्तन के कारणे आइ चिड़ै सभक अस्तित्व पर एक गोट बड़का संकट आबि गेल अछि। तैं हमरा सबके एहि पर गंभीर रूपे विचार आ ध्यान देबाक जरूरत अछि। एहि लेल अपन गाछी वा घरक बालकनी में साफ पानिक कटोरा वा मटकूरी राखी। एखन औल के समय में ई आर बेसी जरूरी अछि। संगहि किछु भोजन लेल दाना बीज दऽ सकैत छी। तहिना आवास लेल देसी गाछ लगाबी, जाहि पर ओ अपन खोता बना सकय। गाछी आ फसिल पर कम कीटनाशक के उपयोग करी, जाहिसँ ओकर भोजन सेहो सुरक्षित रहे, जाहिसँ ओकर जीवन चलैत रहे। आइ हमर सभक प्रकृति सेहो सुंदर सुंदर बनल रहय आ ओ संतुलित सेहो रहय। देखू श्रोता मित्र, आर बहुत रास गपसप करबाक हमरा सबके मन छल, मुदा समय आब हमरा सबके अनुमति नहि दऽ रहल अछि जे आर हमसब गपसप करी। तऽ पुनः अगिला कार्यक्रम में अपने सबसे भेंट होयत। ढेर रास गीत नाद, कथा कहानी, लोकगीतक संग उपस्थित होयब। आजुक भारतीय कार्यक्रम सँ प्रभात के विदा देल जाय। बेस तऽ, शुभ साँझ।

भारती, अभी आप ये मैथिली कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। लीजिए सुनिए आज इस सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी।

30 मिनट पर आप सुनेंगे कंट्री वाइड, 9:45 मिनट पर इनसाइट्स। ये कार्यक्रम हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। प्रादेशिक लोक एवं सुगम संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 10 बजे से। ये कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। आज की इस सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की

स्वराज और संगीतकार राजेश रोशन। आइए सुनते हैं कभी अलविदा ना कहना फिल्म का ये गीत सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज में। गीत के बोल लिखे हैं जावेद अख्तर ने और संगीत दिया है शंकर एहसान लॉय ने।

कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं फना फिल्म का ये गीत सोनू निगम और सुनिधि चौहान की आवाज में, प्रसून जोशी की बोल और जतिन ललित का संगीत।

दे आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया, वो छूट जाएगा।

0: फना फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। थोड़ी ही देर में अब संस्कृत समाचार प्रसारित होंगे, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्, प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। आदौ मुख्य वार्ताः। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना ऑपरेशन सिन्दूर इत्यस्य प्रथम वार्षिकोत्सवम् आचरितम्। भयोत्पादनस्य पराजये तस्य सक्षम विधिव्यवस्थायाः विनाशे च भारतस्य प्रतिबद्धतां पुनः दृढीकृतम्। बिहारस्य मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी स्वमन्त्रिमण्डलस्य विस्तारं कृतवान्। नीतीश कुमारस्य पुत्रेण सह द्वात्रिंशत् मन्त्रिणः च नूतन मन्त्रिमण्डले शपथवचनं स्वीकृतवन्तः। तमिलनाडु केरल राज्ययोः सर्वकार निर्माणार्थं तीव्र संवादाः प्रचलन्ति। सर्वकारेण चत्वारिंशत् वर्षतः अधिक वयस्कानां कर्मचारिणां कृते राष्ट्रव्यापी वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षणोपक्रमं समारब्धम्। अपि च आईपीएल क्रिकेट क्रीडायां लखनऊ सुपर जायंट्स दलम् अद्य सायंकाले लखनऊ नगरे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दलं सम्मुखी करिष्यति। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना उक्तं यत् देशः आतंकवादं पराजयितुं तस्य समर्थकं विधिव्यवस्थां च विघटयितुं दृढः अस्ति।

0: नमस्कार सुधा बहन।
1: नमस्कार अर्चना जी।
0: कहीं कैसन वाने?
1: सब बढ़िया है।
0: सब निमन बानो। देखिए आप तो कितना निमन मौसम भी हो गई बा।
1: हाँ, कुछ
0: गर्मी बा लेकिन हाँ तैयो राहत तब बा, लेकिन ये दुरसा मौसम में तनी जाते अपन ध्यान रखे के पड़े।
1: सही बात है, मतलब थोड़ा सा दिमाग भी कंफ्यूज हो जा रहा है कि
0: ठंडा बाकी गर्मी
1: अभी इस समय जो लू चलती है इस समय ऐसा क्या हो गया है। तो इस तरह के जो तापमान में उतार चढ़ाव होते हैं तो स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां तो हो ही जाती हैं।
0: देखिए सबके ठीक रहे के बाद

0: और कहा हमनी के तैसू घर गृहस्थी में बुझी की कई तरह के काम रहेला, लेकिन सुधा बहन
1: सब कुछ देखना है ना, घर परिवार देखना है, बाहर भी आजकल तो भाई बाहर भी महिलाएं जा रही है, तो बाहर भी संभालना है, घर भी संभालना है।
0: और देखिए एक और ही बात पर कि अब हमनी के भंसा भात करीला जा, घर गृहस्थी देखीला, लेकिन बूढ़ सब कुछ करीला जा, लेकिन ओकरा बाद भी कुछ समय हमनी के जरूर बाँचेला, और उस समय में अगर हमनी के हाथ में हुनर बा तो हमनी के दुगो पैसा भी कमा सकता नहीं और घर के आर्थिक स्थिति में भी मजबूती दे सकता नहीं।
1: देखिए ये कहा भी जाता है अर्चना जी कि किसी भी समाज और राष्ट्र की उन्नति तभी संभव है जब वहाँ की महिलाएं शिक्षित हों, जागरूक हों और स्वावलंबी हो। अब स्वावलंबी से यहाँ मतलब है कि अपने पैरों पर खड़ा होना, और यहाँ सिर्फ ये मैं नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ आर्थिक रूप से या सिर्फ रोजगार करने से ही संभव है। स्वावलंबन का अर्थ यहाँ ये भी है कि आप आत्मनिर्भर हो, यानी कि अपने निर्णय स्वयं करें, आप जो भी कार्य हो अपने विचार रख सकती हैं,
0: परिवार में जैसे कोनो महत्वपूर्ण फैसला लेवे के बाद तो दोनों को मिल करके करो,
1: आप इतने मतलब आत्मनिर्भर हो कि आपसे विचार आपके पूछे जाए और आपके विचार सुने जाए। साथ ही देखिए आजकल तो ये है कि इधर उधर जाना है तो गाड़ी वगैरह भी चलाना है, वो भी बहुत अच्छी बात है। तो हर तरह से आप आत्मनिर्भर हो, स्वावलंबी हो, ताकि दूसरे पर निर्भर न करें।
0: अब देखिए कि बाहर के भी काम बहुते होला बहन सुधा बहन, अब लेकिन बड़े बाहर तब उनका के देखे पड़ेला, स्कूल बा कॉलेज में पढ़ते रहे तो उनकर जे काम बा, तो अब आदमी कमावे में लागल बा, नौकरी करता फुर्सत नहीं खे तो रोवा जाके देखे के बा, बैंक के भी काम कखनियो कखनियो हो जाला।
1: हाँ, वो सब भी सीखना भी चाहिए,
0: तो वो सब सीखे के बा
1: तो आता भी नहीं।
0: हाँ, अब देखिए कि आजकल तो मोबाइल के जमाना हो गई बा सबसे, तो मोबाइल के जमाना हो गए तो कई गो चीज तो मोबाइले पे हो जाता। तो जब पढ़ा लिखा
1: है वो मोबाइल मतलब जो भी जितनी सारी तकनीक है सारा कुछ जानती नहीं।
0: हाँ।
1: अच्छा नहीं जानिएगा तो वैसे में एक और खतरा होता है स्कैम होने का, वो सब भी मतलब डिजिटल साक्षर भी होना
0: तो
1: जरूरी है।
0: जानकारी रही तब न, अब ना बुझाइल ओटीपी मंगलस दे देनी, तो इस सब के जानकारी तो होके के चाहिए। तो शिक्षा तो देखिए कि सबसे महत्वपूर्ण, स्वावलंबन के क्षेत्र में अगर हमनी के बात करी जा तो सबसे महत्वपूर्ण है
1: शिक्षा। और शिक्षा का मतलब सिर्फ अक्षर ज्ञान नहीं
0: ना, वो अक्षर ज्ञान के तो मतलब हो गए कि हमने के वो कहानी सुन ले रहे जा कि रटन तो तोता वाला, तो वो तो वह बात हो गए कि वह रट लेनी लेकिन बुझा था ये नहीं है कि ये कर का फायदा होगी, तो वैसा नहीं है करे के। और ये शिक्षा के बात हमने के कही नहीं जा, एक साथ कौशल विकास भी जरूरी बा स्वावलंबन खातिर। अगर रवा हाथ में हुनर बा कुछ सीख ले बानी घर में, जैसे कि हमने के माई से कुछ कुछ सीख ले जा, चाहे चाची बाड़ी घर में तो सिलाई फराई ये सब तो बुझे कि घरे में आदमी सीख लेवेला, अचार बा पापड़ बनावे के बा, ये सब कई कैसन काम बा जे कि हमनी के घरे में देख देख के सीख ले जा।
1: देखिए इसी पर आधारित कई रोजगार भी कर रही है महिला, सिलाई कढ़ाई का हो गया या फिर स्वयं सहायता समूह के माध्यम से भी रोजगार प्राप्त कर रही है।
0: कंप्यूटर अगर सीख ले बानी, ओकर प्रशिक्षण ले बानी, तो बुझी कंप्यूटर में भी कई वो काम बा। तो एक तरह से स्वावलंबी तो हमनी के महिला लोग बन सकता रही, और एक खातिर कई तरह के योजना भी चल रहा बा।
1: देखिए महिलाएं जो है परिवार और समाज की आधारशिला होती हैं। अर्चना जी यदि महिलाएं आत्मनिर्भर होंगी तो परिवार भी मजबूत होगा और समाज का विकास भी तेजी से होगा। एक जो स्वावलंबी महिला होती है वो अपने जीवन के निर्णय स्वयं ले सकती है और कठिन परिस्थितियों का सामना भी आत्मविश्वास के साथ कर सकती है। अक्सर आप देखती होंगी जो पहले की बात कर रही हूँ मैं, कुछ भी समस्या आती है तो लोग अपने पुरुषों का मुंह देखती है जो घर के वही निर्णय लेंगे। तो आज की जो महिला है जो स्वावलंबी है आत्मनिर्भर, वो स्वयं निर्णय ले सकती है कुछ ऐसी कठिन परिस्थिति आती है।
0: करत बारी महिला लोग ऐसा नहीं है, घर में कोनो विकट परिस्थिति आ जाता तो चाहे आर्थिक हो को चाहे कोनो घटना ही घट गई, तो वो स्थिति में आजकल तो देखे में आ रहा बाकी महिला लोग निर्णय भी ले रहल बारी और ओकरा हिसाब से काम भी कर रहल बारी।
1: इतना ही नहीं आज तो कई महिलाएं मतलब घर की जो बेटियां हैं मतलब पूरे परिवार को देख रही है।
0: हाँ, देखी कि पूरा मतलब घर के खर्चा उठा रहल बाड़ी, सब तरह के देखभाल, खाली खर्चे के बात नहीं के पूरा परिवार के देखभाल कर रहल बाड़ी,
1: मतलब सारी जिम्मेदारी।
0: हाँ, एक तरह से देखी कि कई गो रुआ स्वयं सहायता समूह के बात कहनी, तो जेकरा हाथ में हुनर बा स्वयं सहायता समूह से जुड़ करके सिलाई कंप्यूटर जैसन कई गो तकनीकी प्रशिक्षण ले ले के बा, सबसे कारगर तरीका बा एक तरह से स्वावलंबन के। और देखी कि बिहार में भी

मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना आ केन्द्र के भी स्वर्णिम योजना जैसन विकल्प 5 लाख से 2 लाख तक जरा में लोन भी भेट रहा बा तो इहो दिक्कत नहीं है कि हमरा पूंजी कहाँ से भेटी। तो महिला स्वावलंबन कौशल प्रशिक्षण में सिलाई कढ़ाई कंप्यूटर कोर्स ब्यूटिशियन क्राफ्ट मेकिंग चाहे कुकिंग के जे कहल जाला खाना बनावे के कई तरह के कोर्स बा जेकरा में कि केक बनावे के और रंग रंग के आजकल तो बुझी कि इटालियन खाना बा तो मैक्सिकन खाना बा तो चाइनीज खाना बा तो वो सब सीख कर

0: नौजवानों के लिए नौकरी, अपराधियों को दंडित करना है, अब बिहार से अपराधी को भगाना।
1: पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार ने कहा कि लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए वे मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं। उन्होंने कहा कि लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना उनकी प्राथमिकता होगी।
2: सब जनता का प्रेम विश्वास है, उन्होंने लाया है मुझे राजनीति में, मेरे कार्यकर्ताओं ने लाया है मुझे। तुम जो भी विश्वास किया है जनता ने और कार्यकर्ताओं ने मुझ पर, ये जो दायित्व दिया है मैं उसे सच्चाई से ईमानदारी से निभाने की कोशिश करूंगा।
1: राष्ट्रीय लोक मोर्चा के दीपक प्रकाश ने मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने पर एनडीए नेतृत्व के प्रति आभार जताया।
3: जवाबदेही मिली है, इसके लिए सबसे पहले तो माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृहमंत्री देश के, माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, पूर्व के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, गठबंधन के नेता उपेंद्र कुशवाहा जी, चिराग पासवान जी, जीतन राम मांझी जी, आप सबों का धन्यवाद करते हैं आशीर्वाद देने के लिए और विश्वास जताने के लिए। पहले भी जवाबदेही मिली थी तो लोगों के लिए काम किया था, आने वाले समय में भी बिहार की जनता के लिए काम करेंगे।
1: लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने सभी नवनियुक्त मंत्रियों को शुभकामना देते हुए कहा कि अगले 5 साल बिहार के लिए स्वर्णिम काल होने वाला है।
4: युवा जोश सम्राट जी के नेतृत्व वाली ये सरकार, जिसमें एक खूबसूरत मंत्रिमंडल का आज शपथ ग्रहण हुआ, जिसमें हर क्षेत्र हर वर्ग का इसमें ध्यान रखा गया, और मैं मानता हूँ कि ये सरकार अगले 5 साल बिहार को तीव्र गति से विकास की राह पर आगे लेकर जाने का काम करेगी।
1: हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने मंत्रियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि बिहार के विकास के लिए यह ऐतिहासिक दिन है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने राज्य मंत्रिमंडल में शामिल सभी मंत्रियों को शुभकामना देते हुए उम्मीद जताई कि नई सरकार में बिहार नई ऊंचाइयों को छुएगा।
5: जो लोग मंत्री बने हैं सब लोगों को मेरी पूरी शुभकामना है। बिहार की सरकार मजबूती से विकास का काम पहले से कर रही है, अब सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में फिर से बिहार का विकास आगे करती रहेगी।
1: बिहार विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार ने शपथ ग्रहण करने वाले मंत्रियों को शुभकामनाएं दी हैं। इधर वाल्मीकि नगर सांसद सुनील कुमार ने उम्मीद जताई कि राज्य मंत्रिमंडल आम लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने में सफल होगी।
6: सभी मंत्रीगण अपने अपने विभाग का अच्छे से निर्वहन करेंगे और जनता के जो वाजिब तरीका है विकास कैसे होगा उस पर अपना अमल काम करते रहेंगे। सम्राट जी नीतीश जी के मार्गदर्शन में ही एनडीए की सरकार चल रही है और चलेगी। सुशासन का जो मूल मंत्र नीतीश कुमार जी ने दिया था उस पर अच्छे ढंग से काम सरकार करेगी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पटना हवाई अड्डे से शपथ ग्रहण समारोह स्थल गांधी मैदान तक रोड शो किया। इस दौरान सड़क के किनारे उत्साहित लोगों की भीड़ ने प्रधानमंत्री का जोरदार स्वागत किया। श्री मोदी ने हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। इस दौरान विभिन्न सांस्कृतिक और सामाजिक संगठनों की ओर से अलग अलग जगहों पर पारंपरिक नृत्य और गीतों की प्रस्तुति दी गई। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। आज ऑपरेशन सिंदूर के 1 वर्ष पूरे हो गए हैं। आतंकवाद के खिलाफ भारत की निर्णायक कार्रवाई के रूप में याद किए जाने वाले इस अभियान ने देश की सुरक्षा नीति और सैन्य रणनीति को एक नई दिशा दी थी। एक रिपोर्ट।
7: कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं।
8: भय के बिना प्रीति संभव नहीं होती, ठीक कुछ ऐसा ही हुआ भारतीय सशस्त्र बलों के अद्भुत साहस और शौर्य के प्रतिमान ऑपरेशन सिंदूर में, जब भारतीय सैन्य बलों के रणबांकुरों ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में आतंकवादी ठिकानों और आतंकी नेटवर्क की जड़ों को हिलाने वाली सटीक और निर्णायक कार्रवाई की। पिछले वर्ष 6-7 मई की दरमियानी रात भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। इस अभियान में करीब 100 आतंकवादी मारे गए थे। ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की सैन्य क्षमता, तकनीकी दक्षता और त्वरित निर्णय क्षमता को प्रदर्शित किया। यह अभियान भारतीय सशस्त्र बलों के साहस, अनुशासन और राष्ट्रभक्ति का उत्कृष्ट उदाहरण है।
7: कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने ऑपरेशन सिंदूर में सशस्त्र बलों के शौर्य की सराहना की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर सैन्य बलों के शौर्य को नमन किया है। उन्होंने आतंकवाद और इसे बढ़ावा देने वाले तंत्र को नष्ट करने की राष्ट्र की प्रतिबद्धता को दोहराया। रक्षा मंत्री

0: राजनाथ सिंह और कई अन्य मंत्रियों ने भी भारतीय सैन्य बलों के शौर्य को नमन किया है। श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली स्थित कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC से श्रमिकों के लिए राष्ट्रव्यापी वार्षिक स्वास्थ्य जांच पहल की शुरुआत की। इस अवसर पर पटना के बिहटा स्थित ESIC मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस अभियान के अंतर्गत मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 40 साल और उससे अधिक आयु के श्रमिक स्वास्थ्य जाँच करवा सकते हैं। विक्रमशिला सेतु के क्षतिग्रस्त हिस्से की मरम्मती को लेकर आज पटना में पथ निर्माण विभाग की एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। बैठक में IIT पटना और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की टीम के साथ साथ जाने माने पुल तकनीकी विशेषज्ञ आलोक भौमिक मौजूद रहे। सहरसा जिले के महिषी प्रखंड के बलुआहा मध्य विद्यालय में मध्याह्न भोजन खाने से लगभग 300 बच्चे बीमार हो गए। बच्चों को स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। सभी बच्चों की स्थिति खतरे से बाहर है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों गया, जमुई, जहानाबाद, नवादा, खगड़िया और भागलपुर समेत कई जिलों में आज तेज हवा के साथ हल्की से मध्यम बारिश हुई है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पटना जिले में 85 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी के साथ बारिश हुई। पूर्वी चंपारण के तेतरिया में सबसे अधिक 59.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गयी। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया कि कल राज्य के उत्तर मध्य और उत्तर पूर्वी हिस्सों में बारिश की संभावना है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल का हुआ विस्तार। 32 मंत्रियों ने ली पद और गोपनीयता की शपथ। भाजपा से 15, जदयू से 13, लोजपा रामविलास से 2, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा से 1-1 सदस्य मंत्रिमंडल में शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह समेत कई केंद्रीय मंत्री शपथ ग्रहण समारोह में हुए शामिल। और ऑपरेशन सिंदूर के एक वर्ष पूरे, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने सैन्य बलों के शौर्य को किया नमन। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: इधर आइए। इधर
2: इधर
1: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
3: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
2: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
3: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
2: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना। हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612-222-5042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
3: शुभ वाणी,
2: लाभ वाणी,
3: आकाशवाणी।
4: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है बेगूसराय जिले की हलचल। इसे पेश कर रहे हैं हमारे संवाददाता विजय कुमार झा।
5: बेगूसराय में जनगणना 2027 के तहत मकान सूचीकरण और आवास गणना का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। कई विद्यालयों के शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है, जिसकी वजह से विद्यालयों में स्कूलों का पठन पाठन बाधित हुआ है। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने पत्र जारी कर आदेश दिया है कि सुबह 9:30 बजे जनगणना कार्य करने से पूर्व शिक्षक विद्यालय में वर्ग संचालन में सहयोग करें। राज्य सरकार ने 7 निश्चय 3 के तहत बेगूसराय के 18 प्रखंड में 1-1 आदर्श विद्यालय को चिन्हित किया है। इन मॉडल स्कूलों में CBSE पैटर्न पर पढ़ाई के साथ आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने बताया, इससे शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने में मदद मिलेगी।
6: आदर्श विद्यालय बेहतर विद्यालय बने, शिक्षण कार्य से लेकर के सारी व्यवस्था में विद्यालय को बेहतर बनाया जाएगा। इसके अलावा जो है

0: वह विद्यालय हमारे अन्य विद्यालय के लिए एक आदर्श बनेगा, जो अन्य विद्यालय भी इस विद्यालय से सीख लेंगे जो कैसे विद्यालय संचालित बेहतर ढंग से किया जा सके।
1: पश्चिम बंगाल और असम में भाजपा की प्रचंड जीत को लेकर भाजपा जिला अध्यक्ष राजीव वर्मा के नेतृत्व में नगर थाना चौक से विजय जुलूस निकाला गया। ढोल नगाड़े के साथ आतिशबाजी की गई। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। 9 मई को जिले में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, इसे लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। बेगूसराय मुख्यालय स्थित व्यवहार न्यायालय परिसर सहित चारों अनुमंडल तेघरा, बखरी, बलिया और मझौल में एक साथ लोक अदालत लगेगी। इस बार लोक अदालत में ट्रैफिक चालान से संबंधित मामलों का भी निपटारा किया जाएगा। इसमें 90 दिन पुराने ई चालान के निपटारे में 50% तक की छूट दी जाएगी। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव अवर न्यायाधीश करुणानिधि प्रसाद आर्य ने इस बारे में जानकारी दी।
2: इस बार के राष्ट्रीय लोक अदालत में अन्य मामलों के अतिरिक्त ट्रैफिक चालान के मामलों का भी सेटलमेंट होगा। 90 दिन से पुराने जितने भी चालान हैं, उन मामलों में सेटलमेंट होगा। लगभग 50% चालान की राशि में कटौती मतलब कि सेटलमेंट देने का फैसला बिहार सरकार ने किया है।
1: राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार बेगूसराय जिले में प्रस्तावित त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2026 की तैयारी के क्रम में 5 मई को सभी प्रखंडों में वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर तैयार प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की सूची प्रपत्र 1 का प्रारूप प्रकाशन कर दिया गया है। प्रकाशित प्रपत्र 1 में जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, ग्राम पंचायत मुखिया तथा ग्राम कचहरी सरपंच पदों हेतु निर्वाचित क्षेत्रों का विस्तृत विवरण अंकित है। प्रखंड कार्यालय, अनुमंडल कार्यालय और जिला परिषद कार्यालय में लोगों के लिए उपलब्ध करा दिया गया। इसके अवलोकन के बाद किसी तरह की दावा आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है। बेगूसराय के 25 लोक कलाकारों को मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना का लाभ मिलना शुरू हो गया। वहीं 37 कलाकारों को योजना का लाभ जल्द मिलेगा। इस योजना के तहत 50 वर्ष या अधिक आयु के कलाकार आवेदन कर सकते हैं। जिला कला संस्कृति पदाधिकारी ने बताया कि आजीवन 3,000 मासिक पेंशन मिलेगी।
3: बिहार सरकार के द्वारा ऐसे कदम उठाए गए हैं जिससे जो विलुप्त हो रहे कला और कलाकारों को एक नई ऊर्जा मिली है, नया बल मिला है, जिनसे वो अपने बुढ़ापे का में अपना बहुत अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हैं। और आगे योजना है कि सरकार के द्वारा ये राशि बढ़ाई भी जाएगी, तो एक कलाकारों को जो एक मनोबल बढ़ा है। अभी तक तो हमने विभाग को 40 कलाकारों के भेजे थे फर्स्ट में, जिसमें से 25 कलाकार चयनित हुए हैं, उनको पेंशन उनका आरंभ हो चुका है और शेष कलाकारों की अभी प्रक्रिया में वहाँ पे। फिर दूसरे स्लॉट में हमने 22 कलाकारों का भेजा है, तो ये भी प्रक्रिया में है। विभाग से जैसे ही प्रक्रिया पूरी हो जाएगी फिर उनकी भी पेंशन शुरू हो जाएगा।
1: बेगूसराय जिले के मोहनपुर राजकीय कृत मध्य विद्यालय के छात्रों ने संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव को पोस्ट कार्ड संदेश भेजा है। छात्रों ने इस पोस्ट कार्ड के माध्यम से विश्व शांति के लिए अपनी प्रार्थना प्रेषित की है। छात्रों ने मानव हित में शांति प्रयास की अपील करते हुए लिखा है, आज के अशांत समय में हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया युद्ध और नफरत को छोड़कर प्रेम और सहयोग के रास्ते पर चले। हम बच्चे एक ऐसा भविष्य चाहते हैं जहां डर नहीं बल्कि शिक्षा और खुशहाली हो। कृपया युद्ध रोकने और देशों के बीच मित्रता बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करें।
4: अभी आप सुन रहे थे बेगूसराय जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता विजय कुमार झा।

ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है सुगम संगीत। सुगम संगीत के इस कार्यक्रम में आइए सुनते हैं भजन। कलाकार हैं बेगम परवीन सुल्ताना।

0: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। आइए सुनते हैं बिहार सरकार के नव नियुक्त मंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह पर आधारित रेडियो रिपोर्ट।
1: आकाशवाणी पटना से प्रस्तुत है पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित बिहार सरकार के नव नियुक्त मंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह पर आधारित रेडियो रिपोर्ट। बिहार की राजनीति में आज का दिन बड़ा खास रहा। माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के शपथ ग्रहण के ठीक 22 दिन बाद आज दिनांक 7 मई 2026 को बिहार के ऐतिहासिक गांधी मैदान में कैबिनेट का विस्तार किया गया। इस शपथ ग्रहण समारोह में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गरिमामयी उपस्थिति रही। इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का सुबह 11 बजे आगमन हुआ। माननीय प्रधानमंत्री रोड शो करते हुए गांधी मैदान पहुंचे। इस अवसर पर उनके साथ माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार और माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी के साथ साथ अन्य नेता भी उपस्थित थे। इस रोड शो के दौरान माननीय प्रधानमंत्री ने आम नागरिकों का अभिवादन स्वीकार किया, जबकि आम लोगों ने फूलों की बारिश कर माननीय प्रधानमंत्री का स्वागत किया। गांधी मैदान पहुंचने पर सभी गणमान्य व्यक्तियों ने माननीय प्रधानमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान मंच पर बिहार के माननीय राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन, केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री श्री चिराग पासवान, श्री गिरिराज सिंह, श्री जीतन राम मांझी और अन्य गणमान्य जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। कार्यक्रम का शुभारंभ राष्ट्रगान और बिहार गीत से किया गया।

0: शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत माननीय राज्यपाल के मुख्य सचिव श्री गोपाल मीणा ने राज्यपाल की अनुमति से की। इस अवसर पर कुल 31 नए मंत्रियों को माननीय राज्यपाल ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
1: डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ईश्वर की शपथ लेता हूँ। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा एवं निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता एवं अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक एवं शुद्ध अंतकरण से निर्वाहन करूंगा तथा भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं दिलीप कुमार जायसवाल ईश्वर की शपथ लेता हूँ। जो विषय राज्य बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अनिच्छित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसद या प्रकट नहीं करूंगा।
0: माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में पांचों घटक दलों बीजेपी जेडीयू एलजेपी रामविलास हम और आरएलएम के प्रतिनिधियों को नई कैबिनेट में जगह दी गई। बीजेपी कोटे से 12 जेडीयू से 11 एलजेपी रामविलास से 4 हम से 2 तथा आरएलएम से 2 को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। शपथ ग्रहण समारोह की खास बात यह रही कि निशांत कुमार को पहली बार नए कैबिनेट में जगह दी गई। इस कैबिनेट में अनुभव और युवा जोश का तालमेल के साथ साथ सामाजिक समीकरणों का भी पूरा ख्याल रखा गया। इस मंत्रिमंडल में महिला सशक्तिकरण का ध्यान रखते हुए श्रीमती लेसी सिंह, श्रीमती शीला कुमारी, श्रीमती रमा निषाद तथा श्रेसी सिंह को मंत्रिमंडल में स्थान दिया गया। शपथ ग्रहण को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखा गया। समारोह में शामिल महिला ने कहा,
2: मेरा नाम राजकुमारी देवी उर्फ किसान चाची पद्मश्री से सम्मानित है। हमारा घर सरैया हुआ, जिला मुजफ्फरपुर हुआ। आज जब शपथ ग्रहण था हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे, इसमें हमको लोग बुलाए थे, हम आए थे यहाँ पर।

0: कुछ देखे, लेकिन यहाँ पर हम लोग का आशा है, महिला का आशा है कि माननीय मुख्यमंत्री जिस तरह जो अपना चलाए सरकार 20 साल, महिला को सम्मान किए, हम लोग आशा किए हुए कि जो भी मुख्यमंत्री बने, जो भी मंत्री बने, महिला का सम्मान होना चाहिए। काहे कि जो बिहार में सरकार है महिला के ऊपर है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर है, इसलिए कि महिला को घर में भी सम्मान नहीं मिला, लेकिन एक हम लोग के लिए भगवान के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी हैं जो हम लोग को सम्मानित किए और महिला को सम्मान मिला। सबसे पहले हर जाति को आरक्षण दिए, हर जाति को सीट कवर बने, हर हालत में महिला सब सुखी संपन्न है। तो जो मुख्यमंत्री का पद लिए है उनको महिला को सम्मान देना है, तभी बिहार में जदयू बीजेपी का सरकार बनेगा। महिला को सम्मान हमेशा होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी आए वो भी महिला को सम्मानित करते हैं, सबसे बड़ा किसान को वो सबसे ज्यादा प्रमोट करते हैं, हर चीज, हर वृद्धा पेंशन, हर मारे जो भी प्रधानमंत्री का काम है भारत सरकार का, सो बहुत।
1: कुमकुम भारद्वाज, मैं लखीसराय जिले से आती हूँ, और आज का जो शपथ ग्रहण समारोह हुआ है यह कितना प्रशंसनीय है यह शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। ये बिहार के लिए और बिहार के डेवलपमेंट मॉडल को लेकर के जो मैं देखती हूँ हमेशा से भाजपा की सरकार जो बिल्कुल अपने बातों को से ही नहीं अपने कार्यों के माध्यम से हमेशा बुलंद करती रही है, वह यह मंत्रिमंडल में देखने को मिला है। और यह पूरी आशा है क्योंकि आज नीतीश जी को भी स्टेज पे प्रधानमंत्री जी ने अपने हाथों से मतलब उठा करके दिखाया कि हम भारत का विकास किस तरीके से करें, बिहार का विकास किस तरह से करेंगे। और मैं मानती हूँ कि भारत के विकास के लिए जो भारत का प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो 2047 का विकास का मॉडल रखा है, विकसित देश का, विकसित भारत का, उसमें बिहार का जो व्हील है, बिहार की जो का जो पहिया है, उसका चलना और बहुत तेज रफ्तार से चलना यह बहुत जरूरी है। और वह हमें यह पूरी मतलब उम्मीद सिर्फ मैं नहीं कहूंगी, मुझे मैं एकदम विश्वास है हमें इस देश के प्रधानमंत्री पे और इस राज्य की जो व्यवस्था बनने जा रही है नई सरकार में जो गठन हुआ है यह उस मॉडल को काफी आगे बढ़ाएगा।
2: शपथ ग्रहण समारोह में शामिल व्यक्ति ने अपने उद्गार व्यक्त करते हुए कहा,
3: बहुत आनंदित हैं, आह्लादित हैं, दरभंगा से आए हैं हम लोग और आज का दिन ऐतिहासिक दिन हो गया, हम लोग बहुत आनंदित और खुश हैं और पूरे बिहार की जनता भी बहुत खुश है। आज
4: क्या लग रहा है इस बार नई कैबिनेट का विस्तार जो
3: बुलेट ट्रेन की तरह दौड़ेगी यह सरकार, डबल इंजन की सरकार, बिहार की चलेगी बहुत तेजी से रफ्तार और बहुत बेहतरीन काम करेगी और लोगों की आकांक्षा भी पूरा करेगी।
4: सुबह कब से आप लोग यहाँ पहुँचे?
3: नहीं, हम लोग यहाँ आ गए थे 8 बजे।
4: किस तरह से आप देख रहे हैं माहौल के साथ?
3: माहौल तो एकदम, रास्ते में भी आए हैं लोग झूमते हुए आए हैं, यहाँ भी आप नजारा देख रहे होंगे, सब बहुत खुशी और आनंदित महसूस है।
5: मेरा नाम मनीष कुमार है, मैं यही सिपारा और लोकल पटना से हूँ, देखने के लिए ही मैं यहाँ आया था सुबह में। बट सुबह 10 बजे के आसपास मेरे घर के पास मीठापुर जो बस स्टैंड है वहीं पे पहले जाम लग गया, काफी टाइम लग गया वहीं पे, करीब 1.5 घंटा जाम में फंसे रह गए। हालांकि नई सरकार से मुझे बहुत अपेक्षा है और उम्मीद करते हैं कि अच्छा करेंगे भी।
2: कैबिनेट विस्तार समारोह में शामिल छपरा के माननीय सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी ने कहा,
6: बहुत बहुत बधाई देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज बिहार के सरकार का 32 मंत्रियों का विस्तार हुआ और जिस प्रकार से शपथ हुआ जो चेहरा दिखा वो सब नौजवानों का था, अनुभवियों का था और बिहार एक प्रगति के रास्ते पर है ऐसा प्रतीत हो रहा है। आगे सभी मंत्रिमंडल के सदस्यों को बहुत बहुत, मैं राजीव प्रताप रूढ़ी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सबको बधाई देता हूँ।
2: इस अवसर पर वाल्मीकि नगर के माननीय सांसद सुनील कुमार ने अपने उद्गार व्यक्त करते हुए कहा,
7: पूर्व में भी जो सरकार चल रही है वो भी अच्छा काम की है और जो विस्तार आज हुआ है इसमें देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी और गृह मंत्री जी और राजनाथ सिंह जी आए थे, सभी लोगों को शुभकामना है और बधाई है कि अच्छे ढंग से जो बिहार जो है 20 साल के कार्यकाल में नीतीश जी के नेतृत्व में जो सरकार चली उसमें समाज के हर तबके के विकास के लिए काम की गई और उन्हीं के मार्गदर्शन में यह सरकार भी चल रही है। आशा और विश्वास है कि जो है अब की बार जो नया मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है उसमें सभी मंत्रीगण अपने अपने विभाग का अच्छे से निर्वहन करेंगे और जनता के जो वाजिब तरीका है विकास कैसे होगा उस पर अपना अमल काम करते रहेंगे।
2: मंत्रिमंडल के मुख्य चेहरों में श्री रामकृपाल यादव, श्री नीतीश मिश्रा, श्री विजय कुमार सिन्हा, मोहम्मद जमा खान, श्री नंद किशोर राम, श्री मदन सहनी, श्री दिलीप जायसवाल, श्री सुनील कुमार, श्री रत्नेश सदा, श्री श्रवण कुमार और श्री अशोक चौधरी के साथ अन्य शामिल हैं।

0: इसी के साथ बिहार सरकार के नव नियुक्त मंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह पर आधारित रेडियो रिपोर्ट समाप्त हुई। तकनीकी सहयोग अजीत कुमार घोष और गौरव कुमार, संकलन सहयोग रूपेश कुमार रूप एवं हरेंद्र आजाद, स्वर सहयोग संजय किशोर और प्रस्तुति विभूति शंकर एवं मन्नान अली।
1: अभी आप सुन रहे थे बिहार सरकार के नव नियुक्त मंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह पर आधारित रेडियो रिपोर्ट। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
4: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है, आइए सुनते हैं कार्यक्रम बातों बातों में। विनोद कुमार सिन्हा जी से बातचीत कर रहे हैं अंशुमान झा, प्रस्तुतकर्ता विभूति शंकर।
5: श्रोताओं नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम बातों बातों में। आज इस प्रोग्राम में हमारे साथ हैं हमारे बहुत ही खास मेहमान। बहुत ही लंबा करियर रहा इनका, आकाशवाणी से इनका जुड़ाव रहा है और प्रशासनिक करियर भी रहा है, उस काफी अनुभव इनके पास है प्रशासनिक कार्य के भी। तो हमारे आज के मेहमान हैं विनोद कुमार सिन्हा जी। विनोद जी स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में।
6: नमस्कार, धन्यवाद, आपने मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया और हमें ये मौका दिया आपसे बात करने का।
5: ये देखिए आज जहां हम बैठे हैं ये है रिकॉर्डिंग स्टूडियो।
6: जी
5: और हम अपने श्रोताओं को बता दें कि इस रिकॉर्डिंग स्टूडियो से जो आज के हमारे मेहमान हैं विनोद सिन्हा जी, इनका बहुत पुराना नाता रहा है, आज से नहीं पिछले कई दशकों से इनका ये नाता रहा है और ये आज तक चलता रहा है। तो माइक्रोफोन से इनका नाता ये कैसे बना, आगे कैसे बढ़ा और अब तक ये कैसे इतना एक्टिव रह रहे हैं, तो ये हम इनसे जानना चाहेंगे। क्या कहेंगे
6: भाई? देखिए आपका जो ये रेडियो है ना, ये संचार का और आपसी संपर्क का सबसे लोकप्रिय और सशक्त माध्यम है। सैनिक को कोई साधन नहीं है सुदूर इलाकों में, लेकिन रेडियो है उनके पास। तो ये सारी चीज उत्सुकता तो थी इसके प्रति। जब हम लोग बहुत छोटे थे तो रेडियो, जब पहले वॉल्व वाला रेडियो हुआ करता था, जिज्ञासा ऐसी होती थी कि जब मैकेनिक कभी आता था रेडियो बनाने के लिए तो हम लोग उसमें ताक झांक करते थे, इसमें आवाज निकलती है तो कहीं कौन बोलता है,
5: बैठा तो नहीं,
6: कौन बोलता है इसमें। और मैं बताऊंगा आपको कि इस केंद्र से मेरा जुड़ाव 1975 में, 74 में आपके यहाँ युवाणी कार्यक्रम की शुरुआत हुई और एक वार्ताकार के रूप में 75 में मैं जुड़ा पहली बार,
5: युवा वार्ताकार
6: के रूप में। किशोर उम्र थी, मैट्रिक की परीक्षा मैंने दी थी

0: एक लघुवार्ता के साथ मैं जुड़ा था और मैं भाग्यशाली हूँ कि कार्यक्रम अधिशासी थी विजयलक्ष्मी सिन्हा। तो वो उन्होंने काफी सपोर्ट किया, पहला प्रयास था, काफी उन्होंने सपोर्ट किया हमें और प्रोग्राम वो सफल रहा। मैं दिल की बात बताऊं, उसके बाद एक चस्का सा लग गया इस केंद्र से जुड़ने का। फिर तो
1: जब आप अपने घर से रेडियो स्टेशन आया करते थे, आकाशवाणी केंद्र आया करते थे, तो कैसा माहौल था, सड़कें कैसी थी, लोग कैसे थे, मकान कैसे थे, मतलब कैसा दृश्य हुआ करता था? और आपके दिल में आकाशवाणी केंद्र जा करके प्रोग्राम करने की जो खुशी रही होगी उसके बारे में भी बताएं।
0: देखिए, उस समय तो दूरदर्शन भी नहीं था और रेडियो ऐसा माध्यम था कि मैं आपको बताऊं, हम लोगों का एक पाक्षिक कार्यक्रम हुआ करता था, कॉमेडी प्रोग्राम हुआ करता था, वो हंसिए हंसाइए गुनगुनाइए।
1: क्या
0: वो सौभाग्य ऐसा रहा कि इतना लोकप्रिय हुआ कि लोग देख तो नहीं पाते हैं, लेकिन एक दिन छठ के घाट पर मैं खड़ा था और बगल में उस कार्यक्रम की चर्चा हो रही थी। ये चीज है, ये मैंने कहा कि एक एक आदमी तक आप पहुंच पाते हैं। और दूसरा माध्यम भी नहीं था, टीवी वगैरह तो बाद में आया, रेडियो उस समय एकमात्र माध्यम था।
1: और देखिए, उस माध्यम को आकाशवाणी के प्रसारण के 90 शानदार वर्ष भी अब पूरे हो चुके हैं।
0: हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। रेडियो ने सबसे बड़ा चीज जो मुझे दिया वो एक तो मंच दिया, लिखने पढ़ने का शौकीन हूँ तो वो एक जगह दी मुझे कि अपनी बातें मैं रख सकूं, अपने विचार में अभिव्यक्त कर सकूं, और उससे बढ़कर एक से एक दिग्गज लोगों के साथ जुड़ाव बढ़ा जो संभव नहीं था।
1: अच्छा, तो उस दिन जिस दिन आपकी रिकॉर्डिंग थी आपके आपके वार्ता की,
0: जी,
1: तो पहली बार जब आप आ रहे थे आकाशवाणी, तो कैसे आए थे आप उस जमाने में? क्या ये रिक्शा चला
0: समय? तो उस समय तो हम लोग बिल्कुल, मैंने बताया कि मैंने मैट्रिकुलेशन किया था और साइकिलिंग किया करते थे हम लोग साइकिल से रेडियो आते थे और वार्ता करते थे। और यही नहीं, उन दिनों उस वार्ता के लिए मुझे 15 रुपए का चेक मिला था आपके यहाँ से, और वो रिजर्व बैंक का।
1: क्या बात।
0: और हमारे एक संबंधी उन दिनों रिजर्व बैंक में थे, वो लोगों को दिखा रहे थे कि देखो मेरा ये कजन है, ये रेडियो पर प्रोग्राम करके आया है। वो समझ लिए कि इतना बड़ा पुरस्कार था कि कह नहीं सकते हैं।
1: और आपने बताया कि उस समय पेक्स थी विजय लक्ष्मी मैडम।
0: जी,
1: तो उस समय स्टेशन डायरेक्टर कौन थे? क्या आपकी भेंट हुई उनसे कभी, उस जमाने के स्टेशन डायरेक्टर से?
0: नहीं, उन दिनों तो नहीं, किसी भी केंद्र निदेशक से पहली मुलाकात यहाँ हुई। मैं बताऊं, 77-79 मेरा ग्रेजुएशन का बैच था और 80 में सेशन लेट होने से मैं 80 में आया था आपके यहाँ। युवाणी का ही एक प्रोग्राम हुआ करता था, मेरी पसंद, फिल्मी गानों पर आधारित।
1: जी, आज तक वो चल रहा है?
0: हाँ, वो चल रहा है
1: जी।
0: उसको पेश करने के लिए मैं आया था, अनाउंसमेंट कर पाऊंगा मैं खुद कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन यहाँ के सीनियर उद्घोषक हुआ करते थे, वो इस प्रोग्राम को सुन रहे थे, प्रोग्राम लाइव प्रोग्राम हुआ करता था। प्रोग्राम के बाद उन्होंने मुझे टोका कि आप ग्रेजुएशन कर गए हैं? मैंने कहा कि अभी जस्ट रिजल्ट हुआ। तो बोले कि आकस्मिक उद्घोषकों की मांग है यहाँ, आप आवेदन कर दें। मैंने कहा कि क्या मजाक कर रहे हैं, मैं और अनाउंसमेंट करूंगा? तो बोले कि ऐसा क्या है। मैंने ऑडिशन दिया और ऑडिशन की बात मैं बताऊं, ऑडिशन के बाद जो मैं बाहर निकला, मेरे दोनों हाथ बिल्कुल भीगे हुए थे, टप टप पानी टपक रहा था, इतना नर्वस था मैं। लेकिन भोजपुरी और युवाणी दोनों के लिए मेरा चयन हुआ और युवाणी के आकस्मिक उद्घोषक के रूप में मैंने शुरू किया काम यहाँ। मैं खुद कॉन्फिडेंस नहीं था कि कैसा होगा, लेकिन शनिवार रविवार दो दिन मैंने काम किया। सोमवार के दिन कार्यक्रम अधिशासी ने मुझसे कहा कि निदेशक थे श्री सत्य प्रकाश नारायण किरण, बड़े विद्वान आदमी और रेडियो वो सुनते थे, उनके कहने पर मैं उनसे मिलने गया और उन्होंने मेरा पीठ ठोका, बोले कि बहुत अच्छा कर रहे हो। वो मेरे लिए जस्ट एक शाबाशी नहीं थी, मेरा आत्मबल जो मेरा कॉन्फिडेंस लूज कर रहा था मैं अपने अंदर, वो उन्होंने बढ़ाया,
1: वो वापस आया
0: और तब पूरे निर्भीकता के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मैं इस केंद्र से जुड़ सका। और उसके बाद तो कई कार्यक्रम
1: उसके बाद तो आपने हर तरह के प्रोग्राम किए, फिल्म म्यूजिक का भी प्रोग्राम किया है, आपने ड्रामा में भी कभी पार्ट लिया?
0: हाँ, ड्रामा आर्टिस्ट के रूप में हम समझते हैं कि 4-5 साल रहा, उसके बाद नौकरी में आ गया राज्य सरकार की, तो नौकरी में आने के बाद व्यस्तता कुछ वैसी रही कि वो आगे जारी नहीं रख सका। देखिए, लेखन के प्रति मेरा झुकाव, या खास के कहानी लेखन के प्रति मेरा झुकाव, पहली बार जब मैंने फणीश्वास रेणु साहब को देखा था बहुत छोटपन में,

0: उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, मुझे भी कुछ लिखना चाहिए,
1: कुछ लिखना चाहिए।
0: फिल्म तीसरी कसम का एक गीत, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई।
1: क्या बात है, बहुत बहुत बढ़िया गाना चुना है आपने। तो श्रोताओं, पहले सुनते हैं ये गाना और फिर इस कार्यक्रम में विनोद जी से हमारी बातचीत यूं ही चलती रहेगी। कहीं मत जाइए, सुनते रहिए आकाशवाणी पटना।

0: इस गाने के बाद एक बार फिर आप सभी श्रोताओं का स्वागत है कार्यक्रम है बातों बातों में। और आज बात हो रही है हमारे स्टूडियो में हमारे साथ हैं हमारे बहुत ही खास मेहमान जिनके पास है आकाशवाणी में काम करने का अनुभव, प्रशासनिक अनुभव और बहुत ही बढ़िया लेखक भी है, कलाकार भी हैं। आप हैं विनोद कुमार सिन्हा जी। तो आपसे बात हो रही थी सिन्हा जी कि कैसे आपके मन में लेखन की ललक जग गई जब आपने अपने बचपन में देखा था फणीश्वरनाथ रेणु को।
1: मैं बताऊं, लगभग 10वीं क्लास में मैं उस उन दिनों पढ़ता था और शाम में जहां हम लोग रहते थे नज़दीक में ही एक सेमिनार चल रहा था, इसका भारतीय भवन संस्था की तरफ से एक सेमिनार आयोजित था, उसमें फणीश्वरनाथ रेणु अपना बोल रहे थे और उन दिनों एक उनकी कहानी थी हमारे पाठ्यक्रम में। तो जब उनकी बातें मैंने सुनी इतना उन्होंने प्रभावित किया, आज हम लोग खुश नसीब हैं कि वो पल हम भूल नहीं सकते हैं। और उसके बाद पहली बार स्कूल पत्रिका के लिए मैंने लिखा, एक परिकथा जैसे लिखा मैंने, और उसके बाद की तो बात मैंने बताई आप।

0: यहाँ युवाणी शुरू हुई और रेडियो से जुड़ने के बाद ये सिलसिला जो चला, काफी कुछ लिखने को मिला हिंदी में भी, भोजपुरी में भी। मैं एक बात और यहाँ बताऊं, भोजपुरी में मेरी कहानी जो प्रसारित हुई थी, उन दिनों मैं थर्ड ईयर में पढ़ता था, हमारे उस समय जो कार्यक्रम अधिशासी थे उन्हें भारत सरकार ने फीजी भेजा था कुछ भोजपुरी की रिकॉर्डिंग के साथ। उन्होंने मुझे बताया था कि जो रिकॉर्डिंग जा रही हैं उसमें मैं आपकी कहानी भी लेके जा रहा हूँ। मैंने बोले कि वहाँ लोग भोजपुरी बोलते हैं, मैं आपकी कहानी लेके जा रहा हूँ। बहुत बड़ी उपलब्धि मेरे लिए थी।
1: सच में वाकई। अच्छा, साहित्य जो आकाशवाणी में तब भी और अब भी जो भी साहित्य यहाँ से प्रसारित होता है उसे काफी करीब से पहले देखा समझा जाता है और उसके बाद ही यहाँ से कोई कहानी या किसी कविता का प्रसारण होता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और यही आकाशवाणी की महत्ता है। और ये जो बीज जो है, नवाचार के बीज कह ले या साहित्य के बीज कह ले, जब ये श्रोताओं तक पहुंचते हैं ध्वनि तरंगों के माध्यम से, तो एक अंकुर का, किसी के मन में एक विचार का अंकुरण होता है।
0: हाँ हाँ हाँ।
1: और तब हमें ऐसा लगता है कि जो प्रसारण है हमारा वो सार्थक हो गया हो।
0: बिल्कुल। हम आज भी जो लोग रेडियो के लिए कार्यक्रम करते हैं उनसे हम ये गुजारिश करेंगे कि आदमी की जिंदगी में तनाव कम नहीं है। आदमी अपने आम जिंदगी में बहुत तनावग्रस्त रहता है, लेकिन जब आप माइक्रोफोन के सामने बैठते हैं, आपकी ड्यूटी बनती है, यू मस्ट लव योर माइक्रोफोन। अपने माइक्रोफोन से आप प्यार करें और लोगों से खूब प्यारी प्यारी बातें करें, खुल के बातें करें, सब कुछ भूल कर लोग आपको सुनेंगे, आप पूरे यकीन के साथ सुनेंगे, पूरी चाहे माध्यम कोई भी हो। आज भले ही टीवी आ गया हो और
1: सोशल मीडिया
0: का जमाना है, लेकिन अगर आप बढ़िया प्रोग्राम करेंगे, और एक चीज और, रेडियो में एक बहुत बड़ी खासियत है, आपकी पर्सनालिटी चाहे जो भी हो, आपके पास अगर आवाज का जादू है, आप लोगों को सम्मोहित कर सकते हैं, हमारा दावा है।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और देखिए कि रेडियो के साथ जो आपका नाता रहा है, यहाँ से जो आपने कुछ सीखा और जो तत्व आपके अंदर था उसको मिला करके आपने और भी बहुत तरह के प्रोग्राम्स बनाए हैं और सोशल मीडिया पे भी आप लगातार एक्टिव रहते हैं और कई फिल्मी सितारों पे आपने बहुत सारे प्रोग्राम्स बनाए हैं, तो ये करने की प्रेरणा कहाँ से मिली और इतना सारा मेटेरियल आपने इकट्ठा कैसे किया?
0: देखिए, कभी कुछ चीजें ऐसी होती है ना कि आदमी चाहता नहीं है, उसकी एक आदत बन जाती है, वो छोड़ ही नहीं सकता है। जब तक नौकरी का तनाव था, नौकरी की व्यस्तता थी, क्रिएटिविटी का बहुत कम मौका मिलता। हालांकि जहां भी मैं रहा, मेरा सौभाग्य है कि सरकारी स्तर पर जो भी सांस्कृतिक आयोजन होते रहे उनमें कहीं ना कहीं मैं नोडल के रूप में काम करता हूं, और जहां भी रहा कला संस्कृति को मैंने खुल के प्रोत्साहित किया, कला संस्कृति कलाकारों को प्रोत्साहित मैंने किया, इसके मंच दिया, सब कुछ दिया। लेकिन जब अवकाश ग्रहण कर लिया तो मुझे लगा कि नहीं, वो छटपटाहट जो होती है ना आदमी के अंदर, वो कहीं ना कहीं निकलनी चाहिए। और तब शुरुआत मिमिक्री की तरह था कि एक ही डिफरेंट प्लेबैक सिंगर्स कैसे चाय बेचते हैं, तो वो एक मैंने तैयार किया था और उसको पहली बार यूट्यूब पर मैंने डाला और फिर एक कंप्यूटर प्रोग्राम करके शुरू किया, और उसके बाद तो फिर फिल्मी हस्तियों के लाइफ स्टोरी को लेकर के निरंतर जारी।
1: और ये जो इनका सफर है फिल्मी सितारों पर, जो इन्होंने प्रोग्राम्स किए हैं वो काफी लोकप्रिय भी है, और इनके पास, हम अपने श्रोताओं को बता दें, काफी जानकारी और काफी रिसर्च करने के बाद ही ये कोई प्रोग्राम बनाते हैं, जो कि आकाशवाणी की भी खासियत है।
0: देखिए, किसी भी काम को जब आप करते हैं, मेरी एक कमजोरी रही है कि जब तक मैं खुद अपना क्रिटिक में खुद रहा हूं, जब तक मैं पूरी तरह खुद संतुष्ट नहीं हो जाता, लोगों के सामने उसको रख ही नहीं पाता हूं। कई बार उस पर मंथन करना पड़ता है मुझे।
1: बिल्कुल, और ये आदत हमें रखनी चाहिए।
0: जी जी।
1: लगभग जो भी काम हम करते हैं हमारे डेली लाइफ में, जितने भी काम है, उन कामों को में भी हमें ये आदत रखनी चाहिए।
0: हाँ हाँ।
1: कि एक और बात है विनोद जी, जो बड़ी अच्छी बात मुझे याद आई है कि आपके जीवन में आप वैसा काम करें जिससे कि निजी जीवन और सार्वजनिक जीवन में आपको किसी प्रकार का कष्ट ना हो।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: आपकी सोच, आपके विचार, आपके कार्य, आपका एक्शन, आपके हाव-भाव ऐसे होने चाहिए जिससे कि अगर ये निजी जीवन में आप कर रहे हैं या सार्वजनिक जीवन में आप कर रहे हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आपका व्यवहार एक जैसा होना चाहिए। और ऐसे व्यक्ति ही आगे बढ़ते हैं और सफलता के शिखर तक पहुंचते हैं।

0: बताऊं आपको, मुझे कई जिम्मेवारियां भी मिली अपने करियर में, मगर जहां भी मेरा आम आदमी से हर जगह एक सीधा संपर्क रहा। कई लोग इसको तरह तरह से लेते थे, लेकिन मेरा गरीबों की झोपड़ियों में बैठकर मैं उनसे बातें करता था, उनकी समस्याओं को सुनता रहा और उसका समाधान कैसे होगा। हालांकि दुर्भाग्य है, कई बार जो लोग ट्रेडिशन जो निर्णय इससे बने हुए हैं, कोई सुधार नहीं चाहते हैं, वो उनके बीच उसका ये होता रहा कि कैसे काम करता है, कैसे क्या करता है। लेकिन पता नहीं, मैं तो हर लोगों शाम में भी काम खत्म होने के बाद जब शाम में निकलता था, एक एक लोगों से मिलता था, जुलता था, लोगों की बातें सुनता था। ये एक आदत बन जाती है और ये रेडियो ने सिखाया। हम लोग एक ओबी प्रोग्राम करते थे, मजदूरों की रिकॉर्डिंग हम लोग सड़कों पे जाकर उनकी बातें सुनते थे, वो युवाणी में आपके यहाँ हम लोग
1: जी
0: बनाते थे ओबी बेस्ट प्रोग्राम। उसमें उनके कैसे वो काम करते हैं, कैसे उनका लाइफ स्टाइल है, ये सब पर हम लोग प्रोग्राम बनाते थे, ये सब ताकि लोग उनकी स्थिति को समझ सके।
1: ये जो है ये पाठ पढ़ा है आपने और इस पाठ को लेकर के आप आगे चले हैं। चलिए, अब कार्यक्रम में वक्त है, एक और गाना हम अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं। कौन सा गाना श्रोताओं को सुनवाएंगे?
0: भाई देखिए, मुकेश साहब शुरू से मेरे फेवरेट रहे हैं।
1: हाँ, जी।
0: और मुकेश साहब के बहुत सारे दर्द भरे नगमे हैं, लेकिन उनमें मेरा नाम जोकर का, जाने कहां गए वो दिन, उसकी शुरुआत आप देखें, इतना बढ़िया उस गाने की शुरुआत है, आप बिल्कुल खो जाएंगे। तो हम सुनते हैं उसको।
1: चलिए सुनते हैं ये गाना।

0: तो श्रोताओं, गाने के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम है बातों बातों में। और आज बातों ही बातों में बहुत सारी बातें निकल के सामने आई हैं, और बातें निकल के सामने आनी भी चाहिए थी, क्योंकि हमारे आज के मेहमान, बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ हमारे स्टूडियो में हैं। आप हैं विनोद कुमार सिन्हा जी, लंबे समय से आकाशवाणी से जुड़े रहे और अन्य कार्य में भी इनकी काफ़ी रुचि रही है। तो विनोद सिन्हा जी, उस दौर का जो पटना था, आज दौर का जो पटना है, बिहार है, काफ़ी कुछ बदल गया है। और हमारे युवा जो है, उनकी आकांक्षाएं, जो उनका एम्बिशंस है, जो उनकी सोच है, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा अंतर आ चुका है। तो अब उस दौर को देखते हैं, इस दौर को देखते हैं, क्या अंतर पाते हैं और क्या युवाओं को सलाह देना चाहेंगे?
1: देखिए, आज का युवा, उस समय टेक्नोलॉजी कम थी, लोग डेवलपमेंट कर रहे थे, लेकिन शहर भी पटना काफ़ी कुछ बदला है। इतने दिनों में काफ़ी कुछ बदल गया है। बहुत सारे सड़कें अच्छी हो गई हैं, पुल पुलिया वगैरह बना है, इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी कुछ बदला है। आज का युवा, उसके बावजूद उसकी अब सोच बदल गई है, वो उसमें छटपटाहट एक है कि हम क्या करें। तो सबसे पहले हमारा सुझाव है कि अपना कैरियर आप खुद पहले डिसाइड करें और उसके लिए पूरे लगन से लगें। ये नहीं कि हम ये बनना चाहते हैं और हो गया,
0: केवल सोचने से कुछ नहीं है।
1: उसके लिए आप कैरियर स्कूलिंग के समय से आप जिंदगी में आपको क्या करना है वो डिसाइड आप कर लें और तब उसी क्षेत्र में आप बढ़ें।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका विनोद सिन्हा जी, आज आपने समय निकाला, हमारे स्टूडियो आए और इतनी अच्छी बातचीत की। बातों ही बातों में हमने बहुत सारी बातें कर ली हैं। तो श्रोताओं, अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बातों बातों में, विनोद कुमार सिन्हा जी से बातचीत कर रहे थे अंशुमन झा, प्रस्तुतकर्ता विभूति शंकर। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है।

हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। थोड़ी ही देर में अब समाचार प्रसारित होंगे, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। राष्ट्र ने ऑपरेशन सिंदूर का पहला वर्ष पूरा होने पर सशस्त्र बलों की वीरता और बलिदान को नमन किया। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने इस ऑपरेशन को आतंकवाद के खिलाफ भारत के अटूट संकल्प का निर्णायक प्रमाण बताया। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने विधानसभा भंग की। तमिलनाडु और केरल में सरकार गठन के लिए बैठकों का सिलसिला जारी। रेलवे 40 वर्ष पुरानी प्रणाली के स्थान पर अगस्त से उन्नत यात्री आरक्षण प्रणाली लागू करेगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अधिकारियों को उन्नयन को सुचारू बनाने के निर्देश दिए। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम ने कहा, उनका देश और भारत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। और तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में भारतीय महिला रिकर्व टीम दक्षिण कोरिया को हराकर फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र ने ऑपरेशन सिंदूर का पहला वर्ष पूरा होने पर आज सशस्त्र बलों के साहस, प्रतिबद्धता और सर्वोच्च बलिदान को नमन किया। पिछले वर्ष इसी दिन भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन के अंतर्गत पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों पर हवाई हमले कर 100 आतंकवादियों को मार गिराया था। ये पिछले वर्ष 22 अप्रैल को पाकिस्तान प्रायोजित पहलगाम आतंकवादी हमले का भारत की ओर से मुंहतोड़ जवाब था। इस अवसर पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर को आतंकवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरों के खिलाफ देश के अधिक रुख की ऐतिहासिक अभिव्यक्ति बताया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और सूचना तथा प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ऑपरेशन सिंदूर की वर्षगांठ पर भारतीय सशस्त्र बलों के शौर्य और बलिदान को नमन किया है। पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने दोषियों को कड़ी सजा देने का संकल्प लिया था।
4: इंडिया विल आइडेंटिफाई, ट्रैक एंड पनिश एवरी टेररिस्ट एंड देयर बैकर।
5: टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता।
3: इस बीच नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई को मजबूत करने के लिए काम करता रहेगा।
6: पूरे दुनिया ने देखा किस प्रकार के बर्बरता के साथ पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ था, जिसमें 26 मासूम लोगों की जानी गई थी। हम लोगों ने पाकिस्तान को उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के जरिए मुंहतोड़ जवाब दिया। उनके सीमा पार से आतंकवाद

0: के समर्थन के लिए। पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान सीमा पार से आतंकवाद को एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी की तरह उसका इस्तेमाल करता है।
1: बांग्लादेशी घुसपैठियों के बारे में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि देश में अवैध रूप से रह रहे किसी भी विदेशी नागरिक को देश के कानूनों, प्रक्रियाओं और व्यवस्थाओं के अनुसार वापस भेजा जाना चाहिए।
0: जो लोग अवैध ढंग से हमारे यहाँ रह रहे हैं, इसमें हमको बांग्लादेश की सहयोग चाहिए ताकि वो उनको रिपेट्रिएट किया जाए अपने देश। पिछले कुछ साल में 2860 से ऊपर ऐसे मसले हैं जिसमें हम लोगों ने राष्ट्रीय सत्यापन के लिए बांग्लादेश को खबर किया है और ये सभी मामले उनके यहाँ लंबित हैं। हमारा ये नीति है कि जो भी विदेशी नागरिक हमारे यहाँ अवैध रूप से रह रहा है वो उनको अपने देश जाना पड़ेगा।
1: कनाडा में खालिस्तानी समूहों के बारे में प्रवक्ता ने कहा कि चरमपंथी और अलगाववादियों का कनाडा की जमीन को सुरक्षित पनाहगाह के रूप में इस्तेमाल करना चिंता का विषय है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल में नई सरकार के गठन की तैयारियों के बीच विधानसभा को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया है। राज्यपाल आरएन रवि ने संविधान के अनुच्छेद 174 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए आज मौजूदा विधानसभा को भंग करने का आदेश जारी किया। ये सत्ता हस्तांतरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि राज्य शनिवार को शपथ ग्रहण के साथ अपनी अगली सरकार के गठन की ओर अग्रसर है। एक रिपोर्ट।
4: बंगाल में भारी बहुमत से जीत के बाद बीजेपी नए सरकार की शपथ ग्रहण समारोह को राष्ट्रीय स्तर का राजनीतिक कार्यक्रम का रूप देना चाहती है। अगले शनिवार रविन्द्र जयंती के दिन ब्रिगेड परेड ग्राउंड में बंगाल की पहली बीजेपी सरकार की शपथ होगी। दो दिन पहले से ही ब्रिगेड में मंच और सुरक्षा तैयारियों का काम शुरू हो गया है। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, जेपी नड्डा सहित कई केंद्रीय नेता मौजूद रह सकते। इसके साथ ही बीजेपी और एनडीए शासित विभिन्न राज्य की मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों को भी आमंत्रित किया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए कलकत्ता से अभिरूप भट्टाचार्य।
3: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल कोलकाता पहुंचेंगे। वे नव निर्वाचित भाजपा विधायकों के साथ बैठक में शामिल होंगे, जिसमें पार्टी के विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा। इस बीच राज्य में भारतीय जनता पार्टी नेता शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक की हत्या के सिलसिले में पुलिस ने सिलीगुड़ी के शिव मंदिर निवासी विलियम जोसेफ को हिरासत में लेकर पूछताछ की है। आरोप है कि कल रात कोलकाता के मध्यम ग्राम में भाजपा नेता के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या करने वालों ने उनकी कार की नंबर प्लेट का इस्तेमाल किया था। 3 घंटे की पूछताछ के बाद पुलिस ने उन्हें इस आश्वासन पर रिहा कर दिया कि वे आगे की जांच में सहयोग करेंगे। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी तमिलग वेत्रिकड़गम टीवीके पार्टी का सरकार गठन के लिए बहुमत सिद्ध करने के मुद्दे पर गतिरोध बना हुआ है। दिन भर राज्य की राजनीति में बहुमत का आंकड़ा प्राप्त करने के लिए जोरदार प्रयास जारी रहे। एक रिपोर्ट।
5: दिन की शुरुआत टीवी के प्रमुख जोसेफ विजय और राज्यपाल विश्वनाथ अरलेकर की बैठक से हुई। बैठक में नई सरकार बनाने के लिए बहुमत साबित करने पर चर्चा हुई। राज्यपाल ने कहा कि सॉलिसिटर जनरल एल सुंदरेशन की कानूनी राय लेने के बाद इस मुद्दे पर विचार किया गया। सिंगो तैयान और सीटीआर निर्मल कुमार जैसे टीवी के नेताओं ने सीपीआई और सीपीआईएम के नेताओं से उनकी पार्टियों से समर्थन मांगा। इस बीच एआईएडीएमके भी आज रात पुदुचेरी में पार्टी के महासचिव एडप्पाडी पलानी सामी के नेतृत्व में विधायक दल की बैठक कर रही है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज। उधर

0: केरलम में कांग्रेस हाईकमान नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी एआईसीसी पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों पर विचार करने के बाद नए मुख्यमंत्री के चयन पर निर्णय की घोषणा करेगी। केरलम प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष सनी जोसेफ ने बताया है कि आज सुबह तिरुवनंतपुरम में हुई विधायक दल की बैठक में एआईसीसी अध्यक्ष को कांग्रेस विधायक दल के नेता का चयन करने का अधिकार देने वाला प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: कांग्रेस विधायक दल की बैठक में केंद्रीय पर्यवेक्षकों ने नव निर्वाचित विधायकों से नेतृत्व के मुद्दे पर चर्चा की। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सनी जोसेफ ने कहा कि ये पर्यवेक्षक अपनी रिपोर्ट पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को सौंपेंगे। इस बार निर्वाचित विधायकों में वीडी सतीशन और रमेश चेन्नीथला सहित वरिष्ठ नेता शामिल हैं। वहीं वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल वर्तमान में सांसद हैं। केंद्रीय पर्यवेक्षकों ने आज संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा के विभिन्न घटक दलों के साथ भी चर्चा की। राजनीतिक सूत्रों के अनुसार कांग्रेस विधायक दल के नेता और अगले मुख्यमंत्री के में अंतिम निर्णय इस सप्ताह के अंत तक लिया जा सकता है। शपथ ग्रहण समारोह राज्यपाल के चेन्नई से लौटने के बाद ही होने की संभावना है। राज्यपाल वर्तमान में तमिलनाडु से संबंधित आधिकारिक कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं। तिरुवनंतपुरम से स्मृति पल्लू की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: असम में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ ग्रहण करेगी। शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों के लिए आज गुवाहाटी में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि शपथ ग्रहण समारोह गुवाहाटी में होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। पटना के गांधी मैदान में आयोजित एक भव्य समारोह में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन ने 32 मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मंत्रिमंडल में अब भाजपा के 15, जनता दल यूनाइटेड के 13, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के 2 और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा तथा राष्ट्रीय लोक मोर्चा से एक एक मंत्री हैं। शपथ लेने वाले मंत्रियों में जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार सरकार में शपथ लेने वाले सभी मंत्रियों को बधाई दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: ये आकाशवाणी है। रेल मंत्रालय ने कहा है कि रेलगाड़ियों को उन्नत यात्री आरक्षण प्रणाली में बदलने की प्रक्रिया अगस्त में शुरू हो जाएगी। नई दिल्ली में आज समीक्षा बैठक में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि रेलगाड़ियों को 40 वर्ष पुरानी आरक्षण प्रणाली से नई प्रणाली में बदलने के दौरान यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। एक रिपोर्ट।
2: यह आरक्षण प्रणाली वर्ष 1986 में शुरू की गई और पिछले 40 वर्षों में इसमें कई बदलाव किए गए हैं। अब अत्याधुनिक तकनीक के इस्तेमाल से इसकी क्षमता का व्यापक विस्तार किया गया है। भारतीय रेलवे ने वर्ष 2002 में इंटरनेट आधारित टिकट सेवा शुरू होने के बाद से लगातार डिजिटल परिवर्तन को अपनाया है। इसी परिवर्तन के अंतर्गत भारतीय रेलवे ने पिछले वर्ष जुलाई में रेल वन मोबाइल ऐप लॉन्च किया था। रेल मंत्रालय ने बताया कि यह ऐप यात्रियों के बीच तेजी से लोकप्रिय हुआ है। रेल वन ऐप में अब AI आधारित कंफर्मेशन की संभावना की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। यह नई सुविधा इस साल की शुरुआत से ही लागू की गई है, जिसे लोगों द्वारा काफी पसंद किया जा रहा है। इस पर वेटिंग टिकट के कन्फर्म होने के अनुमान की सटीकता पहले के 53% से बढ़कर अब 94% तक हो गई है। अक्षत कुमार वेद्यान के साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम ने कहा है कि बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत और वियतनाम के पास वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का एक बड़ा अवसर है। मुंबई में आज भारत वियतनाम व्यापार मंच को संबोधित करते हुए श्री लाम ने कहा कि भारतीय कंपनियों को वियतनाम में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया जाए। कार्यक्रम में 8 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर भी किए गए। चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने फाइनल में पहुंचकर पहला पदक पक्का कर लिया है। सेमीफाइनल मुकाबले में आज भारत ने

0: हेरफेर करते हुए वर्तमान विश्व विजेता दक्षिण कोरिया को 5-1 से हराया। फाइनल में दीपिका कुमारी, अंकिता भगत और कुमकुम मोहोत को टीम का सामना चीन से होगा। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला बारिश के कारण रुका हुआ है। मैच रुकने तक लखनऊ ने 9 ओवर में बिना किसी नुकसान के 95 रन बना लिए थे। इससे पहले बेंगलुरु ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए केरल, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, तटीय कर्नाटक और रायल सीमा में कल तेज हवाओं और गरज के साथ बारिश हो सकती है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्र ने ऑपरेशन सिंदूर का पहला वर्ष पूरा होने पर सशस्त्र बलों की वीरता और बलिदान को नमन किया। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने इस ऑपरेशन को आतंकवाद के खिलाफ भारत के अटूट संकल्प का निर्णायक प्रमाण बताया। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने विधानसभा भंग की। तमिलनाडु और केरलम में सरकार गठन के लिए बैठकों का सिलसिला जारी। रेलवे 40 वर्ष पुरानी प्रणाली के स्थान पर अगस्त से उन्नत यात्री आरक्षण प्रणाली लागू करेगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अधिकारियों को उन्नयन को सुचारू बनाने के निर्देश दिए। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम ने कहा उनका देश और भारत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम अनुजा कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. Nation salutes bravery and sacrifice of armed forces on first anniversary of Operation Sindoor. President, Vice President and Prime Minister call it a defining testament to India's unwavering resolve against terrorism. West Bengal Governor dissolves assembly. Political parties on to form governments in Tamil Nadu and Kerala. Railways to move to upgraded passenger reservation system from August, replacing the 40-year-old system. Minister Ashwini Vaishnaw directs officials to ensure smooth transition. President of Vietnam Tho Lam emphasizes his country and India together have opportunity to be key players of global supply chain. And in archery, Indian women's recurve team ensures country's first medal at World Cup Stage 2, beating South Korea in semi-final at Shanghai. And now the news in detail. The nation today saluted the courage, commitment and supreme sacrifice of the armed forces on the first anniversary of Operation Sindoor. On this day last year, India launched Operation Sindoor, carrying out airstrikes on 9 terror infrastructures in Pakistan and Pakistan-occupied Kashmir, eliminating at least 100 terrorists. It was India's befitting response to the barbaric Pakistan-sponsored terrorist attack on the tourists in Pahalgam on the 22nd of April last year. In their messages on the occasion, the President, Vice President and Prime Minister described Operation Sindoor as a landmark expression of country's uncompromising stand against terrorism and threats to national security. President Draupadi Murmu called Operation Sindoor as a defining testament to India's unwavering resolve against terrorism and all forces that threaten our sovereignty and the safety of citizens. President Murmu said today, "The nation salutes the indomitable bravery, sacrifice and professionalism of our soldiers." Vice President C.P. Radhakrishnan termed Operation Sindoor as a defining moment when India responded firmly to terror forces and terror-sponsoring states attempting to disturb the peace, unity and sovereignty of Bharat. In his message, Prime Minister Narendra Modi said, "The country remains steadfast in its resolve to defeat terrorism and dismantle its enabling ecosystem." Mr. Modi said, "The Indian Armed Forces displayed unparalleled courage, precision and resolve during the operation." He said the forces gave a befitting response to those who dared to attack innocent Indians at Pahalgam. Mr. Modi also added that the entire nation salutes the armed forces for their valor. Defence Minister Rajnath Singh, Home Minister Amit Shah and Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw also honoured the valour and sacrifice of the Indian Armed Forces on the anniversary of Operation Sindoor. Briefing media in New Delhi today, External Affairs Ministry spokesperson

0: Vikram Misri today met UAE Minister of State for International Cooperation, Reem Al Hashimi, in Abu Dhabi. In a social media post, External Affairs Ministry said both sides reviewed the full spectrum of the India-UAE Comprehensive Strategic Partnership and identified areas for further cooperation. And in sports, in archery, Indian women's recurve team assured the country's first medal at the World Cup Stage 2 with a stunning win over record 10-time Olympic champion South Korea in the semi-final at Shanghai in China today. The women's team of seasoned Deepika Kumari, Ankita Bhagat and teenager Kumkum Mahor defeated the South Korean side 5-1 to set up a gold medal clash against second seed China on Sunday. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Nation salutes bravery and sacrifice of armed forces on first anniversary of Operation Sindoor. President, Vice President and Prime Minister call it a defining testament to India's unwavering resolve against terrorism. West Bengal Governor dissolves assembly. Political parleys on to form governments in Tamil Nadu and Kerala. Railways to move to upgraded passenger reservation system from August, replacing 40-year-old system. Minister Ashwini Vaishnaw directs officials to ensure smooth transition. President of Vietnam Tho Lam emphasizes his country and India together have opportunity to be key players of global supply chain. And in archery, Indian women's recurve team ensures country's first medal at World Cup Stage 2 beating South Korea in semi-final at Shanghai. That is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है खबरों के साथ, मैं मोहम्मद अम्मार। मुल्क ने आज ऑपरेशन सिंदूर के एक साल मुकम्मल होने पर मुसल्ला फौज की जुरात, अज़्म और अजीम कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश किया। सदर जम्हूरिया, नायब सदर और वजीर आजम ने इसे दहशतगर्दी के खिलाफ भारत के अज़्म मुसम्मम की नुमाया मिसाल करार दिया। मगरबी बंगाल के गवर्नर ने असेंबली को तहलील कर दिया है। उधर तमिलनाडु और केरलम में सरकार की तश्कील के लिए सियासी सरगर्मियां जारी हैं। रेलवे अपग्रेडेड पैसेंजर रिजर्वेशन की मुंतकली का आगाज अगस्त से करेगा, जो 40 साल कदीम प्लेटफॉर्म की जगह लेगा। वजीर मौसूफ अश्वनी वैष्णव ने हुक्काम को सहल मुंतकली को यकीनी बनाने की हिदायत दी है। वियतनाम के सदर टो लाम ने जोर देकर कहा है कि वियतनाम और भारत के पास आलमी सप्लाई चेन में कलीदी रोल अदा करने के मौके हैं। और तीरंदाजी में भारत की खवातीन टीम ने शंघाई में सेमीफाइनल में जुनूबी कोरिया को हराकर आलमी कप के दूसरे मरहले में मुल्क के लिए पहले तमगे को यकीनी बनाया। अब खबरें तफसील से। मुल्क ने आज ऑपरेशन सिंदूर के एक साल मुकम्मल होने पर मुसल्ला फौज की जुरात, अज़्म और अजीम कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश किया। पिछले साल आज ही के दिन भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था, जिसके तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान के जेर कब्जा कश्मीर में दहशतगर्दों के 9 ठिकानों पर फजाई हमले किए गए, जिनमें कम से कम 100 दहशतगर्द हलाक किए गए। ये कार्रवाई पिछले साल 22 अप्रैल को पहलगाम में सयाहों पर होने वाले पाकिस्तान की पुष्पनाई वाले मुबैना दहशतगर्दाना हमले के खिलाफ भारत की मुअस्सर कार्रवाई थी। इस मौके पर सदर जम्हूरिया, नायब सदर और वजीर आजम ने अपने पैगामात में ऑपरेशन सिंदूर को दहशतगर्दी और कौमी सलामती को लाहक खतरात के खिलाफ मुल्क के गैर मुतजल अज़्म की अलामत करार दिया। सदर जम्हूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर दहशतगर्दी और मुल्क की खुदमुख्तारी और शहरियों की हिफाजत को खतरे में डालने वाली ताकतों के खिलाफ भारत के पुख्ता अज़्म का वाज़ेह सबूत है। मोहतरमा मुर्मू ने कहा कि आज मुल्क अपने फौजियों की गैर मामूली बहादुरी, कुर्बानी और पेशावराना सलाहियतों को सलाम पेश करता है। नायब सदर सीपी राधा कृष्ण ने ऑपरेशन सिंदूर को एक फैसलाकुन लम्हा करार दिया, जब भारत ने अमन, इत्तेहाद और खुदमुख्तारी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वाली दहशतगर्द ताकतों और दहशतगर्दी की पुष्पनाही करने वाले मुल्क के खिलाफ मुअस्सर कार्रवाई की। वजीर आजम मोदी ने अपने पैगाम में कहा कि मुल्क दहशतगर्दी और उसके मुआविन निजाम को खत्म करने के अपने अज़्म पर कायम है। उन्होंने कहा कि भारतीय मुसल्ला फौज ने इस कार्रवाई के दौरान बेमिसाल जुरात, दुरुस्तगी और अज़्म का मुजाहरा किया। उन्होंने मजीद कहा कि मुसल्ला फौज ने उन अनासिर के खिलाफ मुअसर कार्रवाई की जिन्होंने पहलगाम में बेगुनाह

0: भारतीय शहरियों पर हमला करने की जुरात की थी। वजीर आजम ने मजीद कहा कि पूरा मुल्क मुसल्ला फौज की शुजात और बहादुरी को सलाम पेश करता है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह, वजीर दाखिला अमित शाह और इत्तलात नशात के वजीर अश्वनी वैष्णव ने भी ऑपरेशन सिंदूर के एक साल मुकम्मल होने के मौके पर भारतीय मुसल्ला फौज की बहादुरी और कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश किया। भारत ने आज कहा कि उसने सरहद पार की दहशतगर्दी की सरपरस्ती करने वाले पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मुंहतोड़ जवाब दिया। नई दिल्ली में मीडिया को तफसीलात बताते हुए वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने जोर देकर कहा कि पाकिस्तान सरहद पार की दहशतगर्दी को तवील मुद्दत से मुल्क की पॉलिसी के एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है।
1: पूरे दुनिया ने देखा किस प्रकार के बर्बरता के साथ पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ था, जिसमें 26 मासूम लोगों की जानी गई थी। हम लोगों ने पाकिस्तान को उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के जरिए मुंहतोड़ जवाब दिया उनके सीमा पार से आतंकवाद के समर्थन के लिए। पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान सीमा पार से आतंकवाद को एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी की तरह उसका इस्तेमाल करता है।
0: गैर कानूनी बांग्लादेशियों की वतन वापसी से मुतालिक एक सवाल का जवाब देते हुए जनाब जायसवाल ने कहा कि कौमियत की तौसीक के 2800 से ज्यादा मामलात बांग्लादेश के साथ इल्तवा में हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क में गैर कानूनी तौर पर क्याम पजीर किसी भी बैरूनी बाशिंदे को मुल्क के कवानीन जवाबित के मुताबिक उसके वतन वापस भेजा जाना चाहिए। उसके लिए बाहमी तरीकेकार और बंदोबस्त कायम करने चाहिए।
1: जो लोग अवैध ढंग से हमारे यहाँ रह रहे हैं, इसमें हमको बांग्लादेश की सहयोग चाहिए ताकि वो उनको रिपेट्रिएट किया जाए अपने देश। पिछले कुछ सालों में 2860 से ऊपर ऐसे मसले हैं जिसमें हम लोगों ने राष्ट्रीय सत्यापन के लिए बांग्लादेश को खबर किया है और ये सभी मामले उनके यहाँ लंबित हैं। हमारा ये नीति है कि जो भी विदेशी नागरिक हमारे यहाँ अवैध रूप से रह रहा है वो उनको अपने देश जाना पड़ेगा।
0: कनाडा में खालिस्तानी ग्रुपों से मुतालिक तर्जुमान ने कहा कि भारत ने इंतहा पसंद और अलाहदगी पसंद अनासिर के जरिए महफूज ठिकाने के तौर पर कनाडा की सरजमीन के इस्तेमाल से मुतालिक तश्वीश के बारे में मुसलसल आवाज उठाई है। नई सरकार तश्कील देने की तैयारियों के दरमियान मगरब बंगाल कानून साज असम्बली को बाकायदा तौर पर तहलील कर दिया गया है। गवर्नर आर एन रवि ने आईन की दफा 174 के तहत इख्तियारात के इस्तेमाल करते हुए आज मौजूदा असम्बली को तहलील करने के अहकाम जारी किए। ये इख्तदार की तब्दीली में एक नुमाया इकदाम है क्योंकि रियासत शनिचर के रोज हलफबरदारी के जरिए नई सरकार की तश्कील की जानिब गामजन है। मगरबी बंगाल में बीजेपी के एमएलए सुविंदु अधिकारी के करीबी साथी चंद्रनाथ रथ के कत्ल के सिलसिले में रियासती पुलिस ने 3 अफराद को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने एक 7 रुकनी खसूसी तहकीकाती टीम एसआईटी भी तश्कील दी है। ये टीम सीआईडी के इंस्पेक्टर जनरल के तहत काम करेगी। इसी दौरान पुलिस ने कत्ल के सिलसिले में सिलीगुड़ी के एक रिहायशी को हिरासत में लिया और तहकीकात की। उसके कार की नंबर प्लेट को मुबैना तौर पर उन हमलावरों के जरिए इस्तेमाल किया गया था जिन्होंने कल रात चंद्रनाथ रथ को कत्ल किया। तकरीबन 3 घंटे की तहकीकात के बाद पुलिस ने उसकी तरफ से इस यकीन दहाने के बाद उसे रिहा कर दिया कि वो मजीद तहकीकात में तआवुन और मदद करेगा। तमिलनाडु में सियासी तातुल के दरमियान नई सरकार तश्कील देने के लिए बातचीत जारी है। इस सिलसिले में गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने आज चेन्नई में टीवीके के सर सी जोसेफ विजय को लोकभवन मधु किया। लोकभवन से जारी प्रेस रिलीज में बताया गया कि मीटिंग के दौरान गवर्नर ने यह बात वाजे की कि तमिलनाडु कानून साज असम्बली में मतलूबा अक्सरियती हिमायत जो सरकार तश्कील देने के लिए लाजमी है मौजूद नहीं है। केरलम के नए वजीर आला के बारे में फैसला नई दिल्ली में कांग्रेस आला कमान के जरिए किया जाएगा। वो ये फैसला एआईसीसी मुशाहिदीन के जरिए पेशकर्दा रिपोर्टों पर सलाह मशवरे के बाद करेगी। केपीसीसी के सर सनी जोसेफ ने कहा कि कांग्रेस कानून साज पार्टी के लीडर को मुंतखब करने के लिए एआईसीसी के सदर को इख्तियार देने की करारदाद को आज सुबह तिरुवनंतपुरम में मुनाकिदा कानून साज पार्टी की मीटिंग में मुत्तफिका तौर पर मंजूरी दी गई। तफसील हमारे नामनिगार से।
2: आज की कांग्रेस कानून साज पार्टी की मीटिंग में एआईसीसी के उन मुजाहिदीन ने शिरकत की जो गुज़िश्ता रोज नई दिल्ली से यहां पहुंचे थे। मीटिंग से कबल और बाद में मुजाहिदीन ने 2 मुंतखब कांग्रेस अरकान के साथ तबादला ख्याल किया जिसका मकसद क़यादत के मामले पर उनके नजरियात को हासिल करना था।

0: था। केपीसीसी के सदर सनी जोसेफ ने कहा कि ये मुशाहिदीन जो दिल्ली वापस जाएंगे पार्टी की कौमी क्यादत को अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे। वीडी सतीशन और रमेश चिन्नीथला समेत सीनियर लीडर उन कांग्रेस एमएलएज में शामिल है जो इस मरतबा मुंतखब हुए हैं। इसी दौरान एक और सीनियर लीडर केसी वेणुगोपाल इस वक्त रुकने पार्लियामेंट हैं। एआईसीसी के मुशाहिदीन ने यूडीएफ की मुख्तलिफ शरीक पार्टियों के साथ भी आज तबादले ख्याल किया। सियासी जराये ने इंदिया दिया है कि कांग्रेस कानून साज पार्टी के लीडर और नए वजीर आला से मुतालिक फैसला इस हफ्ते के इख्तिताम तक किए जाने की तवक्को है। इसी दौरान हलफ बर्दारी की तकरीब गवर्नर के चेन्नई से वापस आने के बाद ही होने की तवक्को है। गवर्नर इस वक्त वहां तमिलनाडु से मुतालिक सरकारी कामकाज में मसरूफ हैं। आकाशवाणी न्यूज से स्मृति एम पल्लूरूथी की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं अब्दुल हफीज।
1: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। रेलवे की वजारत ने आज ऐलान किया कि ट्रेनों की अपग्रेडेड पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम में मुंतकली का आगाज अगस्त में होगा। नई दिल्ली के रेल भवन में एक जायजा मीटिंग की सदारत करते हुए रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णव ने हुक्काम को इस बात को यकीनी बनाने की हिदायत दी कि 40 साल कदीम रिजर्वेशन निजाम से अपग्रेडेड निजाम में ट्रेनों की मुंतकली के दौरान मुसाफिरों को किसी तरह की कोई परेशानी न हो। पेश है एक रिपोर्ट।
2: 1986 में इब्तदाई तौर पर मुतारिफ किए गए रिजर्वेशन के मौजूदा निजाम में पिछले 40 सालों में बहुत सी छोटी छोटी तब्दीलियां की गई हैं। अलबत्ता इसकी मुकम्मल तौर पर ओवरहॉलिंग की जा रही है और जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए इसकी सलाहियत में नुमाया तौसी की गई है। भारतीय रेलवे में 2002 में इंटरनेट पर मबनी टिकटिंग के आगाज के बाद से बड़े पैमाने पर डिजिटल तौर पर अक्सर तब्दीली आई है। इस अक्सर तब्दीली के तहत भारतीय रेलवे ने पिछले साल जुलाई में रेल वन मोबाइल ऐप मुतारिफ कराया था। यह ऐप तेजी के साथ मुसाफिरों में मकबूल हो रहा है और मुल्क भर में इसे रिकॉर्ड 3,50,00,000 अफराद ने डाउनलोड किया है। अब यह ऐप टिकट कंफर्मेशन के एआई पर मबनी इम्कान भी फ्राहम कर रहा है। इस सहूलत को इस साल के अवायल में मुतारिफ कराया गया था और इसे बड़े पैमाने पर सारिफिन ने पसंद किया है। रेलवे के मुताबिक वेट लिस्ट कन्फर्मेशन की पेशगोई की दुरुस्तगी पहले के 53% से बढ़कर अब 94% हो गई है। अपग्रेडेड पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम उन लाखों मुसाफिरों को सहूलत दस्तयाब करेगा जो भारतीय रेलवे के जरिए सफर करते हैं। शिवांग मिश्रा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असगर अली।
1: इंडिया एआई और तिब्बी तहकीक के भारतीय काउंसिल आईसीएमआर ने आज नई दिल्ली में सेहत के शोबे में जिम्मेदाराना मसनूई जहानत को फरोग देने के लिए एक मुफाहमतनामे पर दस्तखत किए। इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजारत ने कहा कि यह शराकतदारी मसनूई जहानत के जिम्मेदाराना और वसीतर इस्तेमाल से सेहत के शोबे में अच्छे नतायज की जानिब एक अहम कदम है। वजारत ने मजीद कहा कि इस मुआहदे के तहत बाहमी ताउन के लिए एक मुनज्जम फ्रेमवर्क कायम किया गया है जिसमें इंडिया एआई के टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर और एआई इको निजाम की सलाहियतों को आईसीएमआर की हयातियाती तिब्बी तहकीक और सेहत आम्मा के शोबे में महारत के साथ यकजा किया जाएगा। वियतनाम के सदर टो लाम ने जोर देकर कहा कि आज के बदलते हुए आलमी निजाम में भारत और वियतनाम के पास आलमी सप्लाई चेन में कलीदी रोल अदा करने के लिए अहम मौका है। मुंबई में भारत वियतनाम कारोबारी फोरम से खिताब करते हुए जनाब लाम ने कहा कि दोनों मुल्कों ने माजी में बाहमी इश्तराक व ताउन के जरिए बहुत से चैलेंजों का सामना किया है। उन्होंने भारतीय कंपनियों बिलखसूस जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के शोबों में काम करने वाली कंपनियों को वियतनाम में सरमायाकारी करने के लिए मदऊ किया। दोनों मुल्कों के दरमियान वसी ताल्लुकात को उजागर करते हुए उन्होंने जोर देकर कहा कि सियासी एतमाद के सबब 2016 से दोनों मुल्कों के बाहमी ताल्लुकात नई बुलंदियों पर पहुंच गए हैं। सदर लाम ने मजीद कहा कि मौजूदा आलमी मंजरनामा वाकई चैलेंज से भरा हुआ है, ताहम भारत और वियतनाम के दरमियान बाहमी ताउन को नई सतह तक ले जाने का भी एक बेहतर मौका है। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने जोर देकर कहा कि भारत और वियतनाम जैसे मुल्कों में टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग के शोबों से ताल्लुक रखने वाले कारोबारी अफराद, सरमायाकार और पेशावर अफराद एशिया के मुस्तकबिल को तश्कील देंगे। चीन के शंघाई में आज तीरंदाजी में भारतीय खवातीन रिकर्व टीम ने आलमी कप के दूसरे मरहले के सेमीफाइनल में جنوبی کوریا کی 10 بار کی اولمپک چیمپئن ٹیم پر شان

शानदार जीत हासिल करके मुल्क के लिए पहले तमगे को यकीनी बनाया। दीपिका कुमारी, अंकिता भगत और कुमकुम मोहोत पर मुश्तमिल भारतीय खवातीन टीम ने जनूबी कोरिया की टीम को 5-1 से शिकस्त देकर इतवार को होने वाले सोने के तमगे के मुकाबले के लिए जगह बना ली। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ खेलते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स ने आखिरी खबरें मिलने तक 14 ओवर्स में एक विकेट पर 139 रन बना लिए थे। इससे पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। मुल्क ने आज ऑपरेशन सिंदूर के एक साल मुकम्मल होने पर मुसल्ला फौज की जुरात, अज़्म और अजीम कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश किया। सदर जमहूरिया, नायब सदर और वजीर आजम ने इसे दहशतगर्दी के खिलाफ भारत के अज़्म मुसम्मम की नुमाया मिसाल करार दिया। मगरबी बंगाल के गवर्नर ने असम्बली को तहलील कर दिया है। उधर तमिलनाडु और केरलम में सरकार की तश्कील के लिए सियासी सरगर्मियां जारी हैं। रेलवे अपग्रेडेड पैसेंजर रिजर्वेशन की मुंतकली का आगाज अगस्त से करेगा, जो 40 साल कदीम प्लेटफॉर्म की जगह लेगा। वजीर मौसूफ अश्वनी वैश्यो ने हुक्काम को सहल मुंतकली को यकीनी बनाने की हिदायत दी। वियतनाम के सर टोलाम ने जोर देकर कहा है कि वियतनाम और भारत के पास आलमी सप्लाई चेन में कलीदी रोल अदा करने के मौके हैं। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।

0: Countrywide.
1: नमस्कार, कंट्री वाइड कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ल और आज हम चर्चा करेंगे इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम 5.0 के बारे में। और आज हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं आर्थिक विशेषज्ञ एके भट्टाचार्य। भट्टाचार्य जी, स्वागत है आपका।
2: नमस्कार।
1: सबसे पहले आपसे हम यही समझना चाहेंगे कि जो एक नया ऐलान कैबिनेट की बैठक में हुआ है, उसके मायने क्या लगाए जाए, सरकार ने 5.0 इस स्कीम की क्यों मंजूरी दी है, इसका मुख्य उद्देश्य आप क्या देखते हैं?
2: ये जो आपने कहा कि इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम 5.0, इसका मतलब ये इसका पांचवा चरण है ये। और इससे पहले ये जब कोविड का जब प्रॉब्लम आया था हमें 2020 में, उसी समय इसका पहला चरण का इंट्रोडक्शन हुआ था। उसके बाद ऐसे 3-4 चरण आए हैं और हर बार क्या होता है कि हमारी जो इंडस्ट्री की क्रेडिट लेने की जो क्षमता जो है उसमें एक कम पहुंचता है जब भी कोई क्राइसिस आती है। और यही जो वेस्ट एशिया में जो युद्ध हो रहा है उससे जो तेलों के दाम बढ़ गए, उससे हमारे बहुत सारे जो इकाइयां हैं, बहुत सारे जो इंडस्ट्री हैं, उनकी कॉस्ट बढ़ गई है और उनकी क्रेडिट अवेलेबिलिटी जो होती है, वर्किंग कैपिटल नीड्स जो होती हैं, जरूरतें जो होती हैं, उसको पूरे करने के लिए दिक्कतें आ रही हैं। तो ये स्कीम जो है ये करीबन जो एमएसएमई सेक्टर है, जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस सेक्टर के लिए है प्रधानतः, इसमें क्या किया जाता है कि इसमें एक जो एंटरप्राइजेस की जो क्रेडिट की जो एक गारंटी होती है, जैसे कि मान लीजिए कि कोई क्रेडिट ले रहा है तो उस क्रेडिट लेने में अगर लॉस हो जाए उस लोन में या लोन को वापस ना कर सके, उसकी जो रिस्क जो होती है उसकी गारंटी होती है। तो समय की जो असुविधा जो है कि इस समय रिस्क बढ़ जाती है और उससे क्या होता है कि अगर ये गारंटी नहीं मिले तो इंटरेस्ट रेट में बढ़ जाता है, इंटरेस्ट रेट उससे कॉस्ट बढ़ जाता है उससे। तो सरकार ने ये जो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम 5.0 का जो ऐलान किया है, उससे सारे जो एमएसएमई सेक्टर के यूनिट जो हैं, हमारे देश में करीबन 7 करोड़ ऐसे संस्थाएं हैं जिसे हम माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस कहते हैं, और वो 7 करोड़ जो इकाइयां हैं उनकी बहुत महत्वपूर्ण ये है कि वो करीबन देश की जीडीपी जो है, आर्थिक जो साइज जो है, उसकी करीब 30% होती है और एमएसएमई करीबन 45% हमारे एक्सपोर्ट्स करता है। तो इसका महत्वपूर्ण बहुत चीज है और उसके लिए सरकार ने कहा है कि 2.5 लाख करोड़ की जो लोन जो है उसकी गारंटी सरकार देगी। इसका मतलब अगर 2.5 लाख करोड़ की जो अगर लोन में कुछ वापस करने में कोई दिक्कतें आती है तो वो समस्या इस गारंटी से पूर्ण होगी। करीबन 18,000 करोड़ की जो लायबिलिटी है वो सरकार लेगी और 2.5 लाख करोड़ का जो लोन जो है वो लोन बैंकिंग व्यवस्था है, फाइनेंशियल सेक्टर है, वो उनको देंगे। तो मोटी मोटी बात यह है कि एक तरफ एमएसएमई सेक्टर को एक गारंटी मिलेगी उनके लोन के ऊपर, और ये गारंटी

0: 5,000 करोड़ की ये गारंटी जो एयरलाइन सेक्टर है उनको भी दी गई है, क्योंकि इस वेस्ट एशिया के क्राइसिस में जो एविएशन सेक्टर है उसको भी काफी बहुत धक्का पहुंचा है, तो उनके लिए भी 5,000 करोड़ के लोन के ऊपर गारंटी देने की एक प्रावधान किया गया है, और बाकी बिजनेस को वो भी उनको ये प्रावधान है। एमएसएमई सेक्टर में 100% की जो लोन जो है उसको गारंटी मिलेगी, पर बाकी जो बिजनेसेस हैं उसमें सिर्फ 90% की गारंटी मिलेगी। एयरलाइन सेक्टर की जो कंपनियां हैं उनको अगर गारंटी दी जाएगी उनमें भी 90% की गारंटी मिलेगी। पूरी बात यह है कि जो वेस्ट एशिया क्राइसिस से कंपनियां को कॉस्ट में दिक्कतें आ रही है, नौकरी को बरकरार रखने में दिक्कतें आ रही है, उनके लिए ये बहुत बड़ा एक रिलीफ मेजर है, और इससे मैं समझता हूं कि जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जो होती है और नौकरी को बरकरार रखने की जो दिक्कतें आती हैं वो दिक्कतें नहीं आएंगी। 7 करोड़ एमएसएमई यूनिट्स हैं देश के, उनके लिए एक बहुत बड़ा एक सुविधा।
1: जी, और एक बहुत बड़ी राहत होगी खासतौर पर छोटी और मझोली उद्योग जगत के लिए। और जिस हिसाब से वेस्ट एशिया क्राइसिस भारत पर एक छोटा असर देखने को जरूर मिल रहा था कि कंपनियों की वर्किंग कैपिटल की दिक्कतें आ रही थी, साथ ही साथ जो कच्चे माल के आयात की दिक्कतें होती थी वो बढ़ती जा रही थी, और इन जगहों पर जो एक निर्यात होता है वो भी उस मुकाबले नहीं हो पा रहा था। निर्यात हो रहा था जरूर, लेकिन उस मुकाबले नहीं हो रहा था। तो अब आपको क्या लगता है, एक सहारा मिलेगा और सहारा के बाद इंडस्ट्री जो है एक तरह से अपने पैरों पर दोबारा से मजबूती से खड़े होने में कामयाब हो पाएगी?
0: इसमें सहारा तो जरूर मिलेगा, क्योंकि जैसे इस लोन की गारंटी के साथ साथ ये जो एक 7 साल की जो लोन दी जाएगी इसमें ये कवरेज होगा उसका, ये एयरलाइन के लिए है, और जो एमएसएमई कंपनियां जो हैं 7 करोड़ कंपनियां जो हैं उनकी जो लोन की जो अवधि होगी वो 5 साल की होगी, और 5 साल के अंदर 1 साल के मॉरेटोरियम भी रहेगा, जिसका मतलब अगर मान लीजिए वो पैसा वापस ना देते हैं उसकी मॉरेटोरियम रहेगी, और एयरलाइन के लिए 2 साल की मॉरेटोरियम रहेगी। और ये व्यवस्था आज से मार्च 31, 2027 तक लागू रहेगी, इसका मतलब अगले 1 साल करीबन 11 महीने या 10 महीने तक ये व्यवस्था का उपयोग एमएसएमई कंपनियां, विमानन कंपनियां और बाकी बिजनेसेस कर सकते हैं, लेकर पूरी तरह से उनको बहुत बड़ा एक राहत जरूर मिलेगा।
1: जी
0: उसके साथ साथ मैं आपको ये भी कह दूं, ये राहत तो मिलेगा, पर ऐसी 2.5 लाख करोड़ की राहत से बहुत लोग इनका शंका होता है कि सरकार की जो खजाना जो है खजाने में कितनी बहुत, पर क्रेडिट गारंटी स्कीम का जो एक बहुत बड़ी एक खूबी है ये कि 2.5 लाख करोड़ का लोन तो व्यवस्था की गई है, पर सरकार के खजाने में इसका इम्पैक्ट सिर्फ 18,000 करोड़ का ही होगा, और जिनको मॉरेटोरियम के बाद जरूरत होगा 2 साल का मॉरेटोरियम, ये विमानन कंपनी की होगी या बाकी कंपनी का 1 साल का मॉरेटोरियम है, उसके बाद अगर वो पैसा वापस दे देते हैं अच्छी बात है, और अगर गारंटी की जरूरत होगी उसके लिए इंश्योरेंस का भी व्यवस्था होता है,
1: जी
0: तो मैं समझता हूं कि इतने कम रिस्क से 2.5 लाख करोड़ की जो एक वर्किंग कैपिटल की जो प्रावधान की गई है इससे बहुत बड़ी एक राहत, नौकरी की व्यवस्था, और सबसे बड़ी बात जिसकी जिक्र आपने की निर्यात का एक प्रोत्साहन दिया जा सके।
1: जी, आपसे ये भी समझना चाहेंगे भट्टाचार्य, जिसके जिस हिसाब से लगातार सरकार की कोशिश रही है कि कारोबार जगत को मुश्किलें उनकी जो है वो आसान की जाएं, तो ये मोरेटोरियम और जो क्रेडिट गारंटी का ड्यूरेशन समय अवधि ये बढ़ाई गई है, ये स्थिरता किस हिसाब से देगी इस पूरे सेक्टर को इस कर्ज के दौरान?
0: देखिए मोरेटोरियम जो होता है उससे क्या होता है कि जो कंपनी को लोन वापस देने का जो अवधि होती है उसमें जो उनकी अवधि बढ़ जाती है, जैसे कि अगर एयरलाइन कंपनी का 7 साल का लोन है उसके अंदर 2 साल का मोरेटोरियम भी है, इसका मतलब उनको उसी समय इंटरेस्ट पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। बाकी कंपनियों का 5 साल का अवधि है पर उसके अंदर 1 साल का मोरेटोरियम है, उसका मतलब 1 साल तक तो इंटरेस्ट पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। तो मैं मानता हूं कि इससे जो क्रेडिट अवेलेबल होती है, पहली बात तो यह कि ऐसे समय में जब जो बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस देखती हैं कि कंपनियां जरा दिक्कत में आ गई हैं वो लोन देने में थोड़ा झिझकते हैं, कतराते हैं, जब ये स्कीम लागू होता है तब उनको एक आश्वासन मिलता है कि ये लोन देने से भी अगर लोन वापस ना कर सके ये गारंटी मिलेगी और गारंटी सरकार दे रही है, तो ये बहुत बड़ा एक हौसला बढ़ाता है फाइनेंशियल सेक्टर के लिए, और दूसरी तरफ ये कंपनियों को एनकरेज करता है कि वो छटनी ना करे, लोगों को गांव ना वापस भेज दे कि भाई काम नहीं है आप बंद कीजिए आप, उससे बड़ा एक हौसला भी बढ़ता है, इकोनॉमी का एक स्ट्रेंथ भी बढ़ती है। और उसके साथ साथ आपको ये भी देखना पड़ेगा कि सरकार ने कुछ दिन पहले जो एक्साइज जो डीजल एंड पेट्रोल में उन्होंने घटा दिया था टैक्स, और उस घराने से

0: जो तेल और तेलों के दाम जो रिटेल मार्केट में जो हर देशों में जो बढ़ गए हैं, वो हमारे जो एमएसएमई सेक्टर हैं, रिटेल कंज्यूमर्स जो हैं, उनके लिए अभी तक कोई एक्स्ट्रा बर्डन अभी तक नहीं आया है। हालांकि गैस में थोड़ा दाम बढ़ा है, बाकी चीजों में दाम बढ़ा है, पर पेट्रोल डीजल जो हर इंडस्ट्री का इस्तेमाल करना पड़ता है, उसमें कोई दाम नहीं बढ़ा है। तो मैं
1: बिल्कुल
0: समझता हूँ ये एक सार्वजनिक एक अप्रोच है, जिससे कि अगर ये क्राइसिस चले या ज्यादा दिन ना चले, उसके सामने ये टेम्पोररी मेजर्स हैं, वो 2 महीने बाद 3 महीने बाद देखना पड़ेगा कि और क्या नीतियों की लागू करना होगा, वो देख सकते हैं।
1: बिल्कुल, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो खासतौर पर 5,000 करोड़ रुपए की एक बड़ी राशि एविएशन सेक्टर के लिए अलग से रखी गई है, उसका क्या फायदा आप होते हुए देखते हैं? क्योंकि विमानन कंपनियों का लंबे समय से कहना रहा है कि ETF के बढ़ते दाम उनके लिए दिक्कत का सबब बनते जा रहे हैं, साथ ही जो वेस्ट एशिया क्राइसिस है उसमें तमाम जगहों पे रूट बंद हो जाते हैं, तो उन्हें अलग अलग डेस्टिनेशन पर जाने के लिए लंबा चक्कर लगाना पड़ता है, तो जाहिर है उनका खर्च बढ़ता है और किराया बढ़ाने की एक

0: युद्ध, बाकी सारे ऐसे कॉस्ट हैं, उनमें भी काफी इजाफा हुआ है। इसीलिए सरकार ने क्या किया है कि जो विमानन कंपनियां को, ये नहीं कि पैसा उनको दे रहे हैं, ये सिर्फ ये कह रहे हैं कि उनकी जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जो होगी उसके ऊपर सरकार गारंटी देगी। उससे क्या होगा कि जो फाइनेंशियल सेक्टर और या बैंकिंग व्यवस्था जो है, एयरलाइन कंपनियों को लोन दे सके, कंटिन्यू कर सके, क्योंकि उनको आश्वासन मिलेगा कि ये लोन वापस करने में कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। हालांकि विमानन कंपनी को कठिनाई तो हो रही है, पर ये एक ऐसा समय है कि ये 2 साल का मॉरेटोरियम और 7 साल का लोन के ऊपर गारंटी, मैं समझता हूँ इसमें हौसला बढ़ाने का बात है, पर एयरलाइन को कठिनाइयां तो जरूर हो रही है, होती रहेगी जब तक ना तेलों के दाम नीचे ना आए।
1: आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिन उद्योगों के लिए खास तौर पर ये राहत का ऐलान किया गया है, उससे जुड़े तमाम सेक्टर हैं जो इनसे प्रभावित होते होंगे, क्या आपको लगता है उन्हें भी और एक तरह से पूरी अर्थव्यवस्था को भी इसका फायदा मिलता नजर आएगा?
0: देखिए, ऐसा होता है कि अगर 7 करोड़ कंपनियां हैं हमारे देश में, उसमें ज्यादा से ज्यादा जो एमएसएमई सेक्टर में कंपनियां हैं, करीबन 99% जो कंपनियां जो हैं वो छोटी लघु उद्योग है, बहुत ही माइक्रो यूनिट्स हैं वो, और उसमें 5 से 10 लोग काम करते हैं, और यही एमएसएमई कंपनियां बड़े बड़े कंपनियों को सप्लाई करती हैं, करीबन 40% एक्सपोर्ट्स करती हैं, निर्यात करती हैं। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि इनमें ये गारंटी मिलेगी, इनकी वर्किंग कैपिटल नीड्स में गारंटी मिलेगी, तो उनकी जो कॉस्ट स्ट्रक्चर जो है उसमें थोड़ी बहुत उनकी सहूलियत होगी, और उसका बेनिफिट जो जो कंपनियां उनके साथ बिजनेस कर रही हैं, रिलेशनशिप रख रही हैं, उनको भी एक सेकेंड ऑर्डर बेनिफिट जरूर मिलेगा। इसमें तो कोई दो राय नहीं है।
1: घरेलू विमानन कंपनियों के लिए या विमानन कंपनियों के जो घरेलू ऑपरेशंस हैं उन पर फायदा पहुंचने की बात आपने कही, तो तमाम कंपनियों की एक विस्तार योजनाएं थी कि वो घरेलू स्तर पर नए रूट खोलें, तो वो एक तरह से ठंडे बस्ते में जाते हुए दिखाई दे रहे थे, या कंपनियों का जो बढ़ता खर्चा था उससे उन्हें आशंका थी कि अब आगे वो क्या करें, तो अब आपको लगता है वो तमाम चुनौतियां काफी हद तक हल हो रही हैं?
0: मैं ये समझता हूँ कि विमानन कंपनियों ने अपनी जो विदेश की जो उनके सर्विसेज जो हैं उनमें रोक लगा दी गई, और जो डोमेस्टिक हमारे देश के अंदर अंतर्देशीय जो सेवाएं जो हैं उसमें मैं समझता हूँ कि ज्यादा प्रसार नहीं होगा, पर जो अभी भी सर्विसेज चल रही हैं उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं आएगा। ये जो स्टेप्स जो है वो स्टेप उसी लिए लिया गया है, इसमें जो एग्जिस्टिंग जो सर्विसेज हैं उसमें कोई हानि नहीं पहुंची, धक्का नहीं पहुंचेगा, पर विस्तार करना या प्रसारण करना और भी इसको बढ़ाना, उसमें मैं समझता हूँ कि ये चीज विमानन कंपनियां अब उसको एक्सप्लोर नहीं करेंगी, क्योंकि ये समय ऐसा है जो इसको एसेस करने के लिए समय लगेगा, पर जो एग्जिस्टिंग स्कीम्स हैं, सर्विसेज हैं, उसमें कोई बाधा नहीं पहुंचेगी। ये गारंटी स्कीम का यही एक बहुत बड़ा एक योगदान रहेगा।
1: और सर आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि जो ये 2 साल का एक पूरा का पूरा फायदा मिलता नजर आ रहा है छोटी मझोली कंपनियों के लिए, क्योंकि वेस्ट एशिया क्राइसिस इतने दिनों से चल रहा है, 2 महीने के करीब का वक्त हो रहा है और उससे भी ज्यादा समय हो रहा है, तो क्या आपको लगता है कि जितना एक असर था उस असर से निपटने के लिए मददगार होगा, या और भी आने वाले दिनों में चुनौतियां आएंगी तो उसके लिए नए कदम उठाने की भी जरूरत रहेगी?
0: मान लीजिए ये युद्ध विराम अभी हो जाता है या कोई पीस पैक्ट कल परसों तरसों में हो जाता है, तो उसके बाद भी कंपनियों की समस्याएं जो हैं वो करीबन 6 महीने 1 साल तक चलेगा। इसीलिए ये स्कीम को मार्च 31, 2027 तक लागू किया गया है, और इसीलिए 1 साल का मॉरेटोरियम दिया गया है कंपनियों को, और विमानन कंपनियों को 2 साल का मॉरेटोरियम दिया गया है, और ये लोन 7 साल के दिया गया है विमानन कंपनियों को, और कंपनी को 5 साल का विमानन दिया है। एमएसएमई कंपनियों को अपने 20% जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है उसके ऊपर बेस करके 100 करोड़ की जो लोन जो है वो देने की व्यवस्था की गई है। इसी तरह विमानन कंपनियों को 1,500 करोड़ तक की लोन गारंटी की व्यवस्था की गई है। तो इसका कारण यही है कि जो वेस्ट एशिया का अगर कॉन्फ्लिक्ट आज भी अगर सुधर जाए तो मैं समझता हूँ कि जो सेकेंड ऑर्डर इफेक्ट और इम्पैक्ट जो है वो अभी भी चलता रहेगा, 6 महीने तक चल सकता है, 7 महीने तक चलता सकता है, उसके बाद ही अवस्था साधारण में पहुंचेगी।
1: बिल्कुल भट्टाचार्य साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे श्रोताओं को इतनी अहम जानकारी दी और काफी बेहतरीन सरल तरीके से इन बातों को समझाया।
0: धन्यवाद।
1: श्रोताओं, ये कार्यक्रम आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
2: Countrywide.

0: ये आकाशवाणी है, अखिल भारतीय प्रादेशिक लोक संगीत एवं सुगम संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम आपको श्री राजेश सोदातर के गुजराती लोकगीत सुनवाएंगे। सोदातर राजेश जगदीश चंद्र अहमदाबाद गुजरात के एक जाने माने गुजराती लोक गायक और लोक नृत्य निर्देशक है। उन्होंने गुजराती भाषा में स्नातक की डिग्री हासिल की है और एक कलाकार के तौर पर संगीत, रेडियो और टेलीविजन के साथ सक्रिय रूप से जुड़े रहे हैं। करीब 80 से ज्यादा गुजराती एल्बमों और कई टीवी और रेडियो मंचों पर अपनी प्रस्तुतियों के जरिए उन्होंने लोक कलाओं के क्षेत्र में अहम योगदान दिया है। वे लोक नृत्य और गायन के क्षेत्र में अंतर विश्वविद्यालय, राज्य और राष्ट्रीय युवा उत्सव में कई बार विजेता रह चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने पूरे भारत में कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों और सांस्कृतिक उत्सवों में निर्णायक जज की भूमिका भी निभाई है। श्रोताओं, अब सुनते हैं श्री राजेश सोदातर के आकाशवाणी के 90 वर्ष की प्रसारण यात्रा पर अपने विचार।
1: नमस्कार दोस्तों, आकाशवाणी को गौरवशाली 90 वर्ष पूरे करने पर हार्दिक बधाई। यह भारतीय संगीत और संस्कृति का एक प्रकाश स्तंभ है। आकाशवाणी के साथ मेरी यात्रा सचमुच यादगार रही है। मैं अहमदाबाद गुजरात से राजेश सोदातर कामना करता हूं कि आने वाले वर्षों में भी इसे निरंतर सफलता मिलती रहे। अस्तु।
0: आज के कार्यक्रम का आरंभ श्री राजेश गुजराती लोकगीत आवी रूड़ी अजवाड़ी रात से कर रहे हैं। आवी रूड़ी अजवाड़ी रात एक प्यारा गुजराती लोकगीत है जो प्यार, प्रकृति और चांदनी रात की कोमल भावनाओं को खूबसूरती से चित्रित करता है।

श्रोताओं, आइए आज के कार्यक्रम में आप सुनते हैं एक ऐसा गुजराती लोकगीत जिसमें बांसुरी की सुर लहरियों के साथ प्रेम और ग्रामीण जीवन की सरल भावपूर्ण झलक मिलती है। गीत के बोल हैं, रूड़ी ने रंगीली रे वाला तारी वहां सड़ी।

अब प्रस्तुत है श्री राजेश सोताधर की मधुर आवाज में एक भावपूर्ण गुजराती लोकगीत कृष्ण भगवान चाल्या द्वारिका, जिसमें श्री कृष्ण के द्वारका गमन की और भक्तिभाव की सुंदर झलक मिलती है।

आइए अब सुनते हैं एक मधुर और भावनात्मक गुजराती लोकगीत अमे मैया रारे गोकुल गामना, जिसमें गोकुल में भगवान बाल कृष्ण ने गोपियों के साथ की दान लीला का सुंदर वर्णन है।

कार्यक्रम के समापन पर राजेश अपनी मधुर प्रस्तुति में जवेरचंद मेघाणी रचित अमर लोकगीत कसुम्बिनो रंग सुनाएंगे, जो शौर्य और देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत है।

0: इसी के साथ अखिल भारतीय प्रादेशिक लोक संगीत एवं सुगम संगीत कार्यक्रम में गुजराती लोक संगीत संपन्न होता है। आज के कार्यक्रम में श्री राजेश सोढ़ातर के साथ संगत कर रहे थे तबला पर भूपेंद्र सोलंकी, देवांग पंचाल ढोलक पर, मंजीरा पर कांति भाई सोलंकी, बेंजो पर नरेंद्र सोयंतर, वायलिन पर विजय वाघेला। यह कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित किया गया। कार्यक्रम के अगले भाग में आप सुनेंगे गजल।
1: ये आकाशवाणी है। आज के सुगम और लोक संगीत के राष्ट्रीय कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। आज के सभा में भारत के प्रसिद्ध गायक उस्ताद मोहम्मद वकील प्रस्तुत करेंगे गजल। उस्ताद मोहम्मद वकील एक प्रसिद्ध पार्श्व गायक हैं। शास्त्रीय गजल गायकों के परिवार से आने वाले उस्ताद मोहम्मद वकील अपने परिवार की संगीत परंपरा से प्रेरित हैं। आपने 8 साल की छोटी उम्र में ही मंच पर अपनी पहली प्रस्तुति दी और एक गायक के रूप में अपनी पहचान बनाने का निश्चय कर लिया। गजल के उस्ताद मोहम्मद हुसैन और अहमद हुसैन, जो आपके मामा हैं, से प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद उस्ताद मोहम्मद वकील ने स्वयं भी गजल के उस्ताद के रूप में शीघ्र ही अपनी कला को निखारा। आपको कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। आप आकाशवाणी के उच्च श्रेणी कलाकार हैं। प्रिंस ऑफ गजल पुरस्कार से आपको सम्मानित किया गया। आपको लंदन के प्रतिष्ठित हाउस ऑफ लॉर्ड्स में वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा सम्मानित किया गया। आज की सभा में आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं आशीष झा, इलेक्ट्रिक गिटार पर अजय मिश्रा, कीबोर्ड पर अजहर हुसैन वारसी और सारे

0: आप सुन रहे थे शाइदा अराई की गजल, जिसे स्वरबद्ध किया था उस्ताद मोहम्मद वकील ने। आइए अब सुनते हैं मोमिन खान मोमिन की गजल, असर उसको जरा नहीं होता।
1: दैट वॉज अ गजल रिटन बाय शाइदा अराई एंड कंपोज्ड बाय मोहम्मद वकील। नाउ ही प्रेजेंट्स गजल असर उसको जरा नहीं होता, रिटन बाय मोमिन खान मोमिन।